0: क्या कहेंगी इस गीत के बाद कि जो दूरी है और जो मजबूरी है और पैसा कमाना भी जरूरी है, तो आज के युग में ये गीत सच है या सच्चाई कुछ और है?
1: सच है, किसी किसी के लिए वो सच है, क्योंकि बाहर जाके कई लोग जॉब करते हैं और फैमिली अलग जगह पे रहती है, उनके लिए सब सच है।
0: सिंगिंग आप करती हैं, कोई अवार्ड मिला है आपको सिंगिंग में?
1: मेरे को वुमेन्स डे के दिन 7 मार्च को, जब भी मेरी एनिवर्सरी थी
0: जी,
1: उस दिन मुझे गुजरात में से जो 51 नारी का सम्मान किया था उसमें मैं भी शामिल थी और मुझे भी अवार्ड मिला है उस दिन। मैं बहुत खुश नसीब हूँ और आज भी मुझे आपके साथ रेडियो पे आने का मौका मिला, वो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे चांस मिलते रहते हैं।
0: बहुत ही सच में आप खुश नसीब हैं और हम भी उन नसीब वालों में से हैं जिनको आपसे बात करने का अवसर मिला है, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आप उन 51 सशक्त महिलाओं में से हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था।
1: सूरत में ही था
0: तो उन 51 चुनिंदा महिलाओं में आप शामिल रही, उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको और शुभकामनाएं देते हैं कि आपको इसी तरह से अवार्ड मिलते रहें और आप यूं ही गाती रहें, हमें जो है अपने गीत सुनाती रहें। आइए सुनते हैं आपका ये सुरीला गीत जो दोगाना है, चुरा लिया है तुमने।

0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। और सच में चुरा ही लिया है आपने हमारे श्रोताओं का सिंगिंग से दिल। तो क्या कहेंगे, और लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आपके साथ जो मेल सिंगर थे जिन्होंने आपके सिंगिंग में को सिंगर का साथ दिया था, उनका नाम भी।
1: मेरे साथ जिसने सिंगिंग किया उनका नाम है हसमुख भाई पटेल।
0: हसमुख भाई पटेल, ये नाम तो हमने सुना हुआ है कहीं से। मेरे ख्याल में ये बहुत सालों से गा रहे हैं और बहुत सुरीला गाते हैं। सच में ये भी स्टार सिंगर हो गए हैं। क्या कहेंगे आप अपने बारे में और सिंगिंग के बारे में, और साथ साथ सिंगिंग तो आप करती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा आपके कौन कौन से विषयों में रुचियां हैं, हैबिट्स हैं, क्या खेलती हैं और क्या करती हैं इसके अलावा, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
1: मेरी हॉबी में तो ये म्यूजिक है। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में 2008 से जुड़ी हुई हूँ, तो मेडिटेशन वगैरह तो हर रोज करती हूँ। प्राणायाम मेडिटेशन वो चलता है मेरा पूरा दिन। मैं थोड़ा
0: क्यों जरूरी है, आप अपने बारे में तो बता ही रही हैं कि आप करती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हैं, पर हमारे सुनने वालों को भी ये बताइए ना कि जरूरी क्यों है मेडिटेशन, योगा, ये क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए।
1: मेडिटेशन और योगा और जो आर्ट ऑफ लिविंग में है सुदर्शन क्रिया, जो श्री श्री रविशंकर जी ने बनाया है, वो जो श्वास की क्रिया है, वो क्रिया करने से वो जो बोलते हैं ना, वो श्लोक के रिदम से हमें श्वास लेना है और छोड़ना है, तो वो रिदम से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारे माइंड में जो बहुत सालों पुराना या अभी का कुछ भी रहा है और हमें परेशान कर रहा है, या हम
0: जो नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे अंदर भीतर,
1: नेगेटिव बातें, एनर्जी जो भी हमारे मन में है
0: जी,
1: और हमारे अवचेतन मन में भी है, तो वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। फिर रिमूव धीमे धीमे होता रहेगा। जैसे बहुत कोई जगह पे कीचड़ है तो पानी डालते रहेंगे तो साफ हो जाएगा ना कभी ना कभी। वैसे हम मेडिटेशन और क्रिया करते रहेंगे तो वो धुल जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कोई बात की इतना टेंशन नहीं होगा, हम हंसते खिलते रहेंगे, किसी का कुछ बोलने का बहुत ज्यादा देर तक असर नहीं रहेगा, वो बोलते रहेंगे ऐसा हम सोच लेंगे, और ये डिप्रेशन वगैरह में से हम मुक्त हो जाएंगे।
0: बहुत ही उपयोगी बात आपने कही कि हमारे अचेतन मन में जो गहराई से बैठ गई हैं बातें, वो निकलती नहीं है, हमें बार बार परेशान करती हैं, हम उसका पीछा छोड़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसको दूर करने के लिए आप रिदम के साथ और जीने की कला के साथ जिंदा रहिए और मेडिटेशन करिए, तो हो सकता है आप भी अपने दिमाग की सड़क को साफ कर सकें और आपको अच्छा लगे। तो इस बात पे तो एक गीत बनता है।
1: मैं तो सबको वही कहना चाहती हूँ कि सब आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया एक बार करके देखिए, आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: आपका जीवन बदलना चाहते हो तो आप आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम पहला जो रहता है वो तो एक बार कर ही लीजिए, फिर तो वो लाइफ टाइम फ्री है, आपको जब करना है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही आर्ट ऑफ लिविंग की और हैप्पीनेस का और सुदर्शन क्रिया का, और सुदर्शन चक्र तो कृष्ण का था और ये सुदर्शन क्रिया है जीने की कला
1: वो
0: है।
1: जो हमारा मन का मेल रहता है ना, मन का बैठ कर चले रहेगा सुदर्शन क्रिया।
0: वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात कही कि मन के मैल को जो है वो धोना बहुत जरूरी है, और आज के खासकर आज के युग में बहुत उपयोगी हो गया है। आज जो सोशल मीडिया है वो बहुत हावी होता जा रहा है, आपने भी देखा होगा, सोचा होगा, मोबाइल्स के साथ और सोशल मीडिया के साथ हमारा समय सबसे ज्यादा बीतता है, और फिर हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसी दिशा में और ऐसी दशा में आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे हम अपने को बचा के और आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर सकते हैं?
1: मैं तो इतना ही चाहूंगी कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या उसका फीचर बनने का बाकी है, उनको तो मोबाइल को जैसे कि समझना कि मुझे इतना ही टाइम तक रखना है मेरे पास, जब भी जरूरी हो, नहीं तो वो मोबाइल को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें उसका फ्यूचर नहीं है। जो करना है वो पढ़ना लिखना वो सब पहले करें, फिर बाद में मोबाइल का रखें। मोबाइल में तो सब कुछ आता रहेगा, पर जो हमारी ताकत है वो उसमें नहीं है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ बनेंगे। मोबाइल का जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल जरूरी नहीं है। आज की तारीख में मोबाइल भी जरूरी है, पर जो पूरे दिन तक कुछ ना कुछ देखना और फिर उसमें ही रहना, किसी की बात नहीं सुनना है, ऐसे लड़के करते रहते हैं, खाने के टाइम पे भी हाथ में मोबाइल रहता है, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए।
0: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारे संग हैं धर्मिष्ठा सूरत गुजरात से। प्रोग्राम आपकी बातें हैं आपके गीत में, और अब सुन लेते हैं धर्मिष्ठा से एक सुरीला सा सॉन्ग।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से श्रोता सुन रहे हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। और इस प्रोग्राम में हमारी आज की मेहमान हैं सूरत गुजरात की धर्मिष्ठा टेलर। फिर से वेलकम करते हैं और चलते चलते हम जानना चाहेंगे धर्मिष्ठा से कि जयपुर रेडियो के बारे में आप क्या सोचती हैं और वो बातें जो हमने नहीं पूछी आप श्रोताओं से मुखातिब हैं लाइव हैं क्या कहना चाहेंगी सिंगिंग के बारे में, जो गाना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं जीवन में। कुछ हारे हुए लोग हैं, कुछ जीते हुए लोग हैं, सभी तरह के श्रोता होते हैं हमारे इस मंच के, तो क्या कहना चाहेंगी आप सबको अपनी सिंगिंग के बारे में और अपने बारे में और एक प्रेरणा।
1: एक बात बताऊंगी मैं सबको
0: जी
1: कि कभी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे हारना नहीं है, डट के मुकाबला करो। और ये नहीं हो रहा है तो दूसरा कुछ, किसी न किसी बात में हम उलझे रहे और कुछ न कुछ करते रहे, नहीं तो बैठे बैठे कोई ना कोई विचार ही आते रहेंगे और किसी की बात यहाँ वहां करते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम हमारा प्रोग्रेस ढूंढे, किसमें प्रोग्रेस है हमारा वो ढूंढे।
0: जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, ऐसा कुछ गाना।
1: और हर लेडीज को मैं कहना चाहूंगी कि उम्र कभी देखना नहीं है कि क्या है। आज मेरी एज भी 55 इयर्स है, फिर भी मैं सब कुछ कर रही हूँ। नहीं तो मैं रोती रहती कि मेरी दोनों लड़कियां चली गई है यूएसए
0: और
1: मेरा तो ऐसा हुआ था कि 20 ही दिन में दोनों चली गई थी, एक वही मंथ वही साल और 20 दिन में दोनों साथ में गई थी, तो मैं तो डिप्रेशन में आ जाती जो मैं घर में बैठी रहती, तो फिर दवाई लो।
0: तो
1: इससे तो अच्छा है कि हम किसी ना किसी बात में
0: बिजी रहे, यानी व्यस्त।
1: सब लेडीज को मेरा वही कहना है कि आप 80 के हो जाओ, 70 के हो जाओ, 80 के हो जाओ, जितने तक जियो कुछ ना कुछ करते रहो। मैं चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि हर लेडीज को अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, सपनों को पंख दीजिए और उड़ने दीजिए। और ऐसा मत सोचिए कि अब तो इतनी एज हो गई है तो अब क्या करेंगे। एज तो कुछ नहीं है, कोई भी एज में हम सब कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर सकते हैं, मर्यादा में रह के आगे बढ़िए। मैं तो इतना ही कहूंगी सब लेडीज को कि चलते रहिए।
0: यानी आपका कहना, आपका संदेश है, आपकी प्रेरणा है आज के इस प्रोग्राम की के व्यस्त रहें और मस्त रहें और उसी से जीवन चलेगा और जीवन चलने का नाम है
1: जिंदगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप हमारे साथ रहीं इस प्रोग्राम में। हम चलते चलते आपका ये गीत सुन लेते हैं और आपको कहते हैं बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत आभार, शुक्रिया। जय की लेडी।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम मेरी आवाज, और नई आवाज नई पहचान में आज

श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाता है उसे कोई भी परिस्थिति नहीं नमक को महसूस नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिसने बुरे दिन नहीं देखे वह अच्छे दिनों का वास्तविक आनंद नहीं समझ सकता। जब जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता है तब इंसान अक्सर उन चीजों की कद्र नहीं करता, लेकिन जब वही चीजें संघर्ष के बाद प्राप्त होती हैं तो उनका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे दिन केवल दुख देने के लिए नहीं आते, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वे हमें धैर्य सिखाते हैं, लोगों की पहचान कराते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। कठिन समय में ही हमें पता चलता है कि हमारे अपने कौन हैं और हमारी वास्तविक ताकत क्या है। यही अनुभव आगे चलकर हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब आगे

बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस काम के लिए हमने पूरी मेहनत की वह सफल नहीं हुआ। जिन लोगों पर हमने भरोसा किया वे साथ छोड़ गए। जिन सपनों को हमने वर्षों तक सजाया वे टूटते हुए दिखाई देने लगे। ऐसे क्षणों में मन निराश हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन वास्तव में अक्सर यही वह समय होता है जब भगवान हमारे लिए कोई नया और बेहतर मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। कान्हा कहते हैं, जीवन एक ऐसी अनमोल पुस्तक है जिसे हम हर दिन लिखते हैं। इस पुस्तक का हर पन्ना हमारे अनुभवों, संघर्षों, खुशियों और सीखों से भरा होता है। कुछ पन्ने हमें मुस्कुराने का कारण देते हैं तो कुछ पन्ने हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि चाहे कल का पन्ना कैसा भी रहा हो, हर सुबह हमें एक नया पन्ना लिखने का अवसर मिल जाता है। अक्सर लोग अपने बीते हुए कल की गलतियों, असफलताओं और दुखों को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे आज को भी खो देते हैं। वे बार बार उन बातों को याद करते हैं जो बदल नहीं सकती। लेकिन जीवन हमें यह सिखाता है कि बीता हुआ समय एक बंद अध्याय की तरह होता है। उसे पढ़ा जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नीयत साफ हो तो भगवान देर से ही सही लेकिन साथ जरूर देते हैं। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग गलत रास्तों पर चलकर भी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि ईमानदार और सच्चे लोग संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे समय में मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच्चाई और अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है? क्या ईमानदारी से चलने वालों को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? लेकिन समय इस बात का साक्षी है कि भगवान कभी भी किसी सच्चे और नेक इंसान का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है कि उनका आशीर्वाद मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जब मिलता है तो वह स्थायी और सुखद होता है। कभी कभी भगवान हमें प्रतीक्षा इसलिए करवाते हैं ताकि हम और अधिक मजबूत बन सकें। जिस सफलता के लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है भगवान उससे भी बेहतर कुछ हमारे लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए यदि आपकी नीयत साफ है, आपके कर्म सच्चे हैं और आपका हृदय निर्मल है तो परिणाम की चिंता मत कीजिए। अपना कर्तव्य करते रहिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर सब देख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी दुख, पीड़ा या संघर्ष का सामना न किया हो। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दर्द से गुजरता है। कभी अपनों का साथ छूट जाता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि आगे बढ़ना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जीवन के सबसे बड़े सबक हमें सुख नहीं बल्कि दुख सिखाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर दर्द कुछ सिखा कर जाता है, इसलिए दुखों को भी गुरु मानो। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहता है। दुख से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कई बार हमें लगता है कि हमारा दर्द व्यर्थ है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि वही कठिन समय हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख था। जिन लोगों ने हमें छोड़ा उन्होंने आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन असफलताओं ने हमें रुलाया उन्होंने सफलता की सही कीमत समझाई। जिन संघर्षों ने हमें तोड़ा उन्होंने हमें पहले से अधिक मजबूत बनाया। इसलिए जब भी जीवन में

परिणाम की चिंता ज्यादा करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेहनत बेकार चली गई तो लोग हम पर हंसेंगे। अक्सर यही डर हमें अपना काम करने से रोक देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जरा सोचिए, एक किसान बीज बोता है, वह रोज बीज खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह मेहनत करता है, पानी देता है, विश्वास रखता है और समय आने पर स्वतः फल मिल जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप रोज परिणाम देखोगे तो थक जाओगे, अगर प्रक्रिया से प्रेम करोगे तो जीत अपने समय पर अवश्य आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां जीवन की दिशा तय नहीं करती, बल्कि आपकी मानसिकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत में अर्जुन शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही टूट गए। आपने कभी सोचा है कि अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, बल्कि समस्या उनके भीतर, उनके मन में थी। और यही हमारे साथ भी होता है। कभी पैसा नहीं होता, कभी अवसर नहीं मिलता, कभी लोग साथ नहीं देते, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर चलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तलवार नहीं दी, उन्होंने दृष्टिकोण दिया। इसलिए याद रखिए, जिस दिन सोच बदल गई उस दिन परिस्थिति हार जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम लोग अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां और पुरानी असफलताओं में मन को उलझाए रखते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, जो आज है वह कल बदल जाएगा, इसलिए छोड़ना सीखो। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटे हुए को स्वीकार करना पड़ता है। आपका भविष्य आपके अतीत से बड़ा है, इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। कान्हा कहते हैं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी जीत है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना कठिन है। गुस्सा, आलस, डर, ईर्ष्या, ये हमारे असली शत्रु हैं। जब तक इंसान खुद को नियंत्रित नहीं करता, तब तक कोई सफलता स्थायी नहीं होती। सुबह जल्दी उठना, वचन निभाना, अनुशासन रखना, यही आत्म विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। मित्रों, आज सोशल मीडिया का समय है, हमें हर किसी की सफलता दिखती है और फिर मन कहता है मैं पीछे हूं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक पेड़ जल्दी फल देता है, दूसरा देर से, लेकिन दोनों की कीमत होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपने धर्म पर चलो, दूसरों की नकल करके महान नहीं बनोगे, इसलिए अपनी एक अलग पहचान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय ही असली शिक्षक है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं आया तो शक्ति कहां से आएगी? सोना आग में तपकर ही चमकता है। इंसान भी कठिनाइयों से ही निखरता है। जब सब अच्छा हो तब हर कोई साथ देता है, लेकिन जब समय खराब हो तब आपका धैर्य, आपका विश्वास और आपका चरित्र सामने आता है। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे तब भागना मत, खुद से कहना शायद यह समय मुझे मजबूत बना रहा है। कान्हा कहते हैं, विश्वास रखो लेकिन कर्म मत छोड़ो। बहुत लोग कहते हैं भगवान सब ठीक कर देंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा, यही जीवन का सत्य है। प्रार्थना करो, विश्वास रखो, लेकिन कदम भी बढ़ाओ। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। अगर आज जीवन में अंधेरा है तो याद रखना, रात हमेशा नहीं रहती। अगर आज हार मिली है तो यह अंत नहीं। अगर आज अकेले हो तो खुद को कमजोर मत समझो। श्री कृष्ण की एक बात याद रखो, जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करता है तब ईश्वर उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो, डर कम और विश्वास ज्यादा रखो, बहाने कम करो, कर्म ज्यादा करो। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें किसका मोह है? इस रणस्थली में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले तुम्हारा इस तरह से शस्त्र त्याग देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है
और न

कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। तुम उसका शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और पंडितों जैसी बातें करते हो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, अतः नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा नहीं सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार का शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागकर तुम भय मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा युगों युगों तक तुम्हारे अपकीर्ति की चर्चा होगी। सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। या तो तुम युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी,
वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनकी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि काम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से
एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। ये संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं, सत असत भी मैं ही हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांडाल कोई भी हो, वो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है,
ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है, वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें, क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वो सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हारकर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते, तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता।
जो चीजें हमारे दायरे से बाहर

उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य हूं, मैं विष्णु हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूं। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निःस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। हे अर्जुन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे, इसलिए तू भी उसी प्रकार कर्म कर। हे पार्थ, मेरा इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराए लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना,
कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। एक तितली की गुदा में मांडव ऋषि ने कांटा डालकर छोड़ दिया था तो सूली उसके अंदर डाली गई थी। अपने तीर से सांप को उठाकर कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था तो भीष्म पितामह को 6 महीने तक वाणों की संया पर रहना पड़ा था। तो हम और आप क्या चीज हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है। एक गांव से 2 मित्र शहर में काम करने के लिए गए। दोनों ने मिलकर वहां ढेर सारा पैसा कमाया और एक होटल खोला। एक दिन एक मित्र के मन में आया कि हम दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमा लिया है, अगर एक को मार दें तो सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। और उसने उस मित्र को मारकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब वह बहुत धनी हो गया था। उसने गांव में जमीन खरीदी, सुंदर घर बनाया और बड़े धूमधाम से अपनी शादी की। एक ही वर्ष बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा। अब पुत्र वहां बीमार होना शुरू हुआ, महंगे इलाज करवाए गए, उसकी सारी संपत्ति बिक गई, करोड़ों का कर्जा हो गया, परंतु पुत्र की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर कहने लगा कि बेटा, मैंने बहुत प्रयास किया पर शायद अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। पुत्र हंसा और बोला, दोस्त, तुमने मुझे पहचाना नहीं। अपना सारा हिस्सा नष्ट करके और तुम्हें बर्बाद करके मैं ऐसे जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। और वो मर गया। कर्मों का सिद्धांत यही कहता है कि कल जो आपने किया था आज वो आपको भोगना पड़ेगा, और आज जो आप कर रहे हैं उसका फल कल आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए डरिए कि आपके द्वारा कोई पाप ना हो जाए, और यही डर आपको निडर बना देगा। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, विधाता बड़े हैं या विधि का विधान? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मैं राधा को चाहता था पर मुझको मीरा चाहती थी, और मैं रुक्मणी का होकर रह गया। इस बात से तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि विधि का विधान बड़ा है या मैं विधाता। एक बार नारद जी एक जंगल से होकर जा रहे थे तो 2 पेड़ के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, एक वट वृक्ष के नीचे। दोनों ने नारद जी को प्रणाम किया। पीपल वाले ने कहा कि हे महाराज, मैं भगवान का नित्य भजन करता हूं, आप भगवान से पूछना कि वो मुझे कितने जन्म में मिलेंगे, कब मिलेंगे। वट वृक्ष वाले ने भी नारद जी से यही बात कहा। जब नारद जी लौट कर आए तो पहले वट वृक्ष वाला मिला। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आपने भगवान से बात की? नारद जी बोले, हां, भगवान ने कहा है कि तुमको इसी जन्म में मिल जाएंगे। वह बड़ा आनंदित हुआ और भगवान के भजन में लग गया। अब नारद जी पीपल वृक्ष वाले के पास गए और बोले कि भगवान ने कहा है कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। वो नाच पड़ा और कहा कि भगवान मुझे जानते हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं, और नाचते हुए खुशी से रोने लगा कि भगवान मुझे एक दिन जरूर मिलेंगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने मुझे झूठा बना दिया। आपने हमसे कहा था कि जितने पीपल में पत्ते हैं
उतने जन्म के बाद मैं इससे मिलूंगा। भगवान बोले कि जैसी तन्मयता से ये भजन कर रहा था, इतने जन्म लगते इसकी इतनी तन्मयता में, लेकिन इसने वो तन्मयता अभी धारण कर ली, इसलिए मैं अभी मिल गया। मित्रों, सच्ची भक्ति और श्रद्धा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के कि एक दिन ठाकुर जी बोले कि तू इतना क्यों रोता है। भक्त बोले कि आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। भगवान जगन्नाथ जी ने उनको कहा, मैं तेरे साथ हमेशा हूं, और इसका अनुभव तुम्हें जब करना हो तो समुद्र के बालू पर चलना, और थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे देखना, दो पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में दो पैरों के निशान मेरे होंगे। उससे तुझे पता चल जाएगा कि मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज समुद्र के तट पर जाता और चल के देखता। थोड़ी दूर चलता तो दो पैर के निशान उसके और बगल में छोटे छोटे चरण भगवान के। वह बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन एक दिन उसके घर में कोई घटना घटी। उसके माता जी का देहावसान हो गया, बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया कि वह रोने लगा, बिलखने लगा। अपनी मां के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोला, मन को शांत करने का एक ही तरीका है कि पता चले कि जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। वह अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, बहुत तेज तेज रो रहा था। पीछे मुड़ करके देखा तो दो ही पैरों के चिन्ह थे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर के बोला कि मैं समझ गया, मेरी मां का देहावसान इसीलिए हुआ है क्योंकि आप मुझे छोड़कर चले गए हो। अब आप मेरे साथ में नहीं हो। आपने कुछ दिन मेरा संग किया, उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। हे नाथ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे क्या अपराध हुआ? रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। बोले, क्यों रो रहा था? वह बोला, नाथ, आप मेरे साथ हमेशा थे और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाकर देखा, दो ही चरण चिन्ह थे और आज ही मेरी मां का भगवत धाम गमन हो गया। इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना? मुझसे कोई अपराध हुआ है? भगवान बोले, नहीं। वह बोला, तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे? भगवान बोले, कल तक मेरे चरण चिन्ह थे क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेकर मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह है, तेरे नहीं, वो मैं ही हूं। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।

0: तो जुनागढ़ से मैं आरजे सोनल पारेक जयपुर रेडियो के लिए एक खास प्रोग्राम लेके आई हूँ। ये बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण विषय पर है और ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत पास है और खास भी है मेरे लिए। कुछ दिनों पहले ही मैं बैंक में गई थी तो मुझसे पूछा गया आपका सिबिल स्कोर क्या है, तो मैं एकदम हैरान रह गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि फाइनेंस के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ जब मैं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए ट्रांस यूनियन सिविल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देवल गांधी से मिली, तो उन्होंने बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे समझाया कि सिबिल स्कोर क्या होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना यह सब जानकारी मैं जयपुर रेडियो के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। तो देवल जी, हृदय तल से आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर रेडियो के इस कार्यक्रम में। तो देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस मुलाकात के लिए प्रोत्साहित किया, और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी दी है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सोनल जी, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए, एंड आप ये इतनी अच्छे कार्य के लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि श्रोताओं के लिए सोचना कि उनके लिए क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी और उनके लिए प्लानिंग करना, ये एक बहुत मेहनत का काम है। एंड मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रेडिट स्कोर या फिर हम उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर, ओके, वो उसके बारे में जानकारी समझना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या उसके फायदे हैं, उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाना। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर ऑडियंस फॉर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल शो। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माय स्टडीज मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आई जॉइंड एन आईटी कंपनी में मैंने एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद मैंने एमबीए किया फाइनेंस में, एंड मैं आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स से बैंकिंग फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन वेरियस लोन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमने लार्ज कॉर्पोरेट्स, छोटे कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, SMEs को सबको हमने लोन्स दी है। तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कैसे लोन्स दी जाती है, कैसे बोरोअर की क्षमता को हम परखते हैं कि कौन हमें पैसे दे पाएंगे वापस, रीपेमेंट उनकी कैसे रहेगी, कौन डिफॉल्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों से जब भी मैं

0: काफ़ी बैंक्स यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे बोरोवर को क्रेडिट कार्ड लोन्स वैसे सारे सुविधा देते हैं। तो वही क्यूरियोसिटी मेरी 2023 में मेरी हुई 2022-23 में, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रांसपेरेंसीबल में एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन होने में।
1: जी
0: एंड वो काफ़ी मेरे लिए एक एनलाइटिंग फेज रहा, बिकॉज जो चीज़ हम सारे बैंकर्स यूज़ करते थे डे इन डे आउट, उस वो कैसे बनता है उसको मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, सीखना ही मिला जब भी मैंने सिबिल ज्वाइन किया।
1: हाँ, तो देवल जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग करके आप फाइनेंस की ओर कैसे आगे बढ़े?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक ये जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे वो थ्री इडियट्स की लाइन आती है, जब ये आमिर खान बोलते हैं कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ सीट, जब भी वो एक डायलॉग बोलते हैं कि इंजीनियर करके फिर आप MBA फाइनेंस करते हो। बट आई थिंक फाइनेंस तो बींग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड माई फादर बींग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई थिंक फाइनेंस तो कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ ही था। इट्स जस्ट दैट मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी क्षमता टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट जैसे मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया, IT कंपनी में काम किया, मुझे उनकी जो फाइनेंस रिलेटेड जो थे बेसिक्स और जो बिजनेस कैसे रन करता है, मुझे उस पर ज़्यादा उत्सुकता बनी कि कैसे हम बिजनेस इसको इवेल्यूएट करते हैं, कैसे उनके कैश फ्लोज को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रादर देन डूइंग कोडिंग। और उसी उत्सुकता से और मुझे सपोर्ट भी मिला फैमिली से कि मैंने फिर MBA फाइनेंस किया, एंड MBA फाइनेंस के बाद बैंकिंग की जर्नी मेरी शुरुआत है।
1: आपका ये इंट्रोडक्शन सुन के तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके दिल को तभी चैन आता है जब अपने गोल या अपने मोटिव को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो क्यों ना एक प्यारा सा नगमा हमारे लिसनर्स को सुना दे?
0: श्योर, वाई नॉट।

0: हाँ तो देवल जी, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सिविल स्कोर होता क्या है और कैसे जनरेट होता है और उसकी गिनती किस आधार पे की जाती है।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सिविल स्कोर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। ओके, तो आई थिंक मैं ना, जब भी मुझे ये क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक स्कूल में जब भी थे तो एक मार्कशीट हमें मिलती थी, राइट, कि ये पूरा साल में हमने कैसे परफॉर्म किया। तो किसी को ए ग्रेड मिलता था, किसी को बी ग्रेड मिलता था, सी ग्रेड, डिपेंडिंग ऑन उनके परफॉर्मेंस पे, राइट। और ये परफॉर्मेंस कैसे होता था, आपके हार्ड वर्क के बेसिस पे मेजर होता था, राइट, आपके हार्ड वर्क और आपने जिस तरह से एग्जाम्स को दी है। वैसे ही इन रियल लाइफ सिनेरियो आपको एक अगर कोई स्कोर करे कि लेट्स से आपको 300 to 900 के बीच में एक स्कोर मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिविल स्कोर रेंज। तो सिविल स्कोर का रेंज है 300 to 900, उसके बीच में हम सारे इंडिविजुअल्स को जो भी लोन लेना चाहते हैं या जो भी जिन्होंने लोन लिया है पहले, ठीक है, उनको हम रेट करते हैं, एक रैंक देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी को 850 का रैंक दूँ स्कोर दूँ, तो उसका मतलब ये है कि उनकी क्षमता बहुत बढ़िया है, जो भी वो लोग लोन्स लेते हैं या लिया है वो सही टाइम पे चुकाते हैं और काफ़ी डिसिप्लिनड है। अगर किसी का भी स्कोर लेट्स से 600 या 500 के आसपास हो तो हम उसको रिस्की बोलते हैं कि इनमें रिस्क ज़्यादा है। ओके, क्यों रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जिन्होंने उनमें लोन ली थी या क्रेडिट कार्ड्स लिए थे तो वो उन्होंने सही टाइम पे नहीं भरे थे, और सही टाइम पे नहीं भरने के कारण हमारा जो मानना है कि ये लोन अगर लेंगे फ्यूचर में तो वो डेफिनेटली डिफॉल्ट करने के चांसेस हाई है, तो हम उनको बोलते हैं रिस्की बोरोवर। तो 300 मतलब हाई रिस्क, और जैसे आप 300 के से लेके 900 तक जाएंगे तो एनी स्कोर विच इज नियर टू 900 इज अ लो रिस्क स्कोर। तो सिविल स्कोर इज जस्ट हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई कि कौन अच्छा बोरोवर है और कौन रिस्की बोरोवर है। ओके, इससे बैंकों को ये पता चलता है कि अगर उनके पास लोन एप्लीकेशन आती है या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आती है, पर्सनल लोन की एप्लीकेशन आती है, होम लोन की एप्लीकेशन आती है, वो पहले जाके सिबिल स्कोर चेक करता है, और सिबिल स्कोर देखने के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको लोन देना चाहिए, अगर हाँ देना चाहिए तो किस ब्याज दर पे देना चाहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर के बेसिस पे भी आजकल ब्याज दर डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने होम लोन लिया था
0: जी,
1: एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक से, काफी फेमस प्राइवेट बैंक है। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि उनका स्कोर 750 के आसपास था, तो उनको एक अच्छे बोरोवर जिसका स्कोर शायद से 790-800 अगर हो, उनसे उनको 5 पैसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, मतलब कि 7.5 अगर होम लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको 7.55 भरना पड़ा बिकॉज उनका सिविल स्कोर थोड़ा सा
0: लो था,
1: ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक्स एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट अभी बात हो चुकी है कि क्रेडिट स्कोर, जो हम उसको अभी हमारे कॉमन लैंग्वेज में सिविल स्कोर भी बोलते हैं, ठीक है, कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको मेंटेन करना कितनी बड़ी बात अभी हो गई है। तो अभी आई थिंक मोटा मोटी मैंने आपको जो कहा कि क्रेडिट स्कोर ये आपका दर्शाता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है और आपने पास्ट में जो भी लोन्स लिए हैं वो आपने किस तरह से चुकाए हैं। अगर आप रेगुलर हो तो आई थिंक आपका स्कोर हाई होना चाहिए। अगर आप इरेगुलर रहे हो, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया या आपने कोई डिफॉल्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर कम हो जाएगा और उससे आपको फ्यूचर में लोन लेने की दिक्कतें बढ़ सकती है।
0: जी जी हाँ, जब लोन की बात चली है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई भी इंसान कौन कौन सी चीजों पर लोन ले सकता है।
1: हाँ अच्छा, तो इंसानों की अगर हम देखें तो जरूरतें क्या होती है लोन्स लेने के लिए। अगर हम डेफिनेटली हम लोन का मतलब ही क्या कि आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है पर मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है या मुझे कुछ चीज़ परचेस करनी है, तो डेफिनेटली मुझे बैंक की सहायता से मैं वो चीज़ को किस्तों में भर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आई थिंक बहुत ही ये सेफ प्रैक्टिस है कि डेफिनेटली किस्तों में भर के आप अपनी चीज़ों को जो भी आपकी यूजफुल चीजें हैं उसको आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो,
0: जी,
1: राइट
0: जी।
1: और आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे से सुधार सकते
0: सुधार
1: हो
0: सकते।
1: तो एक तो होती है आपकी लाइफस्टाइल लोन्स, जैसे कि कंज्यूमर लोन, अगर आपने कोई क्रोमा के शोरूम में गए या कोई यू नो डिजिटल शोरूम में गए, आपको टीवी पसंद आ गया
0: जी।
1: तो डेफिनेटली वहां पे आप कंज्यूमर लोन्स मिलते हैं जहाँ पे आप टीवी को किस्तों में परचेस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर लोन्स। फिर होते हैं कोई पर्सनल लोन, जैसे कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई या कोई यू नो एजुकेशन कोर्स का मुझे फी भरना पड़ा,
0: एजुकेशन लोन भी होगी,
1: एजुकेशन लोन भी हो जाती है। और पर्सनल मेरे कुछ यू नो अगर शादी ब्याह का खर्चा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इमरजेंसी कोई लोन अगर चाहिए, ठीक है, तो हम पर्सनल लोन लेते हैं जो 3 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक यू नो लोग बैंक आपको देते हैं, ठीक है। और उसकी जो टेन्योर होती है लोन्स की, वो 1 साल की भी होती है, 2 साल, 3 साल तक होती है। तो ये हो गए पर्सनल लोन जो पर्सनल कैपेसिटी पे ली जाती है। फिर आपने बोला एजुकेशन लोन, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स लेते हैं यूजुअली, वो भी एक लोन है। फिर सबसे बड़ी लोन है जो होम लोन, हो घर सबका सपना है और घर होना एक सबसे बड़ी बात होती है अपने इंडियन यू नो वैल्यू सिस्टम में। तो होम लोन सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और ज्यादातर लोग होम लोन ज्यादा लेते हैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन। फिर उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी लोन ले सकता हूँ। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोन्स। और लास्ट में होता है बिजनेस लोन्स, जो यूजुअली फर्म्स मतलब कंपनीज लोन्स लेते हैं उनके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए। तो इस प्रकार के काफी सारे लोन्स होते हैं और ये सारे लोन्स का असेसमेंट कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर के द्वारा स्टार्ट होता है
0: जी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है और थोड़ा बहुत हम ये लोन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्यारा सा गीत हो जाए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।
1: क्या बात है, बढ़िया बढ़िया
0: बढ़िया बात है ना।
1: हाँ।

0: हाँ तो देवल जी, हमारे लिसनर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये सिबिल एक्चुअली क्या क्या है और सिबिल जैसे कितनी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और इसका क्या और कितना महत्व भी है, ये भी आप हमें बताइए।
1: तो सिबिल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल आज से 25 साल पहले इनकॉर्पोरेट की थी, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी जो वेटरन बैंकर्स हम कहते हैं, दीपक पारेख एंड बैंकर्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सब ने एक डिसाइड किया कि जैसे कि इंटरनेशनली हर जगह ब्यूरोज होते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज, ये कंपनीज को हम बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरो, जो एक्चुअली इंडिविजुअल्स का डेटा स्टोर करते हैं। और क्या डेटा स्टोर करते हैं? उनके लोन के डिटेल स्टोर करते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि जैसे नाम हो गया, उनके आईडी, पैन आईडी है, वोटर आईडी है, आधार आईडी, वो सब स्टोर करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें वो स्टोर करते हैं। और उन्होंने कौन से जगह से क्या क्या लोन्स लिए हैं और उनकी कैसे पेमेंट हिस्ट्री रही है, वो सारी वो बैंक से डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिट ब्यूरो में 4 क्रेडिट ब्यूरोस है इंडिया में, उसमें से ट्रांस यूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो विच इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन। इसके लिए आज इंडिया में जब भी कोई क्रेडिट स्कोर बोलता है तो वो सिबिल स्कोर बोलता है,
0: अच्छा,
1: ओके, ना कि क्रेडिट स्कोर।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: तो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत हमारे घर पे भी एक है कि भाई बिस्किट्स नहीं बोलते हम, पार्ले जी बोलते हैं,
0: राइट,
1: ठीक है, भले हम खाए गुड डे पर शायद से हम बोलेंगे अरे हम भैया पार्ले जी देना, ठीक है। वैसे ये एक यू नो क्रेडिट स्कोर का नाम अभी सिबिल स्कोर बन गया है। बट फॉर जानकारी, ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसयूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो, सेकेंड क्रेडिट ब्यूरो इज एक्सपीरियन, थर्ड क्रेडिट ब्यूरो इज इक्विफैक्स एंड द फोर्थ क्रेडिट ब्यूरो इज हाईमार्क क्रिफ। ये 4 कंपनीज हैं जो ऐसे स्कोर्स डेवलप करते हैं और बैंक्स वो स्कोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिबिल स्कोर का महत्व क्या है। तो मैंने जैसे अभी जस्ट आपके एक प्रश्न में कहा था और मेरे फ्रेंड का मैंने एग्जांपल दिया था कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर रादर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज वो आपके क्षमता को डिपिक करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड हो, आपका पर्सनल लोन हो, आपका टर्म लोन हो, जो भी आप लोन्स लेते हो या क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट लेते हो कोई बैंक से, तो वो आपका कैसा व्यवहार रहा है वो बैंक से और वो कैसे पेमेंट्स हुई है उसके बारे में सिबिल रिपोर्ट आपको दर्शाता है और वो डिसिप्लिन के हिसाब से आपको स्कोर करता है। अच्छा स्कोर तो बैंक आपको अच्छे से और लोन देगा, अगर स्कोर बुरा है या थोड़ा सा कम है तो बैंक शायद आपको ना भी बोलते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिबिल की जानकारी रखें। आपको सिबिल गवर्नमेंट द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा साल में एक सिबिल रिपोर्ट फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो सिबिल में कैप्चर हुई है वो देख सकते हैं और उसको आप जांच भी कर सकते हो कि सही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपकी गलत कैप्चर हुई है तो आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो, जो आपके सिबिल के साइट पे आप जाके कर सकते हो, बहुत ईजी है। और आप वहाँ पे रिजर्व बैंक ने सबको टाइमलाइंस भी दिया है कि अगर आप डिस्प्यूट आज रेज करते हो तो वो डिस्प्यूट 30 दिन के अंदर आपको रिजोल्व करना है, कंपनी को रिजोल्व करना है।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही सहूलियत अभी कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में फुल जानकारी रख सके और अगर कोई जानकारी में कोई गलतियां हो तो उसका डिस्प्यूट रेज करके, ठीक है, साइट पे वो रिजोल्व भी कर सकते हैं तुरंत।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो ये एक RBI का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है कि पूरा क्रेडिट इकोसिस्टम, जो हम बोलते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक इंडिविजुअल फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली बनाना और इंश्योर करना कि जो भी जरूरतमंद है उनके तक हेल्प पहुंचे थ्रू क्रेडिट स्कोर। और हेल्प कैसे पहुंचेगी? अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा तो बैंक्स उनको पैसे देंगे और
0: देंगे,
1: वो देंगे पैसे देंगे तो उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी जरूरतें पूरी होगी और वो अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, फैमिली को ग्रो कर सकते हैं।
0: हाँ, ये मैंने अभी आपने जब बात बताई उसका महत्व बताया तो हाल ही में मैंने पेपर में एक किस्सा पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कहीं किसी व्यक्ति की मंगनी टूट गई क्योंकि उसका सिबिल रिपोर्ट थोड़ा लो था। तो ये भी आजकल सब लोग, ये बिल्कुल सही बात है कि सिबिल का यानी रिपोर्ट का इतना महत्व हो गया, तो ये बात सही है क्या?
1: हाँ, ये बात सही है कि आजकल, और ये बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग भी है कि क्रेडिट स्कोर के अभी यूसेज कितने बढ़ने लगे हैं। खाली अभी बैंक्स नहीं, अभी तो आई गेस शादी ब्याह में भी पूछे जाते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बताइए, क्योंकि प्रश्न तो वही है। प्रश्न तो वही है कि क्या ये मेरी बेटी को संभाल पाएंगे, या क्या उनके पास सफिशिएंट इनकम है, क्या उनका व्यवहार, खाली फैमिली व्यवहार नहीं पर उनका बैंकों के साथ भी फाइनेंस व्यवहार भी अच्छा है कि नहीं। बिकॉज आज की लाइफ स्टाइल में, आज के जनरेशन में फाइनेंशियल व्यवहार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सतर्क हो, क्या आप डिसिप्लिन्ड हो। क्योंकि आप, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप डेफिनेटली अच्छे से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल कर रख सकते हैं और स्टेबलाइज हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मैं भी ना चाहूँ कि मैं किसी के साथ आगे व्यवहार करूँ, क्योंकि रिस्क बना रहेगा। ठीक है, और रिस्क है तो फिर इश्क नहीं है शायद से। तो
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत सरलता से और बहुत सारी जानकारी दी है आपने देवल जी हमें। तो ये बताइए कि क्रेडिट स्कोर का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में किस तरह से मदद करता है?
1: अच्छा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की जनरेशन में हो चुका है। अभी आज जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद जब तक मुझे जॉब नहीं लगी थी तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स कि भाई मुझे पॉकेट मनी मिलेगी और मेरे खर्चे उनके पॉकेट मनी से चलेंगे। आज की जनरेशन बहुत अलग सोचती है, उनको डे वन से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब क्या? मतलब तो यही है ना कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। डेफिनेटली आपकी इनकम से आप अपने खर्चे उठा सकते हो और कभी कभी आपको खर्चे उठाने के लिए शायद आप छोटी सी लोन भी ले सकते हो। ये लोन लेने में जो सुविधा जो हेल्प करते हैं, पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर आपको फलाने बैंक से लोन लेनी है तो आपकी वहां पे पहचान होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए कि मैं ये मैनेजर को जानता हूँ, कि मैं उस मैनेजर को जानता हूँ, और उसके बेसिस पे, जान पहचान के बेसिस पे हमको लोन मिलती थी। तो हम बोलते थे उसको कि जान पहचान होनी चाहिए बैंकर्स के साथ तो आपको लोन मिल सकती है। करेक्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हम डिपेंडेंट थे। अगर हमें जान पहचान नहीं है तो फिर शायद से हमारे पास वो पहुंच नहीं है, तो फिर शायद से हमको लोन ना भी मिले, रिजेक्शन हो जाए। तो डोंट यू थिंक हम इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं थे? करेक्ट, हमें कहीं में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना था। ठीक है, आज की जो युवा है वो एकदम बेफिक्र इंडिपेंडेंट होके भी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे फिनटेक्स आ गए हैं जो डिजिटल कंपनीज है, और एक क्लिक ऑफ द बटन में, ठीक है, वो लोन्स लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन तब हुआ जब ये ना के खाली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बट ये क्रेडिट ब्यूरो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लास्ट 25 इयर्स में, कि जहाँ पे उन्होंने बैंक को पहचान वाले मॉडल से निकाल के ओके, ब्यूरो स्कोर के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट में डिस्प्ले करके, ठीक है, पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है,
0: जरूरत ही नहीं
1: अभी। आज मुझे अगर आपको, आपके बारे में कुछ जानना हो तो शायद से मैं आपके सिबिल रिपोर्ट को या ब्यूरो रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करूं और वहां से पता चल जाए कि आपका व्यवहार, पिछला व्यवहार बैंकों से कैसा रहा, और उससे मुझे कंफर्टेबल मैं रहूंगा कि मैं आपको लोन दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आज का जो युवा पीढ़ी भी है, या फिर मैं वो भी बोलूं कि जो गांव में रहते हो या टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में रहते हो, जहाँ पे वो बैंक में जाना पहले अनिवार्य भी नहीं था, मतलब एकदम पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी, आज उनको अपने ही स्कोर के द्वारा, अगर उनका स्कोर है तो उनको लोन मिल सकती है, लोन प्राप्त हो सकती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ इंडिपेंडेंट लिविंग एंड इट इज

0: credit bureaus are doing great work and Reserve Bank of India is ensuring के हर व्यक्ति
1: जी
0: डिजर्विंग व्यक्ति
1: जी
0: को क्रेडिट प्राप्त हो और इसमें ब्यूरो के थ्रू उनकी वो क्षमता पूरी हो सकती है
1: जी जी।
0: तो यही है मेरा कहना कि यस बहुत ही रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है।
1: या हाँ, तो देवल जी आपने सिबिल के बारे में जानकारी देकर हमारे श्रोताओं की बहुत सारी फिक्र धुएं में उड़ा दी है। तो एक प्यारा सा नगमा यहाँ पे हो जाए, तो आइए सुनते हैं।

0: अच्छा देवल जी, क्रेडिट स्कोर के बारे में तो आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर कम हो तो उसे सुधारने या उसको क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए यानी किसी व्यक्ति को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और कौन कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप हमें बताइए कि वो कैसे मेंटेन कर सके अपना क्रेडिट स्कोर।
1: यस, तो काफी वैलिड क्वेश्चन है ये, एंड ये अवेयरनेस होनी जरूरी है। हमने ये तो जान लिया पहले क्वेश्चंस में जो आपने पूछे मुझे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, तो आई थिंक आपके ऑडियंस अभी सब अवेयर है कि सिबिल स्कोर बोलो या फिर क्रेडिट स्कोर बोलिए क्या होता है, वो सबको अवेयर है। 300-900 के बीच में स्कोर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कोर बनता कैसे है उससे जानते हैं, फिर उससे हम आगे समझ सकते हैं कि कैसे मेंटेन करें, ठीक है। स्कोर बनता है आपका जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या आता है, आपका नाम, एज, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस एंड एवरीथिंग, वो आपके ब्यूरो में प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट, ठीक है। कभी कभी उसमें गलतियां होती है, बैंक गलत इन्फॉर्मेशन भी रिपोर्ट करते हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी कुछ इनकम लेवल भी कैप्चर होती है कि आपकी इनकम क्या थी। जब भी आपने लोन लेते हैं तो बैंक आपसे इनकम पूछते, सब कुछ पूछते हैं। सेकेंड थिंग, आपके जो भी लोन्स आपने लिए, भले छोटी से छोटी 5,000 की लोन ली हो या फिर आपने 1 करोड़ की लोन ली हो, ठीक है, सारी की सारी लोन्स आपके सिबिल रिपोर्ट में या ब्यूरो रिपोर्ट में आ जाती है, ठीक है। अभी ब्यूरो रिपोर्ट क्या करता है, उसको चेक करता है कि जो भी लोन्स कही है आपने ली है, ठीक है, उसकी पेमेंट लास्ट 36 मंथ्स मतलब 3 साल, ये हम 3 साल का रिकॉर्ड हम के बेसिस पे हम स्कोर को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा। भले आपने 2012 में आपने लोन लिया हो, बट उसकी जो पेमेंट हिस्ट्री है ना, वो हम लास्ट 3 साल के, मतलब आज से लेके लास्ट 3 ईयर्स तक, मैं उसको ज्यादा रेलिवेंट मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि 2012 तो बहुत पुरानी बात होगी, 10 साल ऊपर बात हो गई, बट आपकी लास्ट 3 साल में कैसी रही आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर,
0: अच्छा,
1: वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको स्कोर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अच्छा। अगर आपने लास्ट, मान लो कि लास्ट 3 साइकिल से या लास्ट 3 महीने से आपने ईएमआई मिस की, आप में डिले हुआ ईएमआई, भले वो डिले हुआ 2 दिन 3 दिन 5 दिन का, पर उससे एक ब्यूरो को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो में या कहीं कहीं आपकी क्षमता में कुछ ना कुछ तो इश्यू है,
0: डाउनफॉल
1: शायद से डाउनफॉल आ सकता है, तो तुरंत ही अगर आप देखोगे तो आपका थोड़ा सा स्कोर में इम्पैक्ट आ जाता है। और अगर डिले ज्यादा हो गया और ज्यादा कंटिन्यूस रहा, तो डेफिनेटली ये स्कोर जो हम बोल रहे थे 800-750 से लेके नीचे 650-600-650 तक जा सकता है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक और चीज होती है कि आप कितने लोन्स लेते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी इनकम है 50,000, बट मेरी तो 50,000 के बेसिस पे हम बैंकर्स ये समझते हैं कि आप मिनिमम 70% ऑफ योर इनकम यू कैन पे एज अ ईएमआई। कोई बोलते 60%, कोई बोलते 70%। अगर हम 60% भी पकड़ लीजिए तो 60% ऑफ 50,000 मतलब कितना, 30,000 की ईएमआई में भर सकता हूँ कम्फर्टेबली, क्योंकि मुझे 20,000 तो मेरे खुद के खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए, करेक्ट, सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर सोचिए मैंने 50,000 की सैलरी के सामने, महीने के 50,000 की सैलरी के सामने अगर मेरी ईएमआई 40,000 हो, मैं ओवर लेवरेज्ड हूँ। अभी इसका मतलब क्या, ओवर लेवरेज मतलब मेरे पे ज्यादा लोन की बर्डन है,
0: सही,
1: और ये अगर लोन की बर्डन ज्यादा हो गई तो डोंट यू थिंक आप हाई रिस्क बोरोवर हो गया, क्योंकि आप कभी भी गिर सकते हो,
0: डिफॉल्ट कर सकते हो,
1: गिरना मतलब डिफॉल्ट होना, ठीक है, क्योंकि चांसेस आपकी हाई है। समझिए आपके कुछ खर्चे आ गए और आप वो खर्चे 10,000 रुपए नहीं पूरे कर पाओगे जो आपके बचते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप बैंक को डिले करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे है ना बिहेवियर्स, हमने एक मॉडल में जो हमारा डेटा साइंस मॉडल है उस पे हमने उनको प्लग इन किया है, और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है और जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे, वो आपका स्कोर डिटरमाइन करता है। तो अगर आपका स्कोर कम हुआ मतलब फ्यूचर में आप हम परेशान करोगे बैंक को,
0: बैंक को जी जी,
1: बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेज्ड, ओके, लोन ज्यादा लेना, जरूरत से ज्यादा लेना, आज की जनरेशन में बहुत थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है,
0: लोन का बढ़ गया है, छोटी छोटी बातों में लोन ले लेते हैं, इनकम
1: अभी तक मेरी स्टार्ट भी नहीं हुई ज्यादा, और मैंने आईफोन ले लिया, मैंने कोई म्यूजिक सिस्टम ले लिया क्योंकि
0: गाड़ी ले ली,
1: क्योंकि गाड़ी ले ली, राइट, ठीक है, आज लेटेस्ट मॉडल ही सही चाहिए मुझे सबको, गए वो दिन शायद से जो हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे ग्रैंडफादर्स के पास एक विंटेज कार हुआ करती थी, या यू नो रेडियो, वो जूना पुराना रेडियो चलाते थे, गए वो दिन। अभी आजकल कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया, कुछ भी नया मार्केट में लॉन्च होता है तुरंत ही लोन के लिए
0: अप्लाई करते हैं,
1: अप्लाई करते हैं, होता क्या है वो एक लोन ट्रैक में चले जाते हैं। लोन ट्रैक का मतलब क्या, जो मैंने आपकी आपको समझाया कि मेरी आमदनी 50,000 और मेरी ईएमआई अगर 50,000 के ऑलमोस्ट करीब आ जाती है तो डेफिनेटली मैं वो लोन ट्रैक में घुसता जाऊंगा। और वहां पे जब कोई भी पर्सन गिर जाता है या यू नो कॉम्प्लिकेट कर देता है मैटर को, तो फिर वो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये सारे चीजों से सिबिल स्कोर घट सकता है, कि ज्यादा लोन लेना, आपके ईएमआईस में डिले करना, ठीक है, सेकंड थिंग इनकम से ज्यादा जो ईएमआई भरना या उससे यू नो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो में ईएमआई भरना, तो वो भी सिबिल स्कोर कम कर देगा। सेकंड थिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी का मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे युवा आजकल है ना, आप उनके वॉलेट में देखिएगा 5 credit cards, 6 credit cards, you know, बहुत सारे credit cards होते हैं, और हर एक credit card में 2-2 lakh की limit होती है, 3-3 lakh की limit होती है, okay? आप जितने ऐसे inquiry करोगे, तो civil report में inquiry section आती है, okay? Inquiry section क्या बताती है कि आपने कौन सी बैंक में कौन सी लोन के लिए inquiry किया और कितने अमाउंट के लिए inquiry किया। अगर अगर हम ये देखेंगे कि inquiry आप बहुत ज्यादा कर रहे हो लास्ट 6 महीनों में, ठीक है, तो स्कोर में उतना इम्पैक्ट गिरेगा। अगर मान लीजिए एक अभी कई एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे फ्रेंड का, ठीक है, कि उनको पर्सनल लोन चाहिए था और पर्सनल लोन उन्होंने काफी सारी ले ली बिकॉज उनके कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, तो 2-3 bank के बाद उनके पर्सनल लोन में उन्होंने और भी 2-3 banks के साथ अप्लाई किया, पहले 2-3 banks से ले लिया पर उनको और जरूरत थी तो और वो लोग बैंक के पास अप्रोच किए। ये देखने से जो मॉडल है क्रेडिट स्कोर मॉडल, उनको उनका स्कोर कम होने लगा, ओके, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे थे। सेकंड थिंग बैंक भी उनके लोन्स को रिजेक्ट कर रही थी, इंक्वायरीज, तो उनकी इंक्वायरी बढ़ रही थी, जैसे वो फलाना एक बैंक में गए, नहीं वो रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरे बैंक में गए तो रिजेक्ट हो गया, वैसे उनकी इंक्वायरी होते गई पर लोन मिल नहीं, तो इंक्वायरी बढ़ने लगी, तो मॉडल जो हमारा है वो ये बोलेगा, अच्छा आपको कोई लोन देने को रेडी नहीं है, आप इंक्वायरी पे इंक्वायरी किए जा रहे हो पर कोई लोन आपको दे नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उससे भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी सी खस्ता है, ठीक है, इसके लिए आप हाई रिस्क बोरोअर माने जाते हो। तो मैं समराइज ये करना चाहता हूँ कि सिबिल स्कोर आपके क्रेडिट बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, जो आपने लोन्स कौन से प्रकार के लोन्स लिए हैं, सिक्योर्ड लोन्स लिए, मतलब सिक्योर्ड मतलब होम लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, आपका घर एक सिक्योरिटी बनता है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब पर्सनल लोन्स जिसकी कोई कोलैटरल आप देते
0: नहीं है,
1: जैसे गोल्ड लोन भी एक सिक्योर्ड लोन है, इंडिया में सबसे फ्रीक्वेंट गोल्ड लोन लिया जाता है क्योंकि सबके पास गोल्ड तो होता ही है और उनको गिरवी रख के लोन्स लिए जाते हैं, तो गोल्ड कौन से प्रकार के आप लोन्स लेते हो, कौन से सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, कितने फ्रीक्वेंटली लोन्स ले रहे हो, कितनी ईएमआई भर रहे हो और ईएमआई कैसे भर रहे हो, और इंक्वायरीज कितनी कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, अगर ये सारी चीजों को पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक सिबिल स्कोर आपका बनता है। तो अगर किसी को अपना सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन करना हो तो प्लीज लोन्स आप लिमिटेड लीजिए, इनकम के हिसाब से लीजिए,
0: बिल्कुल सही,
1: ओके, ओवर लेवरेज मत कीजिए, डेट ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है, सेकंड हाँ सेकंड थिंग, जो भी आपने लोन्स लिए अगर आप उसको टाइम से चुकाइए, ओके, जो भी ईएमआई अगर 5 तारीख की ईएमआई तो 5 तारीख को ही प्लीज पे कीजिए,
0: ओके,
1: डिले मत कीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के फुल ड्यूज पे कीजिए, आजकल तो बहुत लोग क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके उसके ऊपर एक ईएमआई चढ़ा देते हैं, तो वो तो बहुत ही यू नो हानिकारक बन जाता है अगर फ्रीक्वेंटली करते हो, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और कम से कम इंक्वायरी हो, बिकॉज ज्यादा इंक्वायरी का मतलब है कि बैंक आपको ज्यादा रिजेक्ट
0: करेगी,
1: तो फिर आपका स्कोर अच्छा बना रहेगा। और अगर गलती से आपका क्योंकि ड्यू टू सम पास्ट इश्यूज आपका स्कोर घट गया है, ठीक है, तो जो भी आपके अभी फिलहाल लोन चल रही है ओके, उसको आप अच्छे से मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे हिस्ट्री जैसे डेवलप होती जाएगी वैसे से आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होते
0: जाएगा।
1: और जो आपने डिफॉल्ट किया है अगर हो सके तो उसको बैंक के साथ एक समझौता करके उसको फुल पेमेंट्स कर दीजिए। अगर वो फुल पेमेंट आप कर दो, भले आपने डिले हो गए थे कोई वांधा नहीं, पर फुल पेमेंट कर दो तो उसके वजह से आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता
0: है।
1: तो आई गेस ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और लाइफ में ही ओवरऑल डिसिप्लिन होना जरूरी
0: है। जरूरी
1: तो सिमिलरली क्रेडिट में भी डिसिप्लिन की कीमत है, वैल्यू है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपकी वैल्यू ज्यादा है।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने देवल जी, और आपने ये जो सारी बातें बताई उससे मुझे गुजराती की कहावत याद आ गई कि पछेड़ी हो एटली सोड तणाय, बराबर, एक्जेक्टली राइट
1: राइट।
0: और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, बहुत जानने को मिला हमें। बहुत सही फरमाया आपने देवल जी, सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वैसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर ये दोनों में हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो कोई हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आता है और सब हमसे नज़र फेर लेते हैं। तो इस पे मुझे एक प्यारा सा नगमा याद आ गया है, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी।

0: हाँ तो देवल जी, अब आप ये बताएं कि देश की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ब्यूरो की का क्या योगदान है?
1: ओके, देश देश की अर्थव्यवस्था के लिए जैसे कि एसएमईज

0: स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, ये सारे है ना, हमेशा हम हाई रिस्क यू नो सेक्टर्स माना जाते थे। मतलब यहाँ पे हम जैसे कि अगर कोई बैंक के पास टाटा ग्रुप की कोई कंपनी आती है, TCS कीजिए या कोई टाटा सन्स या कोई रिलायंस, ऐसे बड़े ग्रुप की महिंद्रा कोई कोई लोन्स, यूजुअली बैंक्स उनके पीछे भागते हैं लोन्स लेने के लिए, राइट? अच्छा। सर हमसे लोन ले लीजिए, यू नो आपके कंपनी का जो कोई एक्सपांशन चल रहा है, तो बैंक्स यूजुअली रेडी रहते हैं लोन्स देने में, राइट? बट व्हाट अबाउट स्मॉल स्केल, जो अभी यू नो जैसे कि एक छोटा सा अगर कोई गृहिणी यू नो
1: स्टार्टअप करना चाहती
0: करती है, छोटा सा बिजनेस यू नो ओपन करते हैं, ठीक है, अगर उनको सपोर्ट करने के लिए कौन है? यूजुअली हम ये देखते आए हुए हैं कि इंडिया में यूजुअली फैमिली बिकम्स द बैंक फॉर दो स्मॉल स्टार्टअप्स। पहला जो सीड पैसा आता है, सीड फंड आता है, जो हम सीड फंड बोलते हैं कि जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, वो या फिर खुद के पर्सनल सेविंग से स्टार्ट होता है या फिर फैमिली ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया रहता है। तो क्रेडिट ब्यूरो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है पूरा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को बाय इंश्योरिंग के अगर आपका स्कोर जनरेट हो तो उससे बैंक को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भले आप स्टार्टअप कर रहे हो बट आपको लोन दिया जा सकता है, ठीक है? तो जो खुद की कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, शायद से उतनी रिक्वायरमेंट आप बचा सकते हो किसी और यू नो इमरजेंसी फंड के लिए, और आप बैंक से लोन लेके आप अपना कार्य शुरू कर सकते हो। तो क्रेडिट ब्यूरो सिंस ये स्कोर जनरेट करते हैं बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द बैंक्स, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने काफी सारे आर्टिकल्स और सर्कुलर्स में भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में बात की है कि क्यों, क्योंकि अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो डिजर्विंग फंड्स टू डिजर्विंग बोरोवर्स इज एसेंशियल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, डिजर्विंग होना फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि यस, अगर मैं जेन्युइनली एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ और जेन्युइनली मेरे पास फिलहाल कोई कोलैटरल नहीं है और मुझे लोन चाहिए, क्योंकि लोन के बिना शायद से मैं आगे
1: ना कर पाऊँ,
0: इन्वेस्टमेंट ना कर पाऊँ, तो मुझे जरूरत है। बट डेफिनेटली मेरा इंटेंट सही है और मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो अगर मुझे थोड़ा सा अगर इनिशियली पुश मिले तो डोंट यू थिंक हम एक अच्छे यू नो इंडिया की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन टू टाटा एंड महिंद्रा एंड रिलायंस, फाउंडेशन इज इंडिया इन टू ग्रास रूट्स ऑफ यू नो दो स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स बाय ऑल वुमेन, सेल्फ हेल्प वुमेन, यू नो। एंड सो इसके लिए क्रेडिट ब्यूरो काफी एक्सेस यू नो फंड्स को एक्सेस करवाते हैं थ्रू देयर स्कोर, क्रेडिट स्कोर मॉडल्स। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और RBI भी ये समझते हैं, एंड हर साल कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में वो चेंज करते हैं जिससे क्रेडिट ब्यूरो भी स्ट्रांग हो और इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करते हैं वो इजीली अवेलेबल हो टू बैंक्स एंड टू बोरोवर्स, सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और डिजर्विंग फंड्स विल बी अवेलेबल टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ये है उनका मोटो।
1: बहुत अच्छी बात है देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए ये समय निकाला और हमें जागरूक किया, हमारे लिसनर्स को भी जागरूक किया और हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और हमें फाइनेंशियल बाबतों से बहुत अवगत कराया। तो जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
0: ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो जयपुर का एंड डेफिनेटली आज सोनल जी का कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके उनका एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म यू नो प्रोवाइड किया जिससे हम अपनी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, जो आजकल काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आजय सोनल जी कॉन्ग्रेचुलेशन, जयपुर रेडियो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन,
1: शुक्रिया
0: टू बोथ ऑफ यू क्रिएट सच अ गुड प्लेटफॉर्म, ओके, एंड मेकिंग श्योर कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सब लोगों को पहुँचे, यू नो, और उससे वो जागरूक है, तो जागरूक बोलते हैं जागरूक ग्राहक ही यू नो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, राइट? तो आई होप योर ऑडियंस विल बी वेरी एनलाइटेंड, ठीक है, विद दिस सेशन. मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए.
1: जी जी.
0: आज मैं काफी लोगों से बात करता हूँ तो मुझे खुशी है कि लोगों को स्कोर के बारे में जानकारी मिलने लगी है, और उनको पता चलने लगा है कि स्कोर कितना जरूरी है, क्रेडिट स्कोर, ओके, और वो स्कोर कैसे दिखता है. मतलब 300 टू 900 हम बोलते रहते हैं, बट आजकल सब लोग कहते हैं कि सर हमारा स्कोर 700 है, मेरा स्कोर 750 है. तो मुझे खुशी होती है कि आजकल के नॉट ओनली यूथ बट इवन द जनरेशन प्रायर टू द जेन जी, ओके, वो सारी जनरेशन भी अवेयर है,
1: अवेयर है, अवेयर है,
0: कि स्कोर मेंटेन करना कितना जरूरी है.
1: जी.
0: स्कोर किस वजह से इफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है. एंड डिस्प्यूट्स भी रेस होते हैं ब्यूरोस के या बैंक से कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत क्यों यू नो आप शेयर कर रहे हो, ठीक है. तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अवेयरनेस हो तो आप सही डायरेक्शन में, सही रास्ते में स्टेप्स ले सकते हो. एंड लास्ट मैसेज ये रहेगा, अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, एक बार अवेयरनेस आ गई तो फिर डिसिप्लिन कल्टिवेट कीजिए एंड एंश्योर कीजिए कि आप फाइनेंशियली हमेशा डिसिप्लिन रहे, सो दैट आप अपने लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें.
1: जी जी.
0: बिकॉज फाइनली अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे
1: जी,
0: तो आप कभी अपने चॉइसेस खुद कर सकते हो. यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन, और आप इंडिपेंडेंट रहोगे, खुश रहोगे, ठीक है, और खुद के चॉइसेस खुद बना सकते हो. सो आई विश ऑल योर ऑडियंसेस, ओके, अ वेरी हैप्पी डिसिप्लिन क्रेडिट लाइफ. And
1: Thank
0: I
1: you.
0: hope ये सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर कहिए, ठीक है, वो एक माध्यम बने
1: जी
0: टू मेक श्योर कि आपकी लाइफ और बेहतर बने.
1: नहीं नहीं देवल जी, आज आपने जिस प्रकार से हमें सबको समझाया है, हमें जानकारी दी है, मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लिसनर्स को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, क्रेडिट स्कोर के बारे में बहुत सारी, और लोन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है. तो हम तो आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है. तो देवल जी, बहुत सरल तरीके से आपने हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी दी. तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि बस हमारे सब लिसनर्स सतर्क रहे.
2: हाँ तो देवल जी, आपकी सारी ये बातें हम जरूर याद रखेंगे. आप सभी लिसनर्स ये कह सकते हैं कि चलते चलते मेरी ये बातें याद रखना. तो एक मधुर सा नगमा चलते चलते सबको सुना देती हूँ.

0: दोस्तों जूनागढ़ से मैं आरजे सोनल पारेख जयपुर रेडियो के लिए एक खास प्रोग्राम लेके आई हूँ। ये बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण विषय पर है और ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत पास है और खास भी है मेरे लिए। कुछ दिनों पहले ही मैं बैंक में गई थी तो मुझसे पूछा गया का आपका सिबिल स्कोर क्या है, तो मैं एकदम हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि फाइनेंस के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ जब मैं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए ट्रांस यूनियन सिविल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देवल गांधी से मिली, तो उन्होंने बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे समझाया कि सिबिल स्कोर क्या होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना यह सब जानकारी मैं जयपुर रेडियो के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। तो देवल जी, हृदय तल से आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर रेडियो के इस कार्यक्रम में। तो देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस मुलाकात के लिए प्रोत्साहित किया, और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी दी है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सोनल जी, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए, एंड आप ये इतनी अच्छे कार्य के लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि श्रोताओं के लिए सोचना कि उनके लिए क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी और उनके लिए प्लानिंग करना, ये एक बहुत मेहनत का काम है। एंड मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रेडिट स्कोर या फिर हम उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर, ओके, वो उसके बारे में जानकारी समझना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या उसके फायदे हैं, उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाना। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर ऑडियंस फॉर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल शो। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माय स्टडीज मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आई जॉइंड एन आईटी कंपनी में मैंने एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद मैंने एमबीए किया फाइनेंस में, एंड मैं आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स से बैंकिंग फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन वेरियस लोन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमने लार्ज कॉर्पोरेट्स, छोटे कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, एसएमईज को सबको हमने लोन्स दी है। तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कैसे लोन्स दी जाती है, कैसे बोरोअर की क्षमता को हम परखते हैं कि कौन हमें पैसे दे पाएंगे वापस, रीपेमेंट उनकी कैसे रहेगी, कौन डिफॉल्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों के जरिए मैं अपने एक्सपीरियंस जब भी हो रहा था, वर्क एक्सपीरियंस हम गैदर कर रहे थे, तभी मैंने एक देखा कि सिबिल स्कोर बहुत ही महत्व का था, जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते थे फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव कि इनको लोन देना चाहिए कोई स्पेसिफिक कंपनी को या इंडिविजुअल बोरोवर को या नहीं देना चाहिए। तो उससे मुझे बहुत उत्सुकता बढ़ी कि कैसे ये सिबिल स्कोर बनता है, कैसे डेटा के बेसिस पे ये स्कोर आता है, जिसके बेसिस पे हम सारी बैंक्स, इंडिया की सारी बैंक्स, ना कि इंडिया की बैंक्स, ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर तो सारे इंटरनेशनली भी काफ़ी बैंक्स यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे बोरोवर को क्रेडिट कार्ड, लोन्स वैसे सारे सुविधा देते हैं। तो वही क्यूरियोसिटी मेरी 2023 में मेरी हुई 22-23 में,

0: क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे वो थ्री इडियट्स की लाइन आती है जब ये आमिर खान बोलते हैं कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ सीट, जब वो एक डायलॉग बोलते हैं कि इंजीनियर करके फिर आप MBA का यू नो फाइनेंस करते हो. बट आई थिंक फाइनेंस तो बीइंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड माय फादर बीइंग फ्रॉम अ यू नो बिजनेस बैकग्राउंड, आई थिंक फाइनेंस तो कहीं ना कहीं तो यू नो छुपा हुआ ही था. इट्स जस्ट दैट मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी क्षमता टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ. बट जैसे मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया, IT कंपनी में काम किया, मुझे उनकी जो फाइनेंस रिलेटेड जो थे बेसिक्स और जो यू नो बिजनेस कैसे रन करता है, मुझे उस पर ज़्यादा उत्सुकता बनी कि कैसे हम बिजनेस इसको इवेल्यूएट करते हैं, कैसे उसके कैश फ्लोज को देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रादर देन डूइंग कोडिंग. और उसी उत्सुकता से और मुझे सपोर्ट भी मिला फैमिली से कि मैंने फिर MBA फाइनेंस किया. एंड MBA फाइनेंस के बाद
1: आपका ये इंट्रोडक्शन सुन के तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके दिल को तभी चैन आता है जब अपने गोल या अपने मोटिव को आप प्राप्त कर लेते हैं. तो क्यों ना एक प्यारा सा नगमा हमारे लिसनर्स को सुना दे.
0: श्योर, व्हाई नॉट.

0: हाँ तो देवल जी, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सिविल स्कोर होता क्या है और कैसे जनरेट होता है और उसकी गिनती किस आधार पे की जाती है।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सिविल स्कोर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। ओके, तो आई थिंक मैं ना जब भी मुझे एक क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हम एक स्कूल में जब भी थे तो एक मार्कशीट हमें मिलती थी, राइट, कि ये पूरा साल में हमने कैसे परफॉर्म किया।

0: तो किसी को ए ग्रेड मिलता था, किसी को बी ग्रेड मिलता था, सी ग्रेड, डिपेंडिंग ऑन उनके परफॉर्मेंस पे, राइट। और ये परफॉर्मेंस कैसे होता था, आपके हार्ड वर्क के बेसिस पे मेजर होता था, राइट। आपके हार्ड वर्क और आपने जिस तरह से एग्जाम्स को दी है, वैसे ही इन रियल लाइफ सिनेरियो आपको एक अगर कोई स्कोर करे कि लेट्स से आपको 300 टू 900 के बीच में एक स्कोर मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिबिल स्कोर रेंज। तो सिबिल स्कोर का रेंज है 300 टू 900, उसके बीच में हम सारे इंडिविजुअल्स को जो भी लोन लेना चाहते हैं या जो भी जिन्होंने लोन लिया है पहले, ठीक है, उनको हम रेट करते हैं, एक रैंक देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी को 850 का रैंक दूँ, स्कोर दूँ, तो उसका मतलब ये है कि उनकी क्षमता बहुत बढ़िया है, जो भी वो लोग लोन्स लेते हैं या लिया है वो सही टाइम पे चुकाते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। अगर किसी का भी स्कोर लेट्स से 600 या 500 के आसपास हो, तो हम उसको रिस्की बोलते हैं कि इनमें रिस्क ज़्यादा है। ओके, क्यों रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जिन्होंने उनमें लोन ली थी या क्रेडिट कार्ड्स लिए थे, तो वो उन्होंने सही टाइम पे नहीं भरे थे, और सही टाइम पे नहीं भरने के कारण हमारा जो मानना है कि ये लोन अगर लेंगे फ्यूचर में तो वो डेफिनेटली डिफॉल्ट करने के चांसेस हाई है, तो हम उनको बोलते हैं रिस्की बोरोवर। तो 300 मतलब हाई रिस्क, और जैसे 300 के से लेके 900 तक जाएंगे तो एनी स्कोर विच इज नियर टू 900 इज अ लो रिस्क स्कोर। तो सिबिल स्कोर इज जस्ट हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई कि कौन अच्छा बोरोवर है और कौन रिस्की बोरोवर है। ओके, इससे बैंकों को ये पता चलता है कि अगर उनके पास लोन एप्लीकेशन आती है या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आती है, पर्सनल लोन की एप्लीकेशन आती है, होम लोन की एप्लीकेशन आती है, वो पहले जाके सिबिल स्कोर चेक करता है, और सिबिल स्कोर देखने के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको लोन देना चाहिए, अगर हाँ देना चाहिए तो किस ब्याज दर पे देना चाहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर के बेसिस पे भी आजकल ब्याज दर डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने होम लोन लिया था
1: जी,
0: एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक से, काफी फेमस प्राइवेट बैंक है। मैं तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि उनका स्कोर 750 के आसपास था, तो उनको एक अच्छे बोरोवर जिसका स्कोर शायद से 790-800 अगर हो, उनसे उनको 5 पैसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, मतलब कि 7.5 अगर होम लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको 7.55 भरना पड़ा, बिकॉज उनका सिबिल स्कोर थोड़ा सा
1: लो था,
0: ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक्स एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट अभी बात हो चुकी है कि क्रेडिट स्कोर, जो हम उसको अभी हमारे कॉमन लैंग्वेज में सिबिल स्कोर भी बोलते हैं, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है और उसको मेंटेन करना कितनी बड़ी बात अभी हो गई है। तो अभी आई थिंक मोटा मोटी मैंने आपको जो कहा कि क्रेडिट स्कोर ये आपका दर्शाता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है,
1: कैसी है,
0: और आपने पास्ट में जो भी लोन्स लिए हैं वो आपने किस तरह से चुकाए हैं। अगर आप रेगुलर हो तो आई थिंक आपका स्कोर हाई होना चाहिए, अगर आप इरेगुलर रहे हो, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया या आपने कोई डिफॉल्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर कम हो जाएगा और उससे आपको फ्यूचर में लोन लेने की दिक्कतें बढ़ सकती है।
1: जी जी हाँ, जब लोन की बात चली है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई भी इंसान कौन कौन सी चीजों पर लोन ले सकता है।
0: हाँ अच्छा, तो इंसानों की अगर हम देखें तो जरूरतें क्या होती है लोन्स लेने के लिए, अगर हम डेफिनेटली हम लोन का मतलब ही क्या कि आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है पर मुझे कुछ चीज खरीदनी है या मुझे कुछ चीज परचेस करनी है, तो डेफिनेटली मुझे बैंक की सहायता से मैं वो चीज को किस्तों में भर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आई थिंक बहुत ही ये सेफ प्रैक्टिस है कि डेफिनेटली किस्तों में भर के आप अपनी चीजों को, जो भी आपकी यूजफुल चीजें हैं उसको आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, राइट, और आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे से सुधार सकते हो। तो एक तो होती है आपकी लाइफस्टाइल लोन्स, जैसे कि कंज्यूमर लोन, अगर आपने कोई क्रोमा के शोरूम में गए या कोई डिजिटल शोरूम में गए, आपको टीवी पसंद आ गया, तो डेफिनेटली वहां पे आप कंज्यूमर लोन्स मिलते हैं जहाँ पे आप टीवी को किस्तों में परचेस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर लोन्स। फिर होते हैं कोई पर्सनल लोन, जैसे कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई या कोई एजुकेशन कोर्स का मुझे फी भरना पड़ा,
1: एजुकेशन लोन भी होगी,
0: एजुकेशन लोन भी हो जाती है, और पर्सनल मेरे कुछ यू नो अगर शादी ब्याह का खर्चा हो गया ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इमरजेंसी कोई लोन अगर चाहिए ठीक है, तो हम पर्सनल लोन लेते हैं जो 3-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक यू नो लोग बैंक आपको देते हैं ठीक है, और उसकी जो टेन्योर होती है लोन्स की वो 1 साल की भी होती है, 2 साल, 3 साल तक होती है। तो ये हो गए पर्सनल लोन जो पर्सनल कैपेसिटी पे ली जाती है। फिर आपने बोला एजुकेशन लोन जो बच्चों के लिए पेरेंट्स लेते हैं यूजुअली, वो भी एक लोन है। फिर सबसे बड़ी लोन है जो होम लोन, हो घर सबका सपना है और घर होना एक सबसे बड़ी बात होती है अपने इंडियन यू नो वैल्यू सिस्टम में। तो होम लोन सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और ज़्यादातर लोग होम लोन ज़्यादा लेते हैं ठीक है, मतलब हाइस्ट परसेंटेज ऑफ लोन। फिर उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी लोन ले सकता हूँ। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोन्स, और लास्ट में होता है बिजनेस लोन्स जो यूजुअली फर्म्स मतलब कंपनीज लोन्स लेते हैं उनके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे लोन्स होते हैं और ये सारे लोन्स का असेसमेंट कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर के द्वारा स्टार्ट होता है।
1: जी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है और थोड़ा बहुत हम ये लोन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्यारा सा गीत हो जाए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।
0: क्या बात है, बढ़िया बढ़िया
1: बढ़िया बात है ना। हाँ,

0: हाँ तो देवल जी, हमारे लिसनर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये सिबिल एक्चुअली क्या क्या है और सिबिल जैसी कितनी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और इसका क्या और कितना महत्व भी है, ये भी आप हमें बताइए।
1: तो सिबिल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल आज से 25 साल पहले इनकॉर्पोरेट की थी, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी जो वेटरन बैंकर्स हम कहते हैं, दीपक पारेख एंड बैंकर्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सब ने एक डिसाइड किया कि जैसे कि इंटरनेशनली हर जगह ब्यूरोज होते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज, ये कंपनीज को हम बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरो, जो एक्चुअली इंडिविजुअल्स का डेटा स्टोर करते हैं। और क्या डेटा स्टोर करते हैं? उनके लोन के डिटेल स्टोर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे नाम हो गया, उनके आईडी, पैन आईडी है, वोटर आईडी है, आधार आईडी, वो सब स्टोर करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें वो स्टोर करते हैं। और उन्होंने कौन से जगह से क्या क्या लोन्स लिए हैं और उनकी कैसे पेमेंट हिस्ट्री रही है, वो सारी वो बैंक से डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिट ब्यूरो में 4 क्रेडिट ब्यूरोस है इंडिया में,
0: अच्छा,
1: उसमें से ट्रांस यूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो, विच इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन। इसके लिए आज इंडिया में जब भी कोई क्रेडिट स्कोर बोलता है तो वो सिबिल स्कोर बोलता है,
0: अच्छा,
1: ओके, ना कि क्रेडिट स्कोर।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है ये
1: तो। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत हमारे घर पे भी एक है कि भाई बिस्किट्स नहीं बोलते हम, पार्ले जी बोलते हैं,
0: जी जी,
1: राइट, ठीक है, भले हम खाए गुड डे पर शायद से हम बोलेंगे अरे हम भैया पार्ले जी देना, ठीक है। वैसे ये एक क्रेडिट स्कोर का नाम अभी सिबिल स्कोर बन गया है, बट फॉर जानकारी, ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसयूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो, सेकेंड क्रेडिट ब्यूरो इज एक्सपीरियन, थर्ड क्रेडिट ब्यूरो इज इक्विफैक्स एंड द फोर्थ क्रेडिट ब्यूरो इज हाईमार्क क्रिफ। ये 4 कंपनीज हैं जो ऐसे स्कोर्स डेवलप करते हैं और बैंक्स वो स्कोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिबिल स्कोर का महत्व क्या है। तो मैंने जैसे अभी जस्ट आपके एक प्रश्न में कहा था और मेरे फ्रेंड का मैंने एग्जांपल दिया था कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर रादर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज वो आपके क्षमता को डिपिक्ट करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड हो, आपका पर्सनल लोन हो, आपका टर्म लोन हो, जो भी आप लोन्स लेते हो या क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट लेते हो कोई बैंक से, तो वो आपका कैसा व्यवहार रहा है वो बैंक से और वो कैसे पेमेंट्स हुई है, उसके बारे में सिबिल रिपोर्ट आपको दर्शाता है और वो डिसिप्लिन के हिसाब से आपको स्कोर करता है। अच्छा स्कोर तो बैंक आपको अच्छे से और लोन देगा, अगर स्कोर बुरा है या थोड़ा सा कम है तो बैंक शायद आपको ना भी बोलते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिबिल की जानकारी रखें। आपको सिबिल गवर्नमेंट द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा साल में एक सिबिल रिपोर्ट फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो सिबिल में कैप्चर हुई है वो देख सकते हैं एंड उसको आप जांच भी कर सकते हो कि सही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपकी गलत कैप्चर हुई है तो आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो, जो आपके सिबिल के साइट पे आप जाके कर सकते हो, बहुत इजी है। और आप वहाँ पे रिजर्व बैंक ने सबको टाइमलाइंस भी दिया है कि अगर आप डिस्प्यूट आज रेज करते हो तो वो डिस्प्यूट 30 दिन के अंदर आपको रिजोल्व करना है, कंपनी को रिजोल्व करना है,
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही सहूलियत अभी कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में फुल जानकारी रख सके और अगर कोई जानकारी में कोई गलतियां हो तो उसका डिस्प्यूट रेज करके, ठीक है, साइट पे वो रिजोल्व भी कर सकते हैं तुरंत।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो ये एक RBI का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है कि पूरा क्रेडिट इकोसिस्टम, जो हम बोलते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक इंडिविजुअल फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली बनाना और इंश्योर करना कि जो भी जरूरतमंद है उनके तक हेल्प पहुंचे थ्रू क्रेडिट स्कोर। और हेल्प कैसे पहुंचेगी? अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा तो बैंक्स उनको पैसे देंगे और
0: देंगे,
1: वो देंगे, पैसे देंगे तो उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी जरूरतें पूरी होगी और वो अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, फैमिली को ग्रो कर सकते हैं।
0: हाँ, ये मैंने अभी आपने जब बात बताई उसका महत्व बताया तो हाल ही में मैंने पेपर में एक किस्सा पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कहीं किसी व्यक्ति की मंगनी टूट गई, क्योंकि उसका सिबिल रिपोर्ट थोड़ा लो था। तो ये भी आजकल सब लोग, ये बिल्कुल सही बात है कि सिबिल का यानी रिपोर्ट का इतना महत्व हो गया, तो ये बात सही है क्या?
1: हाँ, ये बात सही है कि आजकल, और ये बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग भी है कि क्रेडिट स्कोर के अभी यूसेजेस कितने बढ़ने लगे हैं। खाली अभी बैंक नहीं, अभी तो आई गेस शादी ब्याह में भी पूछे जाते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बताइए, क्योंकि प्रश्न तो वही है। हाँ। प्रश्न तो वही है कि क्या ये मेरी बेटी को संभाल पाएंगे, या क्या उनके पास सफिशिएंट इनकम है, क्या उनका व्यवहार, खाली फैमिली व्यवहार नहीं पर उनका बैंकों के साथ भी फाइनेंस व्यवहार भी अच्छा है कि नहीं। बिकॉज आज की लाइफ स्टाइल में, आज के जनरेशन में फाइनेंशियल व्यवहार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सतर्क हो, क्या आप डिसिप्लिन्ड हो। क्योंकि आप, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप डेफिनेटली अच्छे से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और स्टेबलाइज हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मैं भी ना चाहूँ कि मैं किसी के साथ आगे व्यवहार करूँ, क्योंकि रिस्क बना रहेगा। ठीक है, और रिस्क है तो फिर
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत सरलता से और बहुत सारी जानकारी दी है आपने देवल जी हमें। तो ये बताइए कि क्रेडिट स्कोर का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में किस तरह से मदद करता है।
1: अच्छा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की जनरेशन में हो चुका है। अभी आज जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद जब तक मुझे जॉब नहीं लगी थी तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स कि भाई मुझे पॉकेट मनी मिलेगी और मेरे खर्चे उनके पॉकेट मनी से चलेंगे। आज की जनरेशन बहुत अलग सोचती है, उनको डे वन से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब क्या? मतलब तो यही है ना कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। डेफिनेटली आपकी इनकम से आप अपने खर्चे उठा सकते हो और कभी कभी आपको खर्चे उठाने के लिए शायद आप छोटी सी लोन भी ले सकते हो।
0: जी जी,
1: ये लोन लेने में जो सुविधा जो हेल्प करते हैं, पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर आपको फलाने बैंक से लोन लेनी है तो आपकी वहां पे पहचान होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए कि मैं ये मैनेजर को जानता हूँ, कि मैं उस मैनेजर को जानता हूँ, और उसके बेसिस पे, जान पहचान के बेसिस पे हमको लोन मिलती थी। तो हम बोलते थे उसको कि जान पहचान होनी चाहिए बैंकर्स के साथ तो आपको लोन मिल सकती है। करेक्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हम डिपेंडेंट थे। अगर हमारी जान पहचान नहीं है तो फिर शायद से हमारे पास वो पहुंच नहीं है, तो फिर शायद से हमको लोन ना भी मिले, रिजेक्शन हो जाए। तो डोंट यू थिंक हम इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं थे? करेक्ट, हमें कहीं में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना था। ठीक है, आज की जो युवा है वो एकदम बेफिक्र इंडिपेंडेंट होके भी बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे फिनटेक्स आ गए हैं जो डिजिटल कंपनीज है, और एक क्लिक ऑफ द बटन में ठीक है वो लोन्स लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन तब हुआ जब ये ना के खाली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बट ये क्रेडिट ब्यूरो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लास्ट 25 इयर्स में, कि जहाँ पे उन्होंने बैंक को पहचान वाले मॉडल से निकाल के ओके, ब्यूरो स्कोर के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट में डिस्प्ले करके, ठीक है, पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है,
0: जरूरत ही नहीं है।
1: अभी आज मुझे अगर आपके बारे में कुछ जानना हो तो शायद मैं आपके सिबिल रिपोर्ट को या ब्यूरो रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करूं और वहां से पता चल जाए कि आपका व्यवहार, पिछला व्यवहार बैंकों से कैसा रहा, और उससे मुझे कंफर्टेबल मैं रहूंगा कि मैं आपको लोन दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आज का जो युवा पीढ़ी भी है, या फिर मैं वो भी बोलूँ कि जो गांव में रहते हो या टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में रहते हो, जहाँ पे वो बैंक में जाना पहले अनिवार्य भी नहीं था, मतलब एकदम पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी, आज उनको अपने ही स्कोर के द्वारा, अगर उनका स्कोर है तो उनको लोन मिल सकती है, लोन प्राप्त हो सकती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ इंडिपेंडेंट लिविंग एंड वेरी एसेंशियल, एंड इट इज क्रेडिट ब्यूरोज आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंश्योरिंग के हर व्यक्ति
0: जी,
1: डिजर्विंग व्यक्ति
0: जी,
1: को क्रेडिट प्राप्त हो, और इसमें ब्यूरो के थ्रू उनकी वो क्षमता पूरी हो सकती है।
0: जी जी,
1: तो यही है मेरा कहना कि यस, बहुत ही रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है।
0: या हाँ, तो देवल जी आपने सिबिल के बारे में जानकारी देकर हमारे श्रोताओं की बहुत सारी फिक्र धुएं में उड़ा दी है। तो एक प्यारा सा नगमा यहाँ पे हो जाए, तो आइए सुनते हैं

0: अच्छा देवल जी, क्रेडिट स्कोर के बारे में तो आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर कम हो तो उसे सुधारने या उसको क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए यानी किसी व्यक्ति को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और कौन कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप हमें बताइए कि वो कैसे मेंटेन कर सके अपना क्रेडिट स्कोर।
1: यस, काफी वैलिड क्वेश्चन है ये, एंड ये अवेयरनेस होनी जरूरी है। हमने ये तो जान लिया पहले क्वेश्चंस में जो आपने पूछे मुझे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, तो आई थिंक आपके ऑडियंस अभी सब अवेयर है कि सिबिल स्कोर बोलो या फिर क्रेडिट स्कोर बोलिए क्या होता है, वो सबको अवेयर है। 300 to 900 के बीच में स्कोर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कोर बनता कैसे है उससे जानते हैं, फिर उससे हम आगे समझ सकते हैं कि कैसे मेंटेन करें, ठीक है। स्कोर बनता है आपका जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या आता है, आपका नाम, एज, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस एंड एवरीथिंग, वो आपके ब्यूरो में प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट, ठीक है। कभी कभी उसमें गलतियां होती है, बैंक गलत इंफॉर्मेशन भी रिपोर्ट करते हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी कुछ इनकम लेवल भी कैप्चर होती है कि आपकी इनकम क्या थी। जब भी आपने लोन लेते हैं तो बैंक आपसे इनकम पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। सेकेंड थिंग, आपके जो भी लोन आपने लिए, मतलब छोटी छोटी 5,000 की लोन ली हो या फिर आपने 1 करोड़ की लोन ली हो, ठीक है, सारी की सारी लोन आपके सिबिल रिपोर्ट में या ब्यूरो रिपोर्ट में आ जाती है, ठीक है। अभी ब्यूरो रिपोर्ट क्या करता है, उसको चेक करता है कि जो भी लोन कही है आपने ली है, ठीक है, उसकी पेमेंट लास्ट 36 मंथ्स मतलब 3 साल, ये हम 3 साल का रिकॉर्ड हम के बेसिस पे हम स्कोर को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा। भले आपने 2012 में आपने लोन लिया हो, बट उसकी जो पेमेंट हिस्ट्री है ना, वो हम लास्ट 3 साल के, मतलब आज से लेके लास्ट 3 इयर्स तक, मैं उसको ज्यादा रेलिवेंट मानता हूँ, क्योंकि 2012 तो बहुत बहुत पुरानी बात होगी, 10 साल ऊपर बात होगी, बट आपकी लास्ट 3 साल में कैसी रही आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर,
0: अच्छा,
1: वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको स्कोर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अच्छा। अगर आपने लास्ट, मान लो कि लास्ट 3 साइकिल से या लास्ट 3 महीने से आपने ईएमआई मिस की, आप में डिले हुआ ईएमआई, भले वो डिले हुआ 2 दिन 3 दिन 5 दिन का, पर उससे एक ब्यूरो को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो में या कहीं कहीं आपकी क्षमता में कुछ ना कुछ तो इश्यू है, डाउनफॉल आ सकता है, तो तुरंत ही अगर आप देखोगे तो आपका थोड़ा सा स्कोर में इम्पैक्ट आ जाता है। और अगर डिले ज्यादा हो गया और ज्यादा कंटिन्यूस रहा, तो डेफिनेटली ये स्कोर जो हम बोल रहे थे 800 साढ़े 700 से लेके नीचे 650 तक जा सकता है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक और चीज होती है कि आप कितने लोन्स लेते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी इनकम है 50,000, बट मेरी तो 50,000 के बेसिस पे हम बैंकर्स ये समझते हैं कि आप मिनिमम 70% ऑफ योर इनकम यू कैन पे एज अ ईएमआई। कोई बोलते 60%, कोई बोलते 70%। अगर हम 60% भी पकड़ लीजिए तो 60% ऑफ 50,000 मतलब कितना, 30,000 की ईएमआई में भर सकता हूँ कंफर्टेबली, क्योंकि मुझे 20,000 तो मेरे खुद के खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए, करेक्ट, सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर सोचिए मैंने 50,000 की सैलरी के सामने, महीने के 50,000 की सैलरी के सामने अगर मेरी ईएमआई 40,000 हो, तो डोंट यू थिंक मैं ओवर लेवरेज्ड हूँ। अभी इसका मतलब क्या, ओवर लेवरेज मतलब मेरे पे ज्यादा लोन की बर्डन है,
0: सही,
1: और ये अगर लोन की बर्डन ज्यादा हो गई तो डोंट यू थिंक आप हाई रिस्क बोरोवर हो गया, क्योंकि आप कभी भी डिफॉल्ट कर सकते हो, गिरना मतलब डिफॉल्ट होना, ठीक है, क्योंकि चांसेस आपकी हाई है। समझिए आपके कुछ खर्चे आ गए और आप वो खर्चे 10,000 रुपए नहीं पूरे कर पाओगे जो आपके बचते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप बैंक को डिले करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे है ना बिहेवियर्स, हमने एक मॉडल में जो हमारा डेटा साइंस मॉडल है उस पे हमने उनको प्लग इन किया है, और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है और जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे, वो आपका स्कोर डिटरमाइन करता है। तो अगर आपका स्कोर कम हुआ मतलब फ्यूचर में आप हम परेशान करोगे बैंक को,
0: बैंक को जी जी,
1: बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेज्ड,
0: हाँ
1: ओके, लोन ज्यादा लेना, जरूरत से ज्यादा लेना, हाँ, आज की जनरेशन में बहुत थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है,
0: लोन का बढ़ गया है, हाँ, छोटी छोटी बातों में लोन ले लेते हैं, इनकम
1: अभी तक मेरी स्टार्ट भी नहीं हुई ज्यादा, और मैंने आईफोन ले लिया, मैंने कोई म्यूजिक सिस्टम ले लिया,
0: गाड़ी ले ली
1: राइट, ठीक है, आज लेटेस्ट मॉडल ही सही चाहिए मुझे सबको,
0: हाँ,
1: गए वो दिन शायद से जो हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे ग्रैंडफादर्स के पास एक विंटेज कार हुआ करती थी, या यू नो रेडियो, वो जूना पुराना रेडियो चलाते थे, गए वो दिन। अभी आजकल कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया, कुछ भी नया मार्केट में लॉन्च होता है तुरंत ही लोन के लिए
0: अप्लाई करते हैं।
1: इसमें होता क्या है, वो एक लोन ट्रैक में चले जाते हैं। लोन ट्रैक का मतलब क्या, जो मैंने आपकी आपको समझाया कि मेरी आमदनी 50,000,
0: हाँ,
1: और मेरी ईएमआई अगर 50,000 के ऑलमोस्ट करीब आ जाती है,
0: हाँ,
1: तो डेफिनेटली मैं वो लोन ट्रैक में घुसता जाऊंगा। और वहां पे जब भी कोई भी पर्सन गिर जाता है या यू नो कॉम्प्लिकेट कर देता है मैटर को, तो फिर वो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये सारे चीजों से सिबिल स्कोर घट सकता है, कि ज्यादा लोन लेना, आपके ईएमआई में डिले करना, ठीक है, सेकंड थिंग इनकम से ज्यादा जो ईएमआई भरना या उससे यू नो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो में ईएमआई भरना, तो वो भी सिबिल स्कोर कम कर देगा। सेकंड थिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी का मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे युवा आजकल है ना, आप उनके वॉलेट में देखिएगा 5 credit cards, 6 credit cards, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, और हर एक क्रेडिट कार्ड में 2-2 lakh की लिमिट होती है, 3-3 lakh की लिमिट होती है, ओके, आप जितने ऐसे इंक्वायरी करोगे तो सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी सेक्शन आती है, ओके, इंक्वायरी सेक्शन क्या बताती है कि आपने कौन सी बैंक में कौन सी लोन के लिए इंक्वायरी किया और कितने अमाउंट के लिए इंक्वायरी किया। अगर हम ये देखेंगे कि इंक्वायरी आप बहुत ज्यादा कर रहे हो लास्ट 6 महीनों में, ठीक है, तो स्कोर में उतना इम्पैक्ट गिरेगा। अगर मान लीजिए एक अभी का एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे फ्रेंड का, ठीक है, कि उनको पर्सनल लोन चाहिए था और पर्सनल लोन उन्होंने काफी सारी ले ली बिकॉज उनके कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, तो 2-3 बैंक के बाद उनके पर्सनल लोन में उन्होंने और भी 2-3 बैंकों के साथ अप्लाई किया, पहले 2-3 बैंक से ले लिया पर उनको और जरूरत थी तो और वो लोग बैंक के पास अप्रोच किए। ये देखने से जो मॉडल है क्रेडिट स्कोर मॉडल, उनको उनका स्कोर कम होने लगा, ओके, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे थे। सेकंड थिंग, बैंक भी उनके लोन्स को रिजेक्ट कर रही थी इंक्वायरीज, तो उनकी इंक्वायरी बढ़ रही थी, जैसे वो फलाना एक बैंक में गए, नहीं वो रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरे बैंक में गए तो रिजेक्ट हो गया, वैसे उनकी इंक्वायरी होते गई पर लोन मिली नहीं, तो इंक्वायरी बढ़ने लगी, तो मॉडल जो हमारा है वो ये बोलेगा, अच्छा आपको कोई लोन देने को रेडी नहीं है, आप इंक्वायरी पे इंक्वायरी किए जा रहे हो पर कोई लोन आपको दे नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उससे भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी सी खस्ता है, ठीक है, इसके लिए आप हाई रिस्क बोरर माने जाते हो। तो मैं समराइज ये करना चाहता हूँ कि सिबिल स्कोर आपके क्रेडिट बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, जो आपने लोन्स कौन से प्रकार के लोन्स लिए हैं, सिक्योर्ड लोन्स लिए, मतलब सिक्योर्ड मतलब होम लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, आपका घर एक सिक्योरिटी बनता है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब पर्सनल लोन्स जिसकी कोई कोलैटरल
0: आप देते नहीं है, ऐसे खर्च ना करें,
1: जैसे गोल्ड लोन भी एक सिक्योर्ड लोन है, इंडिया में सबसे फ्रीक्वेंट गोल्ड लोन लिया जाता है क्योंकि सबके पास गोल्ड तो होता ही है और उनको गिरवी रख के लोन्स लिए जाते हैं। तो गोल्ड कौन से प्रकार के आप लोन्स लेते हो, कौन से सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कितने फ्रीक्वेंटली लोन्स ले रहे हो, कितनी ईएमआई भर रहे हो और ईएमआई कैसे भर रहे हो,
0: जी जी,
1: और इंक्वायरीज कितनी कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, अगर ये सारी चीजों को पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक सिबिल स्कोर आपका बनता है,
0: जी जी।
1: तो अगर किसी को अपना सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन करना हो तो प्लीज लोन्स आप लिमिटेड लीजिए, इनकम के हिसाब से लीजिए,
0: बिल्कुल सही,
1: ओके, ओवर लेवरेज मत कीजिए, डेट ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है, सेकेंड, हाँ सेकेंड थिंग, जो भी आपने लोन्स लिए अगर आप उसको टाइम से चुकाइए, ओके, जो भी ईएमआई अगर 5 तारीख की ईएमआई तो 5 तारीख को ही प्लीज पे कीजिए, डिले मत कीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के फुल ड्यूज पे कीजिए, आजकल तो बहुत लोग क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके उसके ऊपर एक ईएमआई चढ़ा देते हैं, तो वो तो बहुत ही यू नो हानिकारक बन जाता है अगर फ्रीक्वेंटली करते हो तो,
0: ठीक है।
1: तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और कम से कम इंक्वायरी हो, बिकॉज ज्यादा इंक्वायरी का मतलब है कि बैंक आपको ज्यादा रिजेक्ट
0: करेगी,
1: तो फिर आपका स्कोर अच्छा बना रहेगा। और अगर गलती से आपका, क्योंकि ड्यू टू सम पास्ट इश्यूज आपका स्कोर घट गया है, ठीक है, तो जो भी आपकी अभी फिलहाल लोन चल रही है उसको आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे हिस्ट्री जैसे डेवलप होती जाएगी वैसे से आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होते
0: जाएगा। जाएगा
1: और जो आपने डिफॉल्ट किया है अगर हो सके तो उसको बैंक के साथ एक समझौता करके उसको फुल पेमेंट्स कर दीजिए। अगर वो फुल पेमेंट आप कर दो, भले आपने डिले हो गए थे कोई वादा नहीं, पर फुल पेमेंट कर दो तो उसके वजह से आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता
0: है।
1: तो आई गेस ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और लाइफ में ही ओवरऑल डिसिप्लिन होना जरूरी
0: है।
1: तो सिमिलरली क्रेडिट में भी डिसिप्लिन की एक कीमत है, वैल्यू है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपकी वैल्यू ज्यादा है।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने देवल जी, और आपने ये जो सारी बातें बताई उससे मुझे गुजराती की कहावत याद आ गई कि पछेड़ी हो एटली सोड तणाई, बराबर, एग्जैक्टली राइट
1: राइट।
0: और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, बहुत जानने को मिला हमें। बहुत सही फरमाया आपने देवल जी, सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वैसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर ये दोनों में हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो कोई हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आता है और सब हमसे नज़र फेर लेते हैं। तो इस पे मुझे एक प्यारा सा नगमा याद आ गया है, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी।

0: हाँ तो देवल जी, अब आप ये बताएं कि देश की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ब्यूरो की का क्या योगदान है?
1: हाँ ओके। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जैसे कि एसएमईज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, ये सारे है ना, हमेशा हम हाई रिस्क सेक्टर्स माना जाते थे। मतलब यहाँ पे हम जैसे कि अगर कोई बैंक के पास टाटा ग्रुप की कोई कंपनी आती है, टीसीएस कीजिए, या कोई टाटा सन्स, या कोई रिलायंस, ऐसे
0: जी
1: बड़े ग्रुप की, महिंद्रा महिंद्रा, कोई लोन्स, यूजुअली बैंक्स उनके पीछे भागते हैं लोन्स लेने
0: हाँ,
1: के लिए, राइट? कि
0: अच्छा
1: सर हमसे लोन ले लीजिए,
0: जी जी
1: आपके कंपनी या का जो कोई एक्सपांशन चल रहा है, तो बैंक्स यूजुअली रेडी रहते हैं लोन्स देने में, राइट? बट व्हाट अबाउट स्मॉल स्केल, जो अभी जैसे कि एक छोटा सा अगर कोई गृहिणी
0: स्टार्टअप करना
1: अपना
0: चाहती
1: स्टार्टअप
0: है।
1: करती है,
0: हाँ
1: छोटा सा बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक
0: जी
1: है, अगर उनको सपोर्ट करने के लिए कौन है? तो यूजुअली हम ये देखते आए हुए हैं कि इंडिया में कि
0: जी
1: यूजुअली फैमिली बिकम्स द बैंक फॉर दो स्मॉल
0: हाँ
1: स्टार्टअप्स।
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: पहला जो सीड पैसा आता है, सीड फंड आता है, जो हम सीड फंड बोलते हैं कि जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, वो या फिर खुद के पर्सनल सेविंग से स्टार्ट होता है, या फिर
0: जी
1: फैमिली ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया रहता है।
0: हाँ
1: तो क्रेडिट ब्यूरो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है पूरा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को, बाय इंश्योरिंग के अगर आपका स्कोर
0: जी
1: जनरेट हो, तो उससे बैंक को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भले आप स्टार्टअप कर रहे हो, बट आपको लोन दिया जा सकता है, ठीक है?
0: जी
1: तो जो खुद की कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, शायद से उतनी रिक्वायरमेंट आप बचा सकते हो किसी
0: जी
1: और इमरजेंसी फंड के लिए, और आप बैंक से लोन लेके आप अपना कार्य शुरू कर सकते हो।
0: जी
1: तो क्रेडिट ब्यूरो सिंस ये स्कोर जनरेट करते हैं बाय
0: जी
1: कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द बैंक्स, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
0: अच्छा
1: ने अपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और सर्कुलर्स में भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में बात की है कि
0: जी
1: क्यों, क्योंकि अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है
0: जी
1: तो डिजर्विंग फंड्स टू डिजर्विंग बोरोवर्स इज एसेंशियल, इट्स अ
0: अच्छा
1: वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, डिजर्विंग होना फर्स्ट ऑफ ऑल
0: जी
1: जरूरी है कि यस, अगर मैं जेन्यूनली एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ और जेन्यूनली
0: जी
1: मेरे पास फिलहाल कोई कोलैटरल नहीं है,
0: जी
1: पर मुझे लोन चाहिए, क्योंकि लोन के बिना शायद से मैं
0: ना कर
1: आगे
0: पाऊँ।
1: इन्वेस्टमेंट
0: हाँ
1: ना कर पाऊँ
0: ना
1: जो
0: कर
1: मुझे
0: पाऊँ।
1: ज़रूरत है।
0: हाँ
1: बट डेफिनेटली मेरा इंटेंट सही है और
0: जी
1: मेरी मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो अगर मुझे थोड़ा सा अगर इनिशियली पुश मिले, तो
0: हाँ हाँ
1: डोंट यू थिंक हम एक अच्छे इंडिया की शुरुआत कर सकते
0: कर
1: हैं?
0: सकते जी
1: क्योंकि
0: जी
1: फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन टू टाटाज एंड महिंद्राज एंड रिलायंस,
0: या
1: फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज इंडिया इन टू ग्रास रूट्स
0: या
1: ऑफ दो स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स
0: हाँ
1: बाई ऑल वुमेन, सेल्फ हेल्प वुमेन्स, एंड सो इसके लिए क्रेडिट ब्यूरो काफी एक्सेस फंड्स को एक्सेस करवाते हैं
0: जी जी
1: थ्रू देयर स्कोर, क्रेडिट स्कोर मॉडल्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
0: जी
1: इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आरबीआई भी ये समझते हैं, एंड हर साल कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में वो चेंज करते हैं
0: जी
1: जिससे क्रेडिट ब्यूरो भी स्ट्रांग हो और इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट
0: जी
1: करते हैं वो इजीली अवेलेबल हो
0: जी
1: टू बैंक्स एंड टू बोरोवर्स,
0: जी
1: सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और डिजर्विंग फंड्स विल बी
0: अच्छा
1: अवेलेबल टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ये है उनका मोटो।
0: अच्छा
1: सो दैट्स इट आई गेस।
0: बहुत अच्छी बात है देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए ये समय निकाला और हमें जागरूक किया, हमारे लिसनर्स को भी जागरूक किया और हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और हमें फाइनेंशियल बाबतों से बहुत अवगत कराया। तो जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
1: ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो जयपुर का, एंड डेफिनेटली आज सोनल जी का, कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके उनका एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम अपनी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, जो आजकल काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आज सोनल जी कॉन्ग्रेचुलेशन, जयपुर रेडियो heartily congratulations
0: Shukriya.
1: To both of you to create such a good platform. Okay.
0: Shukriya.
1: And making sure ke critical information सब लोगों को पहुंचे यू नो और उससे वो जागरूक है तो जागरूक बोलते हैं जागरूक ग्राहक ही यू नो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं राइट तो आई होप योर ऑडियंस विल बी वेरी एनलाइटेंड ठीक है विद दिस सेशन मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए आज मैं काफी लोगों से बात करता हूँ तो मुझे खुशी है कि लोगों को स्कोर के बारे में जानकारी मिलने लगी है और
0: हाँ।
1: उनको पता चलने लगा है कि स्कोर कितना जरूरी है क्रेडिट स्कोर ओके और वो स्कोर कैसे दिखता है मतलब 300 टू 900 हम बोलते रहते बट आजकल सब लोग कहते हैं कि सर हमारा स्कोर 700 है मेरा स्कोर 750 है तो मुझे खुशी होती है कि आजकल के नॉट ओनली यूथ बट इवन द जनरेशन प्रायर टू द जेन जी ओके वो सारी जनरेशन भी अवेयर है स्कोर मेंटेन करना कितना जरूरी है
0: जी
1: स्कोर किस वजह से इफेक्ट हो सकता है इम्पैक्ट हो सकता है ठीक है एंड डिस्प्यूट्स भी रेज होते हैं ब्यूरोस के या बैंक से कि हमारी इंफॉर्मेशन गलत क्यों यू नो आप शेयर कर रहे हो ठीक है तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अवेयरनेस हो तो आप सही डायरेक्शन में सही रास्ते में स्टेप्स ले सकते हो एंड लास्ट मैसेज ये रहेगा अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस एक बार अवेयरनेस आ गई तो फिर डिसिप्लिन कल्टीवेट कीजिए एंड एंश्योर कीजिए कि आप फाइनेंशियली हमेशा डिसिप्लिन रहे सो दैट आप अपने लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें बिकॉज फाइनली अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप कभी अपने चॉइसेस खुद कर सकते हो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन और आप इंडिपेंडेंट रहोगे खुश रहोगे ठीक है और खुद के चॉइसेस खुद बना सकते हो सो आई विश ऑल योर ऑडियंसेस ओके अ वेरी हैप्पी डिसिप्लिन्ड क्रेडिट लाइफ एंड आई होप सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर कहिए ठीक है वो एक माध्यम बने टू मेक श्योर कि आपकी लाइफ और बेहतर बने
0: नहीं नहीं देवल जी आज आपने जिस प्रकार से हमें सबको समझाया है हमें जानकारी दी है मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लिसनर्स को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्रेडिट स्कोर के बारे में बहुत सारी और लोन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है तो हम तो आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है तो देवल जी बहुत सरल तरीके से आपने हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी दी तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि बस हमारे सब लिसनर्स सतर्क रहे
2: हाँ तो देवल जी आपकी सारी ये बातें हम जरूर याद रखेंगे आप सभी लिसनर्स ये कह सकते हैं कि चलते चलते मेरी ये बातें याद रखना तो एक मधुर सा नगमा चलते चलते सबको सुना देती हूँ

0: दोस्तों, जूनागढ़ से मैं आरजे सोनल पारेख जयपुर रेडियो के लिए एक खास प्रोग्राम लेके आई हूँ। ये बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण विषय पर है और ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत पास है और खास भी है मेरे लिए। कुछ दिनों पहले ही मैं बैंक में गई थी तो मुझसे पूछा गया आपका सिबिल स्कोर क्या है, तो मैं एकदम हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि फाइनेंस के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ जब मैं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए ट्रांस यूनियन सिविल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देवल गांधी से मिली, तो उन्होंने बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे समझाया कि सिबिल स्कोर क्या होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना यह सब जानकारी मैं जयपुर रेडियो के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। तो देवल जी, हृदय तल से आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर रेडियो के इस कार्यक्रम में। तो देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस मुलाकात के लिए प्रोत्साहित किया, और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी दी है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सोनल जी, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए, एंड आप ये इतनी अच्छे कार्य के लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि श्रोताओं के लिए सोचना कि उनके लिए क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी और उनके लिए प्लानिंग करना, ये एक बहुत मेहनत का काम है। एंड मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रेडिट स्कोर या फिर हम उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर, ओके, वो उसके बारे में जानकारी समझना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या उसके फायदे हैं, उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाना। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर ऑडियंस फॉर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल शो। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माय स्टडीज मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आई जॉइंड एन आईटी कंपनी में मैंने एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद मैंने एमबीए किया फाइनेंस में, एंड मैं आई थिंक लास्ट 15 इयर्स से बैंकिंग फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन वेरियस लोन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमने लार्ज कॉर्पोरेट्स, छोटे कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, SMEs को सबको हमने लोन्स दी है, तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कैसे लोन्स दी जाती है, कैसे बोरोअर की क्षमता को हम परखते हैं कि कौन हमें पैसे दे पाएंगे वापस, रीपेमेंट उनकी कैसे रहेगी, कौन डिफॉल्ट करेगा, तो ये सब चीज़ों से जब मैं अपने एक्सपीरियंस जब हो रहा था, वर्क एक्सपीरियंस हम गैदर कर रहे थे, तभी मैंने एक देखा कि सिबिल स्कोर बहुत ही महत्व का था जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते थे फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव कि इनको लोन देना चाहिए कोई स्पेसिफिक कंपनी को या इंडिविजुअल बोरोवर को या नहीं देना चाहिए। तो उससे मुझे बहुत उत्सुकता बढ़ी कि कैसे ये सिबिल स्कोर बनता है, कैसे डेटा के बेसिस पे ये स्कोर आता है जिसके बेसिस पे हम सारी बैंक्स, इंडिया की सारी बैंक्स, ना कि इंडिया की बैंक्स, ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर तो सारे इंटरनेशनली भी काफ़ी बैंक्स यूज करते हैं और उसके बेसिस पे बोरोवर को क्रेडिट कार्ड, लोन्स वैसे सारे सुविधा देते हैं। तो वही क्यूरियोसिटी मेरी 2023 में मेरी हुई 22-23 में, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रांसपेरेंट सिविल में एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन होने में, एंड वो काफ़ी मेरे लिए एक एनलाइटिंग फेज रहा बिकॉज जो चीज हम सारे बैंकर्स यूज करते थे डे इन डे आउट, उस वो कैसे बनता है उसको मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, सीखने मिला जब मैंने सिबिल ज्वाइन किया।
0: हाँ, तो देवल जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग करके आप फाइनेंस की ओर कैसे आगे बढ़े?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक ये जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे वो थ्री इडियट्स की लाइन आती है, जब ये आमिर खान बोलते हैं कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ सीट, जब भी वो एक डायलॉग बोलते हैं कि इंजीनियर करके फिर आप एमबीए फाइनेंस करते हो, बट आई थिंक फाइनेंस तो बीइंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड माय फादर बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई थिंक फाइनेंस

0: उसी उत्सुकता से और मुझे सपोर्ट भी मिला फैमिली से कि मैंने फिर MBA फाइनेंस किया एंड MBA फाइनेंस के बाद बैंकिंग की जर्नी मेरी शुरुआत।
1: आपका ये इंट्रोडक्शन सुन के तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके दिल को तभी चैन आता है जब अपने गोल या अपने मोटिव को आप प्राप्त कर लेते हैं, तो क्यों ना एक प्यारा सा नगमा हमारे लिसनर्स को सुना दे।
0: श्योर, व्हाई नॉट।

0: हाँ तो देवल जी, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सिविल स्कोर होता क्या है और कैसे जनरेट होता है और उसकी गिनती किस आधार पे की जाती है।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सिविल स्कोर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। ओके, तो आई थिंक मैं ना जब भी मुझे ये क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक स्कूल में जब भी थे तो एक मार्कशीट हमें मिलती थी, राइट, कि ये पूरा साल में हमने कैसे परफॉर्म किया। तो किसी को ए ग्रेड मिलता था, किसी को बी ग्रेड मिलता था, सी ग्रेड, डिपेंडिंग ऑन उनके परफॉर्मेंस पे, राइट। और ये परफॉर्मेंस कैसे होता था, आपके हार्ड वर्क के बेसिस पे मेजर होता था, राइट, आपके हार्ड वर्क और आपने जिस तरह से एग्जाम्स को दी है। वैसे ही इन रियल लाइफ सिनारियो आपको एक अगर कोई स्कोर करे कि लेट्स से आपको 300 to 900 के बीच में एक स्कोर मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिबिल स्कोर रेंज। तो सिबिल स्कोर का रेंज है 300 to 900, उसके बीच में हम सारे इंडिविजुअल्स को जो भी लोन लेना चाहते हैं या जो भी जिन्होंने लोन लिया है पहले, ठीक है, उनको हम रेट करते हैं, एक रैंक देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी को 850 का रैंक दूँ, स्कोर दूँ, तो उसका मतलब ये है कि उनकी क्षमता बहुत बढ़िया है, जो भी वो लोन्स लेते हैं या लिया है

0: सही टाइम पे चुकाते हैं और काफी डिसिप्लिन्ड है। अगर किसी का भी स्कोर लेट्स से 600 या 500 के आसपास हो तो हम उसको रिस्की बोलते हैं कि इनमें रिस्क ज्यादा है। ओके, क्यों रिस्क ज्यादा है? क्योंकि इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जिन्होंने उनमें लोन ली थी या क्रेडिट कार्ड्स लिए थे, तो वो उन्होंने सही टाइम पे नहीं भरे थे, और सही टाइम पे नहीं भरने के कारण हमारा जो मानना है कि ये लोन अगर लेंगे फ्यूचर में तो वो डेफिनेटली डिफॉल्ट करने के चांसेस हाई है, तो हम उनको बोलते हैं रिस्की बोरोवर। तो 300 मतलब हाई रिस्क, और जैसे आप 300 के से लेके 900 तक जाएंगे तो एनी स्कोर विच इज नियर टू 900 इज अ लो रिस्क स्कोर। तो सिविल स्कोर इज जस्ट हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई कि कौन अच्छा बोरोवर है और कौन रिस्की बोरोवर है। ओके, इससे बैंकों को ये पता चलता है कि अगर उनके पास लोन एप्लीकेशन आती है या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आती है, पर्सनल लोन की एप्लीकेशन आती है, होम लोन की एप्लीकेशन आती है, वो पहले जाके सिबिल स्कोर चेक करता है, और सिबिल स्कोर देखने के बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि उनको लोन देना चाहिए। अगर हाँ देना चाहिए तो किस ब्याज दर पे देना चाहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर के बेसिस पे भी आजकल ब्याज दर डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने होम लोन लिया था
1: जी,
0: एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक से, काफी फेमस प्राइवेट बैंक है। मैं तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि उनका स्कोर 750 के आसपास था, तो उनको एक अच्छे बोरोवर जिसका स्कोर शायद से 790-800 अगर हो, उनसे उनको 5 पैसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, मतलब कि 7.5 अगर होम लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको 7.55 भरना पड़ा, बिकॉज उनका सिविल स्कोर थोड़ा सा
1: लो था,
0: ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक्स एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट अभी बात हो चुकी है कि क्रेडिट स्कोर, जो हम उसको अभी हमारे कॉमन लैंग्वेज में सिविल स्कोर भी बोलते हैं, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है और उसको मेंटेन करना कितनी बड़ी बात अभी हो गई है। तो अभी आई थिंक मोटा मोटी मैंने आपको जो कहा कि क्रेडिट स्कोर ये आपका दर्शाता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है और आपने पास्ट में जो भी लोन्स लिए हैं वो आपने किस तरह से चुकाए हैं। अगर आप रेगुलर हो तो आई थिंक आपका स्कोर हाई होना चाहिए। अगर आप इरेगुलर रहे हो, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया या आपने कोई डिफॉल्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर कम हो जाएगा और उससे आपको फ्यूचर में लोन लेने की दिक्कतें बढ़ सकती है।
1: जी जी हाँ, जब लोन की बात चली है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई भी इंसान कौन कौन सी चीजों पर लोन ले सकता है।
0: हाँ अच्छा, तो इंसानों की अगर हम देखिए तो जरूरतें क्या होती है लोन्स लेने के लिए। अगर हम डेफिनेटली हम लोन का मतलब ही क्या कि आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है पर मुझे कुछ चीज खरीदनी है या मुझे कुछ चीज परचेस करनी है, तो डेफिनेटली मुझे बैंक की सहायता से मैं वो चीज को किस्तों में भर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आई थिंक बहुत ही ये सेफ प्रैक्टिस है कि डेफिनेटली किस्तों में भर के आप अपनी चीजों को, जो भी आपकी यूजफुल चीजें हैं उसको आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, राइट, और आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे से सुधार सकते हो। तो एक तो होती है आपकी लाइफस्टाइल लोन्स, जैसे कि कंज्यूमर लोन, अगर आपने कोई क्रोमा के शोरूम में गए या कोई डिजिटल शोरूम में गए, आपको टीवी पसंद आ गया, तो डेफिनेटली वहां पे आप कंज्यूमर लोन्स मिलते हैं जहाँ पे आप टीवी को किस्तों में परचेस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर लोन्स। फिर होते हैं कोई पर्सनल लोन, जैसे कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई या कोई एजुकेशन कोर्स का मुझे फी भरना पड़ा,
1: एजुकेशन लोन भी होगी,
0: एजुकेशन लोन भी हो जाती है, और पर्सनल मेरे कुछ अगर शादी ब्याह का खर्चा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इमरजेंसी कोई लोन अगर चाहिए, ठीक है, तो हम पर्सनल लोन लेते हैं जो 3 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक बैंक आपको देते हैं, ठीक है, और उसकी जो टेन्योर होती है लोन्स की वो 1 साल की भी होती है, 2 साल, 3 साल तक होती है। तो ये हो गए पर्सनल लोन जो पर्सनल कैपेसिटी पे ली जाती है। फिर आपने बोला एजुकेशन लोन, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स लेते हैं यूजुअली, वो भी एक लोन है। फिर सबसे बड़ी लोन है जो होम लोन, घर सबका सपना है और घर होना एक सबसे बड़ी बात होती है अपने इंडियन वैल्यू सिस्टम में, तो होम लोन सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और ज्यादातर लोग होम लोन ज्यादा लेते हैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन। फिर उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी लोन ले सकता हूँ। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोन्स, और लास्ट में होता है बिजनेस लोन्स, जो यूजुअली फर्म्स मतलब कंपनीज लोन्स लेते हैं उनके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे लोन्स होते हैं और ये सारे लोन्स का असेसमेंट कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर के द्वारा स्टार्ट होता है।
1: जी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है और थोड़ा बहुत हम ये लोन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्यारा सा गीत हो जाए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।
0: क्या बात है, बढ़िया बढ़िया
1: बढ़िया बात है ना। हाँ।

0: हाँ तो देवल जी, हमारे लिसनर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये सिबिल एक्चुअली क्या क्या है और सिबिल जैसी कितनी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और इसका क्या और कितना महत्व भी है, ये भी आप हमें बताइए।
1: तो सिबिल एक्चुअली स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल आज से 25 साल पहले इनकॉर्पोरेट की थी, ठीक है, जहाँ पे काफी जो वेटरन बैंकर्स हम कहते हैं, दीपक पारेख एंड बैंकर्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, सब ने एक डिसाइड किया कि जैसे कि इंटरनेशनली हर जगह ब्यूरोज होते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज, ये कंपनीज को हम बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरो, जो एक्चुअली इंडिविजुअल्स का डेटा स्टोर करते हैं। और क्या डेटा स्टोर करते हैं? उनके लोन के डिटेल स्टोर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे नाम हो गया, उनके आईडी, पैन आईडी है, वोटर आईडी है, आधार आईडी, वो सब स्टोर करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें वो स्टोर करते हैं। और उन्होंने कौन से जगह से क्या क्या लोन्स लिए और उनकी कैसे पेमेंट हिस्ट्री रही है, वो सारी वो बैंक से डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिट ब्यूरो में 4 क्रेडिट ब्यूरो है इंडिया में, उसमें से ट्रांस यूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो विच इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन। इसके लिए आज इंडिया में जब भी कोई क्रेडिट स्कोर बोलता है तो वो सिबिल स्कोर बोलता है,
0: अच्छा,
1: ओके, ना कि क्रेडिट स्कोर।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: तो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत हमारे घर पे भी एक है कि भाई बिस्किट्स नहीं बोलते हम, पार्ले जी बोलते हैं,
0: राइट,
1: ठीक है, भले हम खाए गुड डे पर शायद से हम बोलेंगे अरे हम भैया पार्ले जी देना, ठीक है। वैसे ये एक यू नो क्रेडिट स्कोर का नाम अभी सिबिल स्कोर बन गया है। बट फॉर जानकारी, ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसयूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो, सेकेंड क्रेडिट ब्यूरो इज एक्सपीरियन, थर्ड क्रेडिट ब्यूरो इज इक्विफैक्स एंड द फोर्थ क्रेडिट ब्यूरो इज हाईमार्क क्रिफ। ये 4 कंपनीज हैं जो ऐसे स्कोर्स डेवलप करते हैं और बैंक्स वो स्कोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिबिल स्कोर का महत्व क्या है। तो मैंने जैसे अभी जस्ट आपके एक प्रश्न में कहा था और मेरे फ्रेंड का मैंने एग्जांपल दिया था कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर रादर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज वो आपके क्षमता को डिपिक्ट करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड हो, आपका पर्सनल लोन हो, आपका टर्म लोन हो, जो भी आप लोन्स लेते हो या क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट लेते हो कोई बैंक से, तो वो आपका कैसा व्यवहार रहा है वो बैंक से और वो कैसे पेमेंट्स हुई है, उसके बारे में सिबिल रिपोर्ट आपको दर्शाता है और वो डिसिप्लिन के हिसाब से आपको स्कोर करता है। अच्छा स्कोर तो बैंक आपको अच्छे से और लोन देगा, अगर स्कोर बुरा है या थोड़ा सा कम है तो बैंक शायद आपको ना भी देते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिबिल की जानकारी रखें। आपको सिबिल गवर्नमेंट द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा साल में एक सिबिल रिपोर्ट फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो सिबिल में कैप्चर हुई है वो देख सकते हैं एंड उसको आप जांच भी कर सकते हो कि सही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपकी गलत कैप्चर हुई है तो आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो, जो आपके सिबिल के साइट पे आप जाके कर सकते हो, बहुत ईजी है। और आप वहाँ पे रिजर्व बैंक ने सबको टाइमलाइंस भी दिया है कि अगर आप डिस्प्यूट आज रेज करते हो तो वो डिस्प्यूट 30 दिन के अंदर आपको रिजोल्व करना है, कंपनी को रिजोल्व करना है।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही सहूलियत अभी कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में फुल जानकारी रख सके और अगर कोई जानकारी में कोई गलतियां हो तो उसका डिस्प्यूट रेज करके, ठीक है, साइट पे वो रिजोल्व भी कर सकते हैं तुरंत।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो ये एक आरबीआई का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है कि पूरा क्रेडिट इकोसिस्टम, जो हम बोलते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक इंडिविजुअल फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली बनाना और इंश्योर करना कि जो भी जरूरतमंद है उनके तक हेल्प पहुंचे थ्रू क्रेडिट स्कोर। और हेल्प कैसे पहुंचेगी? अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा तो बैंक्स उनको पैसे देंगे और
0: देंगे,
1: वो देंगे, पैसे देंगे तो उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी जरूरतें पूरी होगी और वो अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, फैमिली को ग्रो कर सकते हैं।
0: हाँ, ये मैंने अभी आपने जब बात बताई उसका महत्व बताया तो हाल ही में मैंने पेपर में एक किस्सा पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कहीं किसी व्यक्ति की मंगनी टूट गई क्योंकि उसका सिबिल रिपोर्ट थोड़ा लो था। तो ये भी आजकल सब लोग, ये बिल्कुल सही बात है कि सिबिल का यानी रिपोर्ट का इतना महत्व हो गया, तो ये बात सही है क्या?
1: हाँ, ये बात सही है कि आजकल, और ये बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग भी है कि क्रेडिट स्कोर के अभी यूसेजेस कितने बढ़ने लगे हैं। खाली अभी बैंक्स नहीं, अभी तो आई गेस शादी ब्याह में भी पूछे जाते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बताइए, क्योंकि प्रश्न तो वही है, प्रश्न तो वही है कि क्या ये मेरी बेटी को संभाल पाएंगे, या क्या उनके पास सफिशिएंट इनकम है, क्या उनका व्यवहार, खाली फैमिली व्यवहार नहीं पर उनका बैंकों के साथ भी फाइनेंस व्यवहार भी अच्छा है कि नहीं। बिकॉज आज की लाइफ स्टाइल में, आज के जनरेशन में फाइनेंशियल व्यवहार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सतर्क हो, क्या आप डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि आप अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप डेफिनेटली अच्छे से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और स्टेबलाइज हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मैं भी ना चाहूँ कि मैं किसी के साथ आगे व्यवहार करूँ, क्योंकि रिस्क बना रहेगा। ठीक है, और रिस्क है तो फिर इश्क नहीं है शायद से। तो
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत सरलता से और बहुत सारी जानकारी दी है आपने देवल जी हमें। तो ये बताइए कि क्रेडिट स्कोर का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में किस तरह से मदद करता है?
1: अच्छा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की जनरेशन में हो चुका है। अभी आज जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद जब तक मुझे जॉब नहीं लगी थी तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स कि भाई मुझे पॉकेट मनी मिलेगी और मेरे खर्चे उनके पॉकेट मनी से चलेंगे। आज की जनरेशन बहुत अलग सोचती है, उनको डे वन से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब क्या? मतलब तो यही है ना कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। डेफिनेटली आपकी इनकम से आप अपने खर्चे उठा सकते हो और कभी कभी आपको खर्चे उठाने के लिए शायद आप छोटी सी लोन भी ले सकते हो। ये लोन लेने में जो सुविधा जो हेल्प करते हैं, पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर आपको फलाने बैंक से लोन लेनी है तो आपकी वहां पे पहचान होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए कि मैं ये मैनेजर को जानता हूँ, कि मैं उस मैनेजर को जानता हूँ, और उसके बेसिस पे, जान पहचान के बेसिस पे हमको लोन मिलती थी। तो हम बोलते थे उसको कि जान पहचान होनी चाहिए बैंकर्स के साथ तो आपको लोन मिल सकती है। करेक्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हम डिपेंडेंट थे। अगर हमें जान पहचान नहीं है तो फिर शायद से हमारे पास वो पहुंच नहीं है, तो फिर शायद से हमको लोन ना भी मिले, रिजेक्शन हो जाए। तो डोंट यू थिंक हम इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं थे? करेक्ट, हमें कहीं में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना था। ठीक है, आज की जो युवा है वो एकदम बेफिक्र इंडिपेंडेंट होके भी बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे फिनटेक्स आ गए हैं जो डिजिटल कंपनीज है, और एक क्लिक ऑफ द बटन में ठीक है वो लोन लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन तब हुआ जब ये ना के खाली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी बट ये क्रेडिट ब्यूरो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लास्ट 25 इयर्स में, कि जहाँ पे उन्होंने बैंक को पहचान वाले मॉडल से निकाल के ओके, ब्यूरो स्कोर के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट में डिस्प्ले करके, ठीक है, पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी आज मुझे अगर आपको आपके बारे में कुछ जानना हो तो शायद मैं आपके सिबिल रिपोर्ट को या ब्यूरो रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करूं और वहां से पता चल जाए कि आपका व्यवहार, पिछला व्यवहार बैंकों से कैसा रहा, और उससे मुझे कंफर्टेबल मैं रहूंगा कि मैं आपको लोन दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आज का जो युवा पीढ़ी भी है, या फिर मैं वो भी बोलूं कि जो गांव में रहते हो या टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में रहते हो, जहाँ पे वो बैंक में जाना पहले अनिवार्य भी नहीं था, एकदम पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी, आज उनको अपने ही स्कोर के द्वारा, अगर उनका स्कोर है तो उनको लोन मिल सकती है, लोन प्राप्त हो सकती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ इंडिपेंडेंट लिविंग एंड वेरी एसेंशियल, एंड इट इज क्रेडिट ब्यूरोस आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंश्योरिंग के हर व्यक्ति डिजर्विंग व्यक्ति को क्रेडिट प्राप्त हो, और इसमें ब्यूरो के थ्रू उनकी वो क्षमता पूरी हो सकती है।
0: जी जी,
1: तो यही है मेरा कहना कि यस, बहुत ही रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है।
0: या हाँ, तो देवल जी आपने सिबिल के बारे में जानकारी देकर हमारे श्रोताओं की बहुत सारी फिक्र धुएं में उड़ा दी है। तो एक प्यारा सा नगमा यहाँ पे हो जाए, तो आइए सुनते हैं।

0: अच्छा देवल जी, क्रेडिट स्कोर के बारे में तो आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर कम हो तो उसे सुधारने या उसको क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए उन यानी किसी व्यक्ति को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए और कौन कौन सी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप हमें बताइए कि वो कैसे मेंटेन कर सके अपना क्रेडिट स्कोर।
1: यस, का तो काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है ये, एंड ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। हमने ये तो जान लिया पहले क्वेश्चंस में जो आपने पूछे मुझे कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है, तो आई थिंक आपके ऑडियंस अभी सब अवेयर है कि सिबिल स्कोर बोलो या फिर क्रेडिट स्कोर बोलिए क्या होता है, वो सबको अवेयर है। 300 टू 900 के बीच में स्कोर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्कोर बनता कैसे है उससे जानते हैं, फिर उससे हम आगे समझ सकते हैं कि कैसे मेंटेन करें, ठीक है। स्कोर बनता है आपका जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या आता है, आपका नाम, एज, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस एंड एवरीथिंग, वो आपके ब्यूरो में प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट, ठीक है। कभी कभी उसमें गलतियां होती है, बैंक गलत इंफॉर्मेशन भी रिपोर्ट करते हैं, तो उसको हम रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी कुछ इनकम लेवल भी कैप्चर होती है कि आपकी इनकम क्या थी। जब भी आपने लोन लेते हैं तो बैंक आपसे इनकम पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। सेकेंड थिंग, आपके जो भी लोन्स आपने लिए, भले छोटी से छोटी 5,000 की लोन ली हो या फिर आपने 1 करोड़ की लोन ली हो, ठीक है, सारे की सारे लोन्स आपके सिबिल रिपोर्ट में या ब्यूरो रिपोर्ट में आ जाती है, ठीक है। अभी ब्यूरो रिपोर्ट क्या करता है, उसको चेक करता है कि जो भी लोन्स कही है आपने ली है, ठीक है, उसकी पेमेंट लास्ट 36 मंथ्स मतलब 3 साल, ये हम 3 साल का रिकॉर्ड हम के बेसिस पे हम स्कोर को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा। भले आपने 2012 में आपने लोन लिया हो, बट उसकी जो पेमेंट हिस्ट्री है ना, वो हम लास्ट 3 साल के, मतलब आज से लेके लास्ट 3 इयर्स तक, मैं उसको ज्यादा रेलिवेंट मानता हूँ, क्योंकि 2012 तो बहुत पुरानी बात होगी, 10 साल ऊपर बात होगी, बट आपकी लास्ट 3 साल में कैसी रही आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर,
0: अच्छा,
1: वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको स्कोर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अच्छा। अगर आपने लास्ट, मान लो कि लास्ट 3 साइकिल से या लास्ट 3 महीने से आपने ईएमआई मिस की, आप में डिले हुआ ईएमआई, भले वो डिले हुआ 2 दिन 3 दिन 5 दिन का, पर उससे एक ब्यूरो को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो में या कहीं कहीं आपकी क्षमता में कुछ ना कुछ तो इश्यू है,
0: डाउनफॉल
1: शायद से डाउनफॉल आ सकता है, तो तुरंत ही अगर आप देखोगे तो आपका थोड़ा सा स्कोर में इम्पैक्ट आ जाता है। और अगर डिले ज्यादा हो गया और ज्यादा कंटिन्यूस रहा तो डेफिनेटली ये स्कोर जो हम बोल रहे थे 800 750 से लेके नीचे 650 तक जा सकता है, बिकॉज आप कंटिन्यूसली डिफॉल्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक और चीज होती है कि आप कितने लोन्स लेते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी इनकम है 50,000, बट मेरी तो 50,000 के बेसिस पे हम बैंकर्स ये समझते हैं कि आप मिनिमम 70% ऑफ योर इनकम यू कैन पे एज अ ईएमआई। कोई बोलते 60%, कोई बोलते 70%। अगर हम 60% भी पकड़ लीजिए तो 60% ऑफ 50,000 मतलब कितना, 30,000 की ईएमआई में भर सकता हूँ कम्फर्टेबली, क्योंकि मुझे 20,000 तो मेरे खुद के खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए चाहिए, करेक्ट, सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर सोचिए मैंने 50,000 की सैलरी के सामने, महीने के 50,000 की सैलरी के सामने अगर मेरी ईएमआई 40,000 हो, तो डोंट यू थिंक मैं ओवर लेवरेज्ड हूँ। अभी इसका मतलब क्या, ओवर लेवरेज मतलब मेरे पे ज्यादा लोन की बर्डन है,
0: सही,
1: और ये अगर लोन की बर्डन ज्यादा हो गई तो डोंट यू थिंक आप हाई रिस्क बोरोवर हो गया, क्योंकि आप कभी भी गिर सकते हो,
0: डिफॉल्ट कर सकते हो,
1: गिरना मतलब डिफॉल्ट होना, ठीक है, क्योंकि चांसेस आपकी हाई है। समझिए आपके कुछ खर्चे आ गए और आप वो खर्चे 10,000 में नहीं पूरे कर पाओगे जो आपके बचते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप बैंक को डिले करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे है ना बिहेवियर्स, हमने एक मॉडल में जो हमारा डेटा साइंस मॉडल है उस पे हमने उनको प्लग इन किया है, और उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है और जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में कैसे बिहेव करोगे, वो आपका स्कोर डिटरमाइन करता है। तो अगर आपका स्कोर कम हुआ मतलब फ्यूचर में आप हम परेशान करोगे बैंक को,
0: बैंक को जी जी,
1: बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेज्ड, ओके, लोन ज्यादा लेना, जरूरत से ज्यादा लेना, आज की जनरेशन में बहुत थोड़ा सा ये ज्यादा हो रहा है,
0: लोन का बढ़ गया है, बिहेवियर
1: बहुत ज्यादा,
0: छोटी छोटी बातों में लोन ले लेते हैं,
1: इनकम अभी तक मेरी स्टार्ट भी नहीं हुई ज्यादा, और मैंने आईफोन ले लिया, मैंने कोई म्यूजिक सिस्टम ले लिया, क्योंकि गाड़ी ले ली, राइट, ठीक है, आज लेटेस्ट मॉडल ही सही चाहिए मुझे सबको, गए वो दिन शायद से जो हमारे पेरेंट्स के पास या हमारे ग्रैंडफादर्स के पास एक विंटेज कार हुआ करती थी, या यू नो रेडियो, वो जूना पुराना रेडियो चलाते थे, गए वो दिन। अभी आजकल कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया, कुछ भी नया मार्केट में लॉन्च होता है तुरंत ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें होता क्या है, वो एक लोन ट्रैप में चले जाते हैं। लोन ट्रैप का मतलब क्या, जो मैंने आपको समझाया कि मेरी आमदनी 50,000 और मेरी ईएमआई अगर 50,000 के ऑलमोस्ट करीब आ जाती है, तो डेफिनेटली मैं वो लोन ट्रैप में घुसता जाऊंगा। और वहां पे जब कोई भी पर्सन गिर जाता है या यू नो कॉम्प्लिकेट कर देता है मैटर को, तो फिर वो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये सारे चीजों से सिबिल स्कोर घट सकता है, कि ज्यादा लोन लेना, आपके ईएमआई में डिले करना, ठीक है, सेकेंड थिंग इनकम से ज्यादा जो ईएमआई भरना या उससे यू नो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो में ईएमआई भरना, तो वो भी सिबिल स्कोर कम कर देगा। सेकेंड थिंग इंक्वायरीज, इंक्वायरी का मतलब क्या, जैसे कि मेरे पास अभी क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे युवा आजकल है ना, आप उनके वॉलेट में देखिएगा 5 क्रेडिट कार्ड, 6 क्रेडिट कार्ड, यू नो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, और हर एक क्रेडिट कार्ड में 2-2 लाख की लिमिट होती है, 3-3 लाख की लिमिट होती है, ओके, आप जितने ऐसे इंक्वायरी करोगे तो सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी सेक्शन आती है, ओके, इंक्वायरी सेक्शन क्या बताती है कि आपने कौन सी बैंक में कौन सी लोन के लिए इंक्वायरी की और कितने अमाउंट के लिए इंक्वायरी की। अगर हम ये देखेंगे कि इंक्वायरी आप बहुत ज्यादा कर रहे हो लास्ट 6 महीनों में, ठीक है, तो स्कोर में उतना इम्पैक्ट गिरेगा। अगर मान लीजिए एक अभी कई एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे फ्रेंड का, ठीक है, कि उनको पर्सनल लोन चाहिए था और पर्सनल लोन उन्होंने काफी सारी ले ली बिकॉज उनके कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, तो 2-3 बैंक के बाद उनके पर्सनल लोन में उन्होंने और भी 2-3 बैंकों के साथ अप्लाई किया, पहले 2-3 बैंक से ले लिया पर उनको और जरूरत थी तो और वो लोग बैंक के पास अप्रोच किए। ये देखने से जो मॉडल है क्रेडिट स्कोर मॉडल, उनको उनका स्कोर कम होने लगा, ओके, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे थे। सेकंड थिंग, बैंक भी उनके लोन्स को रिजेक्ट कर रही थी, इंक्वायरीज, तो उनकी इंक्वायरी बढ़ रही थी, जैसे वो फलाना एक बैंक में गए, नहीं वो रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरे बैंक में गए तो रिजेक्ट हो गया, वैसे उनकी इंक्वायरी होते गई पर लोन मिली नहीं, तो इंक्वायरी बढ़ने लगी, तो मॉडल जो हमारा है वो ये बोलेगा, अच्छा आपको कोई लोन देने को रेडी नहीं है, आप इंक्वायरी पे इंक्वायरी किए जा रहे हो पर कोई लोन आपको दे नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उससे भी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी सी खस्ता है, ठीक है, इसके लिए आप हाई रिस्क बोरोअर माने जाते हो। तो मैं समराइज ये करना चाहता हूँ कि सिबिल स्कोर आपके क्रेडिट बिहेवियर पे डिपेंडेंट है, जो आपने लोन्स कौन से प्रकार के लोन्स लिए हैं, सिक्योर्ड लोन्स लिए, मतलब सिक्योर्ड मतलब होम लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, आपका घर एक सिक्योरिटी बनता है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब पर्सनल लोन्स जिसकी कोई कोलैटरल
0: नहीं है, खर्च ना करे,
1: जैसे गोल्ड लोन भी एक सिक्योर्ड लोन है, इंडिया में सबसे फ्रीक्वेंट गोल्ड लोन लिया जाता है क्योंकि सबके पास गोल्ड तो होता ही है और उनको गिरवी रख के लोन्स लिए जाते हैं। तो गोल्ड कौन से प्रकार के आप लोन्स लेते हो, कौन से सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, कितने फ्रीक्वेंटली लोन्स ले रहे हो, कितनी ईएमआई भर रहे हो और ईएमआई कैसे भर रहे हो,
0: जी जी,
1: और इंक्वायरीज कितनी कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, अगर ये सारी चीजों को पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक सिबिल स्कोर आपका बनता है,
0: जी जी।
1: तो अगर किसी को अपना सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन करना हो तो प्लीज लोन्स आप लिमिटेड लीजिए, इनकम के हिसाब से लीजिए,
0: बिल्कुल सही,
1: ओके, ओवर लेवरेज मत कीजिए, डेट ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है, सेकेंड, हाँ सेकेंड थिंग, जो भी आपने लोन लिए अगर आप उसको टाइम से चुकाइए, ओके, जो भी ईएमआई अगर 5 तारीख की ईएमआई तो 5 तारीख को ही प्लीज पे कीजिए,
0: ओके,
1: डिले मत कीजिए, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के फुल ड्यूज पे कीजिए, आजकल तो बहुत लोग क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके उसके ऊपर एक ईएमआई चढ़ा देते हैं, तो वो तो बहुत ही यू नो हानिकारक बन जाता है अगर फ्रीक्वेंटली करते हो तो,
0: ठीक है।
1: तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और कम से कम इंक्वायरी हो, बिकॉज ज्यादा इंक्वायरी का मतलब है कि बैंक आपको ज्यादा रिजेक्ट
0: करेगी,
1: तो फिर आपका स्कोर अच्छा बना रहेगा। और अगर गलती से आपका क्योंकि ड्यू टू सम पास्ट इश्यूज आपका स्कोर घट गया है, ठीक है, तो जो भी आपकी अभी फिलहाल लोन चल रही है उसको आप अच्छे से मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे हिस्ट्री जैसे डेवलप होती जाएगी वैसे से आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होते
0: जाएगा। जाएगा
1: और जो आपने डिफॉल्ट किया है अगर हो सके तो उसको बैंक के साथ एक समझौता करके उसको फुल पेमेंट्स कर दीजिए। अगर वो फुल पेमेंट आप कर दो, भले आपने डिले हो गए थे कोई वांधा नहीं, पर फुल पेमेंट कर दो तो उसके वजह से आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है। तो आई गेस ये डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और लाइफ में ही ओवरऑल डिसिप्लिन होना जरूरी
0: है।
1: तो सिमिलरली क्रेडिट में भी डिसिप्लिन की एक कीमत है, वैल्यू है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपकी वैल्यू ज्यादा है।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने देवल जी, और आपने ये जो सारी बातें बताई उससे मुझे गुजराती की कहावत याद आ गई कि पछेड़ी हो एटली सोड तणाई, बराबर, एग्जैक्टली राइट
1: राइट।
0: और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, बहुत जानने को मिला हमें। बहुत सही फरमाया आपने देवल जी, सिबिल स्कोर को मेंटेन करने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। वैसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर ये दोनों में हम डिसिप्लिन नहीं रखते हैं तो कोई हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आता है और सब हमसे नज़र फेर लेते हैं। तो इस पे मुझे एक प्यारा सा नगमा याद आ गया है, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी।

0: हाँ तो देवल जी, अब आप ये बताएं कि देश की अर्थव्यवस्था में क्रेडिट ब्यूरो की का क्या योगदान है?
1: हाँ ओके। देश की अर्थव्यवस्था के लिए जैसे कि एसएमईज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, ये सारे है ना, हमेशा हम हाई रिस्क सेक्टर्स माना जाते थे। मतलब यहाँ पे हम जैसे कि अगर कोई बैंक के पास टाटा ग्रुप की कोई कंपनी आती है, TCS कीजिए या कोई टाटा सन्स या कोई रिलायंस, ऐसे
0: जी
1: बड़े ग्रुप की, महिंद्रा महिंद्रा, कोई कोई लोन्स, यूजुअली बैंक्स उनके पीछे भागते हैं लोन्स
0: हाँ,
1: देने के लिए, राइट? कि
0: अच्छा
1: सर हमसे लोन ले लीजिए,
0: जी जी
1: आपके कंपनी या का जो कोई एक्सपांशन चल रहा है, तो बैंक्स यूजुअली रेडी रहते हैं लोन्स देने में, राइट? बट व्हाट अबाउट स्मॉल स्केल, जो अभी जैसे कि एक छोटा सा अगर कोई गृहिणी
0: स्टार्टअप करना
1: अपना स्टार्टअप
0: चाहती
1: करती
0: है।
1: है,
0: हाँ
1: छोटा सा बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक
0: जी
1: है, अगर उनको सपोर्ट करने के लिए कौन है? तो यूजुअली हम ये देखते आए हुए हैं कि इंडिया में कि
0: जी
1: यूजुअली फैमिली बिकम्स द बैंक फॉर दो स्मॉल
0: हाँ हाँ
1: स्टार्टअप्स,
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: पहला जो सीड पैसा आता है, सीड फंड आता है, जो हम सीड फंड बोलते हैं कि जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है, वो या फिर खुद के पर्सनल सेविंग से स्टार्ट होता है या फिर
0: जी
1: फैमिली ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया रहता है।
0: हाँ
1: तो क्रेडिट ब्यूरो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है पूरा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को, बाय इंश्योरिंग के अगर आपका स्कोर
0: जी
1: जनरेट हो तो उससे बैंक को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भले आप स्टार्टअप कर रहे हो बट आपको लोन दिया जा सकता है, ठीक है?
0: जी
1: तो जो खुद की कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, शायद से उतनी रिक्वायरमेंट आप बचा सकते हो किसी
0: जी
1: और इमरजेंसी फंड के लिए, और आप बैंक से लोन लेके आप अपना कार्य शुरू कर सकते हो।
0: जी
1: तो क्रेडिट ब्यूरो सिंस ये स्कोर जनरेट करते हैं बाय
0: जी
1: कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द बैंक्स, बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
0: अच्छा
1: ने अपने काफ़ी सारे आर्टिकल्स और सर्कुलर्स में भी स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में बात की है कि
0: जी
1: क्यों, क्योंकि अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है
0: जी
1: तो डिजर्विंग फंड्स टू डिजर्विंग बोरोवर्स इज
0: अच्छा
1: एसेंशियल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
0: हाँ
1: देखो, डिजर्विंग होना फर्स्ट ऑफ ऑल
0: जी
1: जरूरी है कि यस, अगर मैं जेन्यूनली एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ और जेन्यूनली
0: जी
1: मेरे पास फिलहाल कोई कोलैटरल नहीं है
0: जी
1: और मुझे लोन चाहिए, क्योंकि लोन के बिना शायद से मैं
0: ना
1: आगे
0: कर पाऊँ।
1: इन्वेस्टमेंट
0: हाँ
1: ना कर पाऊँ
0: ना
1: जो
0: कर
1: मुझे
0: पाऊँ।
1: ज़रूरत
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: बट डेफिनेटली मेरा इंटेंट सही है और
0: जी
1: मेरी मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो अगर मुझे थोड़ा सा अगर इनिशियली पुश मिले तो
0: हाँ हाँ
1: डोंट यू थिंक हम एक अच्छे इंडिया की शुरुआत कर सकते
0: कर
1: हैं?
0: सकते जी
1: क्योंकि
0: जी
1: फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन टू टाटाज एंड महिंद्राज एंड रिलायंस,
0: या
1: फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज इंडिया इन टू ग्रास रूट्स
0: या
1: ऑफ दो स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स
0: हाँ
1: बाई ऑल वुमेन, सेल्फ हेल्प वुमेन्स, एंड सो इसके लिए क्रेडिट ब्यूरो काफ़ी एक्सेस फंड्स को एक्सेस करवाते हैं
0: जी जी
1: थ्रू देयर स्कोर, क्रेडिट स्कोर मॉडल्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
0: जी
1: इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और RBI भी ये समझते हैं, एंड हर साल कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में वो चेंज करते हैं
0: जी
1: जिससे क्रेडिट ब्यूरो भी स्ट्रांग हो और इन्फॉर्मेशन जो वो कलेक्ट
0: जी
1: करते हैं वो इजीली अवेलेबल हो
0: जी
1: टू बैंक्स एंड टू बोरोवर्स,
0: जी
1: सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और डिजर्विंग फंड्स विल बी
0: अच्छा
1: अवेलेबल टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ये है उनका मोटो।
0: अच्छा
1: सो दैट्स इट आई गेस।
0: बहुत अच्छी बात है देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए ये समय निकाला और हमें जागरूक किया, हमारे लिसनर्स को भी जागरूक किया और हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और हमें फाइनेंशियल बाबतों से बहुत अवगत कराया। तो जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
1: ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो जयपुर का एंड डेफिनेटली आज सोनल जी का कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके उनका एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हम अपनी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, जो आजकल काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आज सोनल जी कॉन्ग्रेचुलेशन, जयपुर रेडियो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस
0: शुक्रिया
1: टू बोथ ऑफ यू टू क्रिएट सच अ गुड प्लेटफॉर्म ओके एंड मेकिंग श्योर के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सब लोगों को पहुंचे यू नो और उससे वो जागरूक है तो जागरूक बोलते हैं जागरूक ग्राहक ही यू नो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं राइट तो आई होप योर ऑडियंस विल बी वेरी एनलाइटेंड ठीक है विद दिस सेशन मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि डेफिनेटली अवेयरनेस होनी चाहिए
0: जी जी
1: आज मैं काफी लोगों से बात करता हूं तो मुझे खुशी है कि लोगों को स्कोर के बारे में जानकारी मिलने लगी है और उनको पता चलने लगा है कि स्कोर कितना जरूरी है क्रेडिट स्कोर ओके और वो स्कोर कैसे दिखता है मतलब 300 टू 900 हम बोलते रहते बट आजकल सब लोग कहते हैं कि सर हमारा स्कोर 700 है मेरा स्कोर 750 है तो मुझे खुशी होती है कि आजकल के नॉट ओनली यूथ बट इवन द जनरेशन प्रायर टू द जेंजी ओके वो सारी जनरेशन भी अवेयर है स्कोर मेंटेन करना कितना जरूरी है स्कोर किस वजह से इफेक्ट हो सकता है इम्पैक्ट हो सकता है ठीक है एंड डिस्प्यूट्स भी रेस होते हैं ब्यूरोस के या बैंक से कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत क्यों यू नो आप शेयर कर रहे हो ठीक है तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अवेयरनेस हो तो आप सही डायरेक्शन में सही रास्ते में स्टेप्स ले सकते हो एंड लास्ट मैसेज ये रहेगा अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस एक बार अवेयरनेस आ गई तो फिर डिसिप्लिन कल्टिवेट कीजिए एंड एंश्योर कीजिए कि आप फाइनेंशियली हमेशा डिसिप्लिन रहे सो दैट आप अपने लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें बिकॉज फाइनली अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप कभी अपने चॉइसेस खुद कर सकते हो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समवन और आप इंडिपेंडेंट रहोगे खुश रहोगे ठीक है और खुद के चॉइसेस खुद बना सकते हो सो आई विश ऑल योर ऑडियंसेस ओके अ वेरी हैप्पी डिसिप्लिन्ड क्रेडिट लाइफ एंड आई होप ये सिबिल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर कहिए ठीक है वो एक माध्यम बने टू मेक श्योर कि आपकी लाइफ और बेहतर बने
0: नहीं नहीं देवल जी आज आपने जिस प्रकार से हमें सबको समझाया है हमें जानकारी दी है मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लिसनर्स को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्रेडिट स्कोर के बारे में बहुत सारी और लोन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है तो हम तो आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है तो देवल जी बहुत सरल तरीके से आपने हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी दी तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि बस हमारे सब लिसनर्स सतर्क रहे करती हूँ
2: हाँ तो देवल जी आपकी सारी ये बातें हम जरूर याद रखेंगे आप सभी लिसनर्स ये कह सकते हैं कि चलते चलते मेरी ये बातें याद रखना तो एक मधुर सा नगमा चलते चलते सबको सुना देती हूँ

0: दोस्तों, जूनागढ़ से मैं आरजे सोनल पारेख जयपुर रेडियो के लिए एक खास प्रोग्राम लेके आई हूँ। ये बहुत ही यूजफुल और महत्वपूर्ण विषय पर है और ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत पास है और खास भी है मेरे लिए। कुछ दिनों पहले ही मैं बैंक में गई थी तो मुझसे पूछा गया आपका सिबिल स्कोर क्या है, तो मैं एकदम हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि फाइनेंस के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ जब मैं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए ट्रांस यूनियन सिविल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देवल गांधी से मिली, तो उन्होंने बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे समझाया कि सिबिल स्कोर क्या होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना यह सब जानकारी मैं जयपुर रेडियो के श्रोताओं के साथ भी शेयर करूं। तो देवल जी, हृदय तल से आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर रेडियो के इस कार्यक्रम में। तो देवल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस मुलाकात के लिए प्रोत्साहित किया, और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण और यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी दी है। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सोनल जी, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए, एंड आप ये इतनी अच्छे कार्य के लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि श्रोताओं के लिए सोचना कि उनके लिए क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी और उनके लिए प्लानिंग करना, ये एक बहुत मेहनत का काम है। एंड मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट स्कोर, या फिर हम उसको बोलते हैं सिबिल स्कोर, ओके, वो उसके बारे में जानकारी समझना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या उसके फायदे हैं, उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाना। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर ऑडियंस फॉर हैविंग सच अ ब्यूटिफुल शो। नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ के मैंने मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माई स्टडीज मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी मुंबई यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आई जॉइंड एन आईटी कंपनी में मैंने एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद मैंने MBA किया फाइनेंस में, एंड मैं आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स से बैंकिंग फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन वेरियस लोन डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमने लार्ज कॉर्पोरेट्स, छोटे कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, SMEs को सबको हमने लोन्स दी है, तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है कैसे लोन्स दी जाती है, कैसे बोरोअर की क्षमता को हम परखते हैं कि कौन हमें पैसे दे पाएंगे वापस, रीपेमेंट उनकी कैसे रहेगी, कौन डिफॉल्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों से जब भी मैं अपने एक्सपीरियंस जब भी हो रहा था, वर्क एक्सपीरियंस हम गैदर कर रहे थे, तभी मैंने एक देखा कि सिबिल स्कोर बहुत ही महत्व का था, जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते थे फ्रॉम बैंक्स पर्सपेक्टिव कि इनको लोन देना चाहिए कोई स्पेसिफिक कंपनी को या इंडिविजुअल बोरोवर को या नहीं देना चाहिए। तो उससे मुझे बहुत उत्सुकता बढ़ी कि कैसे ये सिबिल स्कोर बनता है, कैसे डेटा के बेसिस पे ये स्कोर आता है, जिसके बेसिस पे हम सारी बैंक्स, इंडिया की सारी बैंक्स, ना कि इंडिया की बैंक्स, ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर तो सारे इंटरनेशनली भी काफ़ी बैंक्स यूज करते हैं और उसके बेसिस पे बोरोवर को क्रेडिट कार्ड, लोन्स वैसे सारे सुविधा देते हैं। तो वही क्यूरियोसिटी मेरी 2023 में मेरी हुई 22-23 में, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रांसपेरेंसी सिविल में एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन होने में, एंड वो काफ़ी मेरे लिए एक एनलाइटिंग फेज रहा, बिकॉज जो चीज़ हम सारे बैंकर्स यूज करते थे डे इन डे आउट, उस वो कैसे बनता है उसको मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, सीखना ही मिला, तभी मैंने सिबिल ज्वाइन किया।
0: हाँ, तो देवल जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इंजीनियरिंग करके आप फाइनेंस की ओर कैसे आगे बढ़े?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक ये जब भी मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे वो 3 Idiots की लाइन आती है, जब आमिर खान बोलते हैं कि वॉट अ वेस्ट ऑफ सीट, जब भी वो एक डायलॉग बोलते हैं कि इंजीनियर करके फिर आप MBA फाइनेंस करते हो, बट आई थिंक फाइनेंस तो बीइंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड माय फादर बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, आई थिंक फाइनेंस तो कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ ही था, इट्स जस्ट दैट मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी क्षमता टेक्नोलॉजी में ज्यादा बेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ. बट जैसे मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया, आईटी कंपनी में काम किया, मुझे उनकी जो फाइनेंस रिलेटेड जो थे बेसिक्स और जो यू नो बिजनेस कैसे रन करता है, मुझे उस पर ज़्यादा उत्सुकता बनी कि कैसे हम बिजनेस को इवेल्यूएट करते हैं, कैसे उसके कैश फ्लोज को देखते हैं. तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रादर देन डूइंग कोडिंग. और उसी उत्सुकता से और मुझे सपोर्ट भी मिला फैमिली से कि मैंने फिर MBA फाइनेंस किया. एंड MBA फाइनेंस के बाद बैंकिंग की जर्नी मेरी शुरुआत.
0: आपका ये इंट्रोडक्शन सुन के तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके दिल को तभी चैन आता है जब अपने गोल या अपने मोटिव

0: हाँ तो देवल जी, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सिविल स्कोर होता क्या है और कैसे जनरेट होता है और उसकी गिनती किस आधार पे की जाती है।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सिविल स्कोर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है। ओके, तो आई थिंक मैं ना जब भी मुझे क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हम एक स्कूल में जब भी थे तो एक मार्कशीट हमें मिलती थी, राइट, कि ये पूरा साल में हमने कैसे परफॉर्म किया। तो किसी को ए ग्रेड मिलता था, किसी को बी ग्रेड मिलता था, सी ग्रेड, डिपेंडिंग ऑन उनके परफॉर्मेंस पे, राइट। और ये परफॉर्मेंस कैसे होता था, आपके हार्ड वर्क के बेसिस पे मेजर होता था, राइट, आपके हार्ड वर्क और आपने जिस तरह से एग्जाम्स को दी है। वैसे ही इन रियल लाइफ सिनेरियो आपको एक अगर कोई स्कोर करे कि लेट्स से आपको 300 टू 900 के बीच में एक स्कोर मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिबिल स्कोर रेंज। तो सिबिल स्कोर का रेंज है 300 टू 900, उसके बीच में हम सारे इंडिविजुअल्स को जो भी लोन लेना चाहते हैं, जो भी जिन्होंने लोन लिया है पहले, ठीक है, उनको हम रेट करते हैं, एक रैंक देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी को 850 का रैंक दूँ, स्कोर दूँ, तो उसका मतलब ये कि उनकी क्षमता बहुत बढ़िया है, जो भी वो लोग लोन्स लेते हैं या लिया है वो सही टाइम पे चुकाते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। अगर किसी का भी स्कोर लेट से 600 या 500 के आसपास हो तो हम उसको रिस्की बोलते हैं कि इनमें रिस्क ज़्यादा है। ओके, क्यों रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, जिन्होंने उनमें लोन ली थी या क्रेडिट कार्ड्स लिए थे तो वो उन्होंने सही टाइम पे नहीं भरे थे, और सही टाइम पे नहीं भरने के कारण हमारा जो मानना है कि ये लोन अगर लेंगे फ्यूचर में तो वो डेफिनेटली डिफॉल्ट करने के चांसेस हाई है, तो हम उनको बोलते हैं रिस्की बोरोवर। तो 300 मतलब हाई रिस्क, और जैसे 300 के से लेके 900 तक जाएंगे तो एनी स्कोर विच इज नियर टू 900 इज अ लो रिस्क स्कोर। तो सिविल स्कोर इज जस्ट हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई कि कौन अच्छा बोरोवर है और कौन रिस्की बोरोवर।

0: है, ओके, इससे बैंकों को ये पता चलता है कि अगर उनके पास लोन एप्लीकेशन आती है या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आती है, पर्सनल लोन की एप्लीकेशन आती है, होम लोन की एप्लीकेशन आती है, वो पहले जाके सिबिल स्कोर चेक करता है और सिबिल स्कोर देखने के बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको लोन देना चाहिए। अगर हाँ देना चाहिए तो किस ब्याज दर पे देना चाहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर के बेसिस पे भी आजकल ब्याज दर डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने होम लोन लिया था
1: जी,
0: एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक से, काफी फेमस प्राइवेट बैंक है। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि उनका स्कोर 750 के आसपास था, तो उनको एक अच्छे बोरोअर जिसका स्कोर शायद से 790-800 अगर हो, उनसे उनको 5 पैसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। मतलब कि 7.5 अगर होम लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको 7.55 भरना पड़ा, बिकॉज उनका सिबिल स्कोर थोड़ा सा
1: लो था,
0: ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक्स एक्सपेक्टेशंस। तो आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट अभी बात हो चुकी है कि क्रेडिट स्कोर, जो हम उसको अभी हमारे कॉमन लैंग्वेज में सिबिल स्कोर भी बोलते हैं, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है और इसको मेंटेन करना कितनी बड़ी बात अभी हो गई है। तो अभी आई थिंक मोटा मोटी मैंने आपको जो कहा कि क्रेडिट स्कोर ये आपका दर्शाता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है,
1: कैसी है,
0: और आपने पास्ट में जो भी लोन्स लिए हैं वो आपने किस तरह से चुकाए हैं। अगर आप रेगुलर हो तो आई थिंक आपका स्कोर हाई होना चाहिए। अगर आप इरेगुलर रहे हो, आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया या आपने कोई डिफॉल्ट किया है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर कम हो जाएगा और उससे आपको फ्यूचर में लोन लेने की दिक्कतें बढ़ सकती है।
1: जी जी हाँ, जब लोन की बात चली है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोई भी इंसान कौन कौन सी चीजों पर लोन ले सकता है।
0: हाँ अच्छा, तो इंसानों की अगर हम देखें तो जरूरतें क्या होती है लोन लेने के लिए। अगर हम डेफिनेटली हम लोन का मतलब ही क्या कि आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है पर मुझे कुछ चीज खरीदनी है या मुझे कुछ चीज परचेस करनी है, तो डेफिनेटली मुझे बैंक की सहायता से मैं वो चीज को किस्तों में भर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आई थिंक बहुत ही ये सेफ प्रैक्टिस है कि डेफिनेटली किस्तों में भर के आप अपनी चीजों को, जो भी आपकी यूजफुल चीजें हैं उसको आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, राइट, और आपकी लाइफस्टाइल आप अच्छे से सुधार सकते हो। तो एक तो होती है आपकी लाइफस्टाइल लोन्स, जैसे कि कंज्यूमर लोन, अगर आपने कोई क्रोमा के शोरूम में गए या कोई डिजिटल शोरूम में गए, आपको टीवी पसंद आ गया तो डेफिनेटली वहां पे आप कंज्यूमर लोन्स मिलते हैं जहाँ पे आप टीवी को किस्तों में परचेस कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर लोन्स। फिर होते हैं कोई पर्सनल लोन, जैसे कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई या कोई एजुकेशन कोर्स का मुझे फी भरना पड़ा,
1: एजुकेशन लोन भी होगी,
0: एजुकेशन लोन भी हो जाती है, और पर्सनल मेरे कुछ अगर शादी ब्याह का खर्चा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई इमरजेंसी कोई लोन अगर चाहिए, ठीक है, तो हम पर्सनल लोन लेते हैं जो 3-5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक लोग बैंक आपको देते हैं, ठीक है, और उसकी जो टेन्योर होती है लोन की वो 1 साल की भी होती है, 2-3 साल तक होती है। तो ये हो गए पर्सनल लोन जो पर्सनल कैपेसिटी पे ली जाती है। फिर आपने बोला एजुकेशन लोन, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स लेते हैं यूजुअली, वो भी एक लोन है। फिर सबसे बड़ी लोन है जो होम लोन, घर सबका सपना है और घर होना एक सबसे बड़ी बात होती है अपने इंडियन वैल्यू सिस्टम में, तो होम लोन सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और ज्यादातर लोग होम लोन ज्यादा लेते हैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन। फिर उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी लोन ले सकता हूँ। तो ऐसे बहुत प्रकार के लोन्स, और लास्ट में होता है बिजनेस लोन्स, जो यूजुअली फर्म्स मतलब कंपनीज लोन्स लेते हैं उनके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए। तो इस प्रकार के काफी सारे लोन्स होते हैं और ये सारे लोन्स का असेसमेंट कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर के द्वारा स्टार्ट होता है।
1: जी, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है और थोड़ा बहुत हम ये लोन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्यारा सा गीत हो जाए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।
0: क्या बात है, बढ़िया बढ़िया
1: बढ़िया बात है ना। हाँ,

0: हाँ तो देवल जी, हमारे लिसनर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये सिबिल एक्चुअली क्या क्या है और सिबिल जैसे कितनी कंपनियां भारत में कार्यरत हैं और इसका क्या और कितना महत्व भी है, ये भी आप हमें बताइए।
1: तो सिबिल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल आज से 25 साल पहले इनकॉर्पोरेट की थी, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी जो वेटरन बैंकर्स हम कहते हैं, दीपक पारेख एंड बैंकर्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सब ने एक डिसाइड किया कि जैसे कि इंटरनेशनली हर जगह ब्यूरोज होते हैं, क्रेडिट ब्यूरोज, ये कंपनीज को हम बोलते हैं क्रेडिट ब्यूरो, जो एक्चुअली इंडिविजुअल्स का डेटा स्टोर करते हैं। और क्या डेटा स्टोर करते हैं? उनके लोन के डिटेल स्टोर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि जैसे नाम हो गया, उनके आईडी, पैन आईडी है, वोटर आईडी है, आधार आईडी, वो सब स्टोर करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें वो स्टोर करते हैं। और उन्होंने कौन से जगह से क्या क्या लोन्स लिए हैं और उनकी कैसे पेमेंट हिस्ट्री रही है, वो सारी वो बैंक से डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। अभी क्रेडिट ब्यूरो में 4 क्रेडिट ब्यूरोस है इंडिया में,
0: अच्छा,
1: उसमें से ट्रांस यूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो व्हिच इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन। इसके लिए आज इंडिया में जब भी कोई क्रेडिट स्कोर बोलता है तो वो सिबिल स्कोर बोलता है,
0: अच्छा,
1: ओके, ना कि क्रेडिट स्कोर।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: तो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत हमारे घर पे भी एक है कि भाई बिस्किट्स नहीं बोलते हम, पार्ले जी बोलते हैं,
0: राइट,
1: ठीक है, भले हम खाए गुड डे पर शायद से हम बोलेंगे अरे हम भैया पार्ले जी देना, ठीक है। वैसे ये एक क्रेडिट स्कोर का नाम अभी सिबिल स्कोर बन गया है, बट फॉर जानकारी, ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांसयूनियन सिबिल इज वन ऑफ द क्रेडिट ब्यूरो, सेकेंड क्रेडिट ब्यूरो इज एक्सपीरियन, थर्ड क्रेडिट ब्यूरो इज इक्विफैक्स एंड द फोर्थ क्रेडिट ब्यूरो इज हाईमार्क क्रिफ। ये 4 कंपनीज हैं जो ऐसे स्कोर्स डेवलप करते हैं और बैंक्स वो स्कोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिबिल स्कोर का महत्व क्या है। तो मैंने जैसे अभी जस्ट आपके एक प्रश्न में कहा था और मेरे फ्रेंड का मैंने एग्जांपल दिया था कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर रादर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बिकॉज वो आपके क्षमता को डिपिक करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड हो, आपका पर्सनल लोन हो, आपका टर्म लोन हो, जो भी आप लोन्स लेते हो या क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट लेते हो कोई बैंक से, तो वो आपका कैसा व्यवहार रहा है वो बैंक से और वो कैसे पेमेंट्स हुई है उसके बारे में सिबिल रिपोर्ट आपको दर्शाता है और वो डिसिप्लिन के हिसाब से आपको स्कोर करता है। अच्छा स्कोर तो बैंक आपको अच्छे से और लोन देगा, अगर स्कोर बुरा है या थोड़ा सा कम है तो बैंक शायद आपको ना भी बोलते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिबिल की जानकारी रखें। आपको सिबिल गवर्नमेंट द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा साल में एक सिबिल रिपोर्ट फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो सिबिल में कैप्चर हुई है वो देख सकते हैं एंड उसको आप जांच भी कर सकते हो कि सही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन आपकी गलत कैप्चर हुई है तो आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो, जो आपके सिबिल के साइट पे आप जाके कर सकते हो, बहुत ईजी है। और आप वहाँ पे रिजर्व बैंक ने सबको टाइमलाइंस भी दिया है कि अगर आप डिस्प्यूट आज रेज करते हो तो वो डिस्प्यूट 30 दिन के अंदर आपको रिजोल्व करना है, कंपनी को रिजोल्व करना है।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही सहूलियत अभी कर दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंडिविजुअल अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में फुल जानकारी रख सके और अगर कोई जानकारी में कोई गलतियां हो तो उसका डिस्प्यूट रेज करके, ठीक है, साइट पे वो रिजोल्व भी कर सकते हैं तुरंत।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: तो ये एक RBI का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है कि पूरा क्रेडिट इकोसिस्टम, जो हम बोलते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक इंडिविजुअल फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली बनाना और इंश्योर करना कि जो भी जरूरतमंद है उनके तक हेल्प पहुंचे थ्रू क्रेडिट स्कोर। और हेल्प कैसे पहुंचेगी? अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा तो बैंक्स उनको पैसे देंगे और
0: देंगे,
1: वो देंगे, पैसे देंगे तो उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनकी जरूरतें पूरी होगी और वो अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, फैमिली को ग्रो कर सकते हैं।
0: हाँ, ये मैंने अभी आपने जब बात बताई उसका महत्व बताया तो हाल ही में मैंने पेपर में एक किस्सा पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कहीं किसी व्यक्ति की मंगनी टूट गई क्योंकि उसका सिबिल रिपोर्ट थोड़ा लो था। तो ये भी आजकल सब लोग, ये बिल्कुल सही बात है कि सिबिल का यानी रिपोर्ट का इतना महत्व हो गया, तो ये बात सही है क्या?
1: हाँ, ये बात सही है क्या आजकल, और ये बहुत ही एकदम सरप्राइजिंग भी है कि क्रेडिट स्कोर के अभी यूसेजेस कितने बढ़ने लगे हैं। खाली अभी बैंक्स नहीं, अभी तो आई गेस शादी ब्याह में भी पूछे जाते हैं कि आपका सिबिल स्कोर बताइए, क्योंकि प्रश्न तो वही है। प्रश्न तो वही है कि क्या ये मेरी बेटी को संभाल पाएंगे, या क्या उनके पास सफिशिएंट इनकम है, क्या उनका व्यवहार, खाली फैमिली व्यवहार नहीं पर उनका बैंकों के साथ भी फाइनेंस व्यवहार भी अच्छा है कि नहीं। बिकॉज आज की लाइफ स्टाइल में, आज के जनरेशन में फाइनेंशियल व्यवहार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सतर्क हो, क्या आप डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि आप अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप डेफिनेटली अच्छे से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और स्टेबलाइज हो सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली मैं भी ना चाहूँ कि मैं किसी के साथ आगे व्यवहार करूँ, क्योंकि रिस्क बना रहेगा। ठीक है, और रिस्क है तो फिर इश्क नहीं है शायद से। तो
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत सरलता से और बहुत सारी जानकारी दी है आपने देवल जी हमें। तो ये बताइए कि क्रेडिट स्कोर का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में किस तरह से मदद करता है।
1: अच्छा, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की जनरेशन में हो चुका है। अभी आज जैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद जब तक मुझे जॉब नहीं लगी थी तो आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स कि भाई मुझे पॉकेट मनी मिलेगी और मेरे खर्चे उनके पॉकेट मनी से चलेंगे। आज की जनरेशन बहुत अलग सोचती है, उनको डे वन से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब क्या, मतलब तो यही है ना कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। डेफिनेटली आपकी इनकम से आप अपने खर्चे उठा सकते हो और कभी कभी आपको खर्चे उठाने के लिए शायद आप छोटी सी लोन भी ले सकते हो। ये लोन लेने में जो सुविधा जो हेल्प करते हैं, पहले के जमाने में ऐसा था कि अगर आपको फलाने बैंक से लोन लेनी है तो आपकी वहां पे पहचान होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट होना चाहिए कि मैं ये मैनेजर को जानता हूँ, कि मैं उस मैनेजर को जानता हूँ, और उसकी बेसिस पे, जान पहचान के बेसिस पे हमको लोन मिलती थी। तो हम बोलते थे उसको कि जान पहचान होनी चाहिए बैंकर्स के साथ तो आपको लोन मिल सकती है। करेक्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो हम डिपेंडेंट थे। अगर हमें जान पहचान नहीं है तो फिर शायद से हमारे पास वो पहुंच नहीं है, तो फिर शायद से हमको लोन ना भी मिले, रिजेक्शन हो जाए। तो डोंट यू थिंक हम इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं थे? करेक्ट, हमें कहीं में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना था। ठीक है, आज की जो युवा है वो एकदम बेफिक्र इंडिपेंडेंट होके भी बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे फिनटेक्स आ गए हैं जो डिजिटल कंपनीज है, और एक क्लिक ऑफ द बटन में ठीक है वो लोन्स लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन तब हुआ जब ये ना के खाली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी बट ये क्रेडिट ब्यूरो ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लास्ट 25 ईयर्स में, कि जहाँ पे उन्होंने बैंक को पहचान वाले मॉडल से निकाल के ओके, ब्यूरो स्कोर के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट में डिस्प्ले करके, ठीक है, पहचान की कोई जरूरत ही नहीं है,
0: जरूरत ही नहीं
1: अभी। आज मुझे अगर आपको आपके बारे में कुछ जानना हो तो शायद से मैं आपके सिबिल रिपोर्ट को या ब्यूरो रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करूं और वहां से पता चल जाए कि आपका व्यवहार, पिछला व्यवहार बैंकों से कैसा रहा, और उससे मुझे कंफर्टेबल मैं रहूंगा कि मैं आपको लोन दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात हो गई कि आज का जो युवा पीढ़ी भी है, या फिर मैं वो भी बोलूँ कि जो गांव में रहते हो या tier 3 tier 4 सिटीज में रहते हो, जहाँ पे वो बैंक में जाना पहले अनिवार्य भी नहीं था, एकदम पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी, आज उनको अपने ही स्कोर के द्वारा, अगर उनका स्कोर है तो उनको लोन मिल सकती है, लोन प्राप्त हो सकती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ इंडिपेंडेंट लिविंग एंड वेरी एसेंशियल, एंड इट इज क्रेडिट ब्यूरोस आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंश्योरिंग के हर व्यक्ति डिजर्विंग व्यक्ति को क्रेडिट प्राप्त हो, और इसमें ब्यूरो के थ्रू उनकी वो क्षमता पूरी हो सकती है।
0: जी जी,
1: तो यही है मेरा कहना कि यस, बहुत ही रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है।
0: या हाँ, तो देवल जी आपने सिबिल के बारे में जानकारी देकर हमारे श्रोताओं की बहुत सारी फिक्र धुएं में उड़ा दी है। तो एक प्यारा सा नगमा यहाँ पे हो जाए, तो आइए सुनते हैं।

0: लता जी के इस खूबसूरत टाइमलेस गीत को शबाना आजमी के प्लेबैक के लिए रिकॉर्ड करके अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की एक ऐसी मुतरिबा ने जिनके गले में ही नहीं बल्कि नाम में भी सरस्वती का वास्ता। शारदा नाम की इस लड़की ने 46 भाषाओं में 50,000 से भी ऊपर गीत हमें दिए और आगे जाकर कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जानी गई। तो आइए इस कार्यक्रम का शानदार आगाज करते हैं प्रेरणा और काकोली की मदद से, जो कविता जी का एक ऐसा गीत सुनाएंगी जिसने श्रीदेवी जैसी अदाकारा को हमेशा के लिए हवा हवाई ब्रांड दे दिया। इस गीत से श्रीदेवी की छवि ऐसी जुड़ी कि सिंगापुर के मैडम क्लोसॉर्ट्स में भी श्रीदेवी जी का वही गेटअप रखा गया है जो कि इस गीत में था। प्रेरणा और काकोली।
1: हवा हवाई।

हवा हवाई कविता जी का पहला पहला हिट नहीं था। 1985 में जब उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से मिथुन दास से कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसी समय उनकी आवाज फिल्म के हीरो और पिक्चर हॉल में बैठे सभी ऑडियंस के दिलों को छू गई थी। पर क्योंकि इस गाने के डुएट वर्जन को लता जी ने गाया था, कविता जी का नाम कहीं पीछे गुम हो गया। मगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 साल बाद आए हवा हवाई, जिसने श्रीदेवी और कविता कृष्णमूर्ति दोनों को ही अपनी अपनी जगह स्टार बना दिया। 1998 में एक डब्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए कमाए। उस फिल्म का नाम था बॉम्बे और उसकी पटकथा में जान डालने का काम किया था एक गीत ने, जिसे गाया था हरिहरन साहब और कविता जी ने। तो आइए इसी गीत से इस कार्यक्रम का दिल छूने के लिए बुलाते हैं धनश्री और अभिषेक को।

कविता जी सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से पढ़ी हैं और उसके म्यूजिकल फेस्टिवल मल्हार में उनकी मुलाकात हुई रानू मुखर्जी से। रानू ने मिलवाया अपने पिता लीजेंडरी हेमंत कुमार साहब से। हेमंत कुमार उनकी संगीत में पकड़ से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के ट्रूप में शामिल कर लिया। यहाँ पे वो मन्ना डे साहब की नज़र में भी आ गई और उन्होंने उन्हें एज जिंगल्स गाने का मौका दिया। शायद इसी प्रकार के विविध अनुभवों से आई वर्सेटैलिटी का उदाहरण है कविता जी का वो गीत जिसे रमेश सिप्पी साहब ने बनवाया था फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए, मगर मुकुल आनंद ने मांग लिया अग्निपथ के लिए और प्रयोग किया फिल्म हम में। इस गीत की प्रेरणा है एक जर्मन गीत ये के निमो ये के जिसपे बप्पी लहरी साहब भी एक गीत बना चुके थे, लिहाजा कंट्रोवर्सी हुई। मगर आज देखें तो लगता है कि अगर ये गीत रिलीज ना होता तो हिंदुस्तानी जनता एक यूनिक म्यूजिक एक्सपीरियंस से महरूम रह जाती। मगर ये गीत रिलीज हुआ और उसे यहाँ पेश करने आ रहे हैं प्रियंका और राजेंद्र।

कविता जी ने जहां अपने करियर में एक तरफ रफी किशोर जैसे लेजेंड्स के साथ गाने गाए, वहां दूसरी तरफ अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत, सोनू निगम और शान इत्यादि सभी बड़े गायकों की आवाज में अपनी आवाज मिलेगी। 1990s उनका सर्वश्रेष्ठ समय था जब उन्होंने 1942 लव स्टोरी, याराना, अग्निसाक्षी, खामोशी जैसी फिल्मों में सुपरहिट गीत गाए और बैक टू बैक 3 फिल्मफेयर अवार्ड जीते। 1994 में विधु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड में पहली बार डॉल्बी स्टीरियो साउंड लेकर आए फिल्म 1942 लव स्टोरी से। ये फिल्म एक खूबसूरत संगीतमय पीरियड ड्रामा थी जो उन्होंने अनिल कपूर की गुजारिश पे क्रिएट

किया था। कहते हैं इस फिल्म के गीत फिल्म की लॉन्च पार्टी में रिलीज ना किए जाने से म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन खुश नहीं थे, पर यह भी किसको पता था कि इस फिल्म की एल्बम लॉन्च होने से पहले ही बर्मन साहब इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। इस फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति ने जान डाली बारिश की रिमझिम में, और वो टाइमलेस गीत आपके सामने पेश करेंगे डॉक्टर सुजा और रेस।

दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि हेमा मालिनी का कविता कृष्णमूर्ति के जीवन में क्या योगदान रहा है? चौंक गए ना? तो सुनिए, बचपन में कविता जी की बड़ी बहन हेमा जी के साथ नृत्य सीखने जाती थी और उनके पीछे पीछे 2 वर्षीय पापा भी चले जाते थे। हेमा मालिनी कविता जी को उनके बचपन के नेम पापा से ही जानती थी। बड़े होने के बाद जब कविता जी के हुनर के बारे में हेमा की माँ जया चक्रवर्ती को पता चला तो उन्होंने उन्हें मिलवाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, जो तुरंत कविता कृष्णमूर्ति की क्लासिकल की पकड़ के कायल हो गए। आगे जाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुकुल आनंद और अमिताभ कॉम्बो की 3 फिल्मों में संगीत दिया और 2 में कविता जी को भी अपनी आवाज देने के लिए बुलाया गया। इनमें से एक थी खुदा गवाह, जिसके लिए मशहूर है कि श्रीदेवी से ये रोल कबूल करवाने के लिए अमिताभ ने श्रीदेवी को फूलों का एक ट्रक भेजा था और नतीजा तू मुझे कबूल। आइए सुनते हैं यही गीत माधवी और संतोष से।

शुरुआती दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कविता जी को इतना सपोर्ट किया, ये मशहूर हो गया कि कविता कृष्णमूर्ति लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक्सक्लूसिव सिंगर हैं, वो कहीं बाहर नहीं गा सकते। इस दौरान कविता जी को मौका मिला लक्ष्मीकांत के डबिंग आर्टिस्ट की तरह काम करने का। इसमें उन्हें लता जी और आशय जी को दिखाने के लिए उनके लिए तैयार गीतों का डेमो रिकॉर्ड करना होता था ताकि फाइनल रिकॉर्डिंग में समय बचाया जा सके। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों का चाइल्ड प्लेबैक सोलो भी ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ था, पर फाइनल रिकॉर्डिंग के वक्त उनका रेंडिशन लता जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गीत हिट हो गया और कविता जी की बाहर भी पहचान बन गई। 90s में एक पुराने ब्रॉडवे प्ले रेनमेकर के प्लॉट पे एक बॉलीवुड फिल्म बनी खूबसूरत, जिसका म्यूजिक दिया जतिन ललित ने और याद किया कविता जी को एक खूबसूरत डुएट के लिए। आइए सुनते हैं वही गीत उषा और संजय की मधुर आवाज़ में।

जैसे फिल्म को हिट होते और यादगार बनते जरूर देखा होगा, मगर एक फ्लॉप फिल्म सिर्फ एक गाने की वजह से 30 साल बाद भी याद की जाए ऐसा नहीं देखा होगा। जरा सोचिए उस नगमे में कितनी कशिश होगी जिसकी वजह से आज भी फिल्म का नाम लोगों को याद है। हुआ यूं कि DDLJ फेम जतिन ललित ने डेब्यू किया था एक ऐसी फिल्म से जिसमें हीरो होना था गोविंदा को, पर डेट्स न होने के कारण हीरो बन गए अभिनेता आसिफ शेख। नतीजा बॉक्स ऑफिस पे सन्नाटा, मगर जतिन ललित ने अपनी जी जान लगा दी और उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का एक गीत ऐसा बन पड़ा कि वो आज भी गाया और बजाया जाता है। फिल्म का नाम था यारा दिलदारा और गीत आप तनुजा और प्रशांत की खूबसूरत आवाजों में खुद ही सुन लीजिए।

आंखें बंद करता हूं तो ना जाने कितने और कविता जी के गाने मेरे दिमाग में गूंजने लगते हैं। उनके पूरे करियर को सिर्फ 8 नगमों में माप पाना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि शायद एक गुस्ताखी भी लगे, मगर समय की कमी हमें गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही। कविता जी ने अपना चौथा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड जीता 2003 में फिल्म देवदास के लिए और सन 2005 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया, मगर 2000s में ही इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में बने हम दिल दे चुके सनम के गीतों ने भी कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के 2 अवार्ड दिलाए, एक जी सिने अवार्ड और दूसरा स्टार स्क्रीन अवार्ड। जयपुर रेडियो और आओ जुमे गाएं की तरफ से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी आवाजों में इस फिल्म के एक सॉफ्ट रोमांटिक गीत के साथ आपसे विदा लेने की गुस्ताखी करते हैं। मैं गगन माथुर और मेरी को सिंगर गायत्री।

0: लता जी के इस खूबसूरत टाइमलेस गीत को शबाना आजमी के प्लेबैक के लिए रिकॉर्ड करके अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की एक ऐसी मुतरिबा ने जिनके गले में ही नहीं बल्कि नाम में भी सरस्वती का वास था। शारदा नाम की इस लड़की ने 40 भाषाओं में 50,000 से भी ऊपर गीत हमें दिए और आगे जाकर कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जानी गई। तो आइए इस कार्यक्रम का शानदार आगाज करते हैं प्रेरणा और काकोली की मदद से, जो कविता जी का एक ऐसा गीत सुनाएंगी जिसने श्रीदेवी जैसी अदाकारा को हमेशा के लिए हवा हवाई ब्रांड दे दिया। इस गीत से श्रीदेवी की छवि ऐसी जुड़ी कि सिंगापुर के मैडम टुसॉड्स में भी श्रीदेवी जी का वही गेटअप रखा गया है जो कि इस गीत में था। प्रेरणा और काकोली।
1: हवा हवाई।

हवा हवाई कविता जी का पहला पहला हिट नहीं था। 1985 में जब उन्होंने एक बच्चे के माध्यम से मिथुन दास से कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, उसी समय उनकी आवाज फिल्म के हीरो और पिक्चर हॉल में बैठे सभी ऑडियंस के दिलों को छू गई थी। पर क्योंकि उस गाने के डुएट वर्जन को लता जी ने गाया था, कविता जी का नाम कहीं पीछे गुम हो गया। मगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 साल बाद आए हवा हवाई, जिसने श्रीदेवी और कविता कृष्णमूर्ति दोनों को ही अपनी अपनी जगह स्टार बना दिया। 1998 में एक डब्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए कमाए। उस फिल्म का नाम था बॉम्बे और उसकी पटकथा में जान डालने का काम किया था एक गीत ने, जिसे गाया था हरिहरन साहब और कविता जी ने। तो आइए इसी गीत से इस कार्यक्रम का दिल छूने के लिए बुलाते हैं धनश्री और अभिषेक को।

कविता जी सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से पढ़ी हैं और उसके म्यूजिकल फेस्टिवल मल्हार में उनकी मुलाकात हुई रानू मुखर्जी से। रानू ने मिलवाया अपने पिता लीजेंडरी हेमंत कुमार साहब से। हेमंत कुमार उनकी संगीत में पकड़ से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के ट्रूप में शामिल कर लिया। यहाँ पे वो मन्ना डे साहब की नज़र में भी आ गई और उन्होंने उन्हें एड जिंगल्स गाने का मौका दिया। शायद इसी प्रकार के विविध अनुभवों से आई वर्सेटैलिटी का उदाहरण है कविता जी का वो गीत जिसे रमेश सिप्पी साहब ने बनवाया था फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए, मगर मुकुल आनंद ने मांग लिया अग्निपथ के लिए और प्रयोग किया फिल्म हम में। इस गीत की प्रेरणा है एक जर्मन गीत ये के निमो ये के जिस पे बप्पी लहरी साहब भी एक गीत बना चुके थे, लिहाजा कंट्रोवर्सी हुई। मगर आज देखें तो लगता है कि अगर ये गीत रिलीज ना होता तो हिंदुस्तानी जनता एक यूनिक म्यूजिक एक्सपीरियंस से महरूम रह जाती। मगर ये गीत रिलीज हुआ और उसे यहाँ पेश करने आ रहे हैं प्रियंका और राजेंद्र।

कविता जी ने जहां अपने करियर में एक तरफ रफी किशोर जैसे लेजेंड्स के साथ गाने गाए, वहां दूसरी तरफ अमित कुमार, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत, सोनू निगम और शान इत्यादि सभी बड़े गायकों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई। 1990s उनका सर्वश्रेष्ठ समय था जब उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी, याराना, अग्निसाक्षी, खामोशी जैसी फिल्मों में सुपरहिट गीत गाए और बैक टू बैक 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते। 1994 में विधु विनोद चोपड़ा बॉलीवुड में पहली बार डॉल्बी स्टीरियो साउंड लेकर आए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। ये फिल्म एक खूबसूरत संगीतमय पीरियड ड्रामा थी जो उन्होंने अनिल कपूर की गुजारिश पे क्रिएट किया था। कहते हैं इस फिल्म के गीत फिल्म की लॉन्च पार्टी में रिलीज न किए जाने से म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन खुश नहीं थे, पर यह भी किसको पता था कि इस फिल्म की एल्बम लॉन्च होने से पहले ही बर्मन साहब इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। इस फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति ने जान डाली बारिश की रिमझिम में, और वो टाइमलेस गीत आपके सामने पेश करेंगे डॉक्टर सुजा और रईस।

दोस्तों, क्या आपको इल्म है कि हेमा मालिनी का कविता कृष्णमूर्ति के जीवन में क्या योगदान रहा है? चौंक गए ना? तो सुनिए, बचपन में कविता जी की बड़ी बहन हेमा जी के साथ नृत्य सीखने जाती थी और उनके पीछे पीछे 2 वर्षीय पापा भी चले जाते थे। हेमा मालिनी कविता जी को उनके बचपन के नेम पापा से ही जानती थी। बड़े होने के बाद जब कविता जी के हुनर के बारे में हेमा की माँ जया चक्रवर्ती को पता चला तो उन्होंने उन्हें मिलवाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, जो तुरंत कविता कृष्णमूर्ति की क्लासिकल की पकड़ के कायल हो गए। आगे जाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मुकुल आनंद और अमिताभ कॉम्बो की 3 फिल्मों में संगीत दिया और 2 में कविता जी को भी अपनी आवाज़ देने के लिए बुलाया गया। इनमें से एक थी खुदा गवाह, जिसके लिए मशहूर है कि श्रीदेवी से ये रोल कबूल करवाने के लिए अमिताभ ने श्रीदेवी को फूलों का एक ट्रक भेजा था और नतीजा तू मुझे कबूल। आइए सुनते हैं यही गीत माधवी और संतोष से।

शुरुआती दिनों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कविता जी को इतना सपोर्ट किया कि मशहूर हो गया कि कविता कृष्णमूर्ति लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक्सक्लूसिव सिंगर हैं, वो कहीं बाहर नहीं गा सकते। इस दौरान कविता जी को मौका मिला लक्ष्मीकांत के डबिंग आर्टिस्ट की तरह काम करने का। इसमें उन्हें लता जी और आशा जी को दिखाने के लिए उनके लिए तैयार गीतों का डेमो रिकॉर्ड करना होता था ताकि फाइनल रिकॉर्डिंग में समय बचाया जा सके। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों का चाइल्ड प्लेबैक सोलो भी ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ था, पर फाइनल रिकॉर्डिंग के वक्त उनका रेंडिशन लता जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि इसे दोबारा रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गीत हिट हो गया और कविता जी की बाहर भी पहचान बन गई। 90s में एक पुराने ब्रॉडवे प्ले रेनमेकर के प्लॉट पे एक बॉलीवुड फिल्म बनी खूबसूरत, जिसका म्यूजिक दिया जतिन ललित ने और याद किया कविता जी को एक खूबसूरत डुएट के लिए। आइए सुनते हैं वही गीत उषा और संजय की मधुर आवाज़ में।

वजह से फिल्म को हिट होते और यादगार बनते जरूर देखा होगा, मगर एक फ्लॉप फिल्म सिर्फ एक गाने की वजह से 30 साल बाद भी याद की जाए ऐसा नहीं देखा होगा। जरा सोचिए उस नगमे में कितनी कशिश होगी जिसकी वजह से आज भी फिल्म का नाम लोगों को याद है। हुआ यूं कि DDLJ फेम जतिन ललित ने डेब्यू किया था एक ऐसी फिल्म से जिसमें हीरो होना था गोविंदा को, पर डेट्स न होने के कारण हीरो बन गए अभिनेता आसिफ शेख। नतीजा बॉक्स ऑफिस पे सन्नाटा, मगर जतिन ललित ने अपनी जी जान लगा दी और उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का एक गीत ऐसा बन पड़ा कि वो आज भी गाया और बजाया जाता है। फिल्म का नाम था यारा दिलदारा और गीत आप तनुजा और प्रशांत की खूबसूरत आवाज़ों में खुद ही सुन लीजिए।

आंखें बंद करता हूं तो ना जाने कितने और कविता जी के गाने मेरे दिमाग में गूंजने लगते हैं। उनके पूरे करियर को सिर्फ 8 नगमों में माप पाना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि शायद एक गुस्ताखी भी लगे, मगर समय की कमी हमें गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रही है। कविता जी ने अपना चौथा और आखिरी फिल्मफेयर अवार्ड जीता 2003 में फिल्म देवदास के लिए और सन 2005 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया, मगर 2000s में ही इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में बने हम दिल दे चुके सनम के गीतों ने भी कविता कृष्णमूर्ति को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के 2 अवार्ड दिलाए, एक जी सिने अवार्ड और दूसरा स्टार स्क्रीन अवार्ड। जयपुर रेडियो और आओ जुमे गाएं की तरफ से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी आवाज़ों में इस फिल्म के एक सॉफ्ट रोमांटिक गीत के साथ आपसे विदा लेने की गुस्ताखी करते हैं। मैं गगन माथुर और मेरी को सिंगर गायत्री।

मिले आप सभी को शुभ संदेश, घर कर खुशियों का वेश। आया नया साल लाए सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ और साथ ही ये हमारा प्यारा सा शो जो

0: झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वणक्कम। मुंबई से विद्या विकास का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो और शनिवार शाम मैं हाजिर हूँ आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम आओ झूमे गाए। आज के कार्यक्रम का शीर्षक बज्म ए गजल, जिसमें हम बॉलीवुड हिंदी फिल्म की गजलों को सुनेंगे। आज के कार्यक्रम का पहला गीत लेकर आ रहे हैं किशोर जी और विद्या प्रकाश जी फिल्म अर्थ से, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। इसके संगीतकार थे जगजीत सिंह जी और चित्रा जी। चलिए आज की शाम इस खूबसूरत नगमे के साथ शुरुआत करते हैं।

गजल ऐतिहासिक रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई में सबसे लोकप्रिय काव्य रूपों में से एक रही है। एक गजल में आप किसी से बिछड़ने का दर्द और उस दर्द के बावजूद प्यार की सुंदरता दोनों की काव्य अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। अगला गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जी और चैतन्य जोशी जी। यह गाना जगजीत सिंह जी और चित्रा जी ने मिलकर गाया है और इसके संगीतकार थे बपीदा। इस गीत के बोल लिखे थे कैफी आजमी जी ने।

पेशकश। गजल दर्द के बावजूद एक तरफा प्यार की सुंदरता को भी चित्रित करती है। गजल फारसी और उर्दू शायरी का एक मुख्य रूप है, हालांकि आज यह अन्य भाषाओं में भी पाया जाता है। गजल की सुंदरता उसके अर्थ की गहराई में है। एक गजल आत्मा को झकझोर देने वाली होती है और इसके गहरे अर्थ को समझने के लिए इसके साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। पंकज उदास जी, जगजीत सिंह जी जैसे गजल गायक इस कला रूप को जीवित रखे हुए हैं। अगला गीत सुनते हैं डॉली जी और मनवेंद्र त्यागी जी की मधुर आवाजों में फिल्म एक ही मकसद, जो 1988 में रिलीज हुई। इसके संगीतकार और गायक पंकज उदास जी हैं।

भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा जो 1931 में रिलीज हुई, उसके बाद से उर्दू कविता की गजल परंपरा पारंपरिक बॉलीवुड संगीत का आधार थी। 1930 के दशक से 1960 के दशक तक गजल भारतीय फिल्म संगीत की प्रमुख शैली थी। अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म उमराव जान से जो 1981 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के संगीतकार थे खय्याम जी और यह गीत आशा भोसले जी ने गाया है। हमारे लिए खूबसूरत नगमा लेकर आ रहे हैं संगीता जी और गायत्री जी।

पेशकश। मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों ने 1960 और 1970 के दशक में मुस्लिम समाज के लिए बड़े पैमाने पर उल्लेखनीय फिल्मी गजलों की रचना की। 1990 के दशक की शुरुआत में फिल्मी गजल शैली में एक बार फिर गजल का पुनरुद्धार का अनुभव हुआ। नदीम श्रवण की आशिकी जो 1990 में रिलीज हुई, दिल, साजन, फूल और कांटे और दीवाना जैसे साउंडट्रैक के साथ 1990 के दशक की शुरुआत में गजल प्रकार के रोमांटिक संगीत की शुरुआत करते हुए बॉलीवुड संगीत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। अगला गीत लेकर आ रहे हैं मनीषा जी और प्रशांत जी फिल्म सरफरोश से जो 1999 में रिलीज हुई। इसके संगीतकार थे जतिन ललित की जोड़ी और इस गीत को गाया था जगजीत सिंह।

0: पेशकश।
1: अगला गीत
0: राग यमन कल्याण पर आधारित बेहद खूबसूरत गीत है। यह गीत पाकिस्तानी कवि फैयाज हाशमी द्वारा लिखित और इसे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हबीब अली मोहब्बत ने लोकप्रिय बनाया। इसकी बेहद खूबसूरत धुन और गहरे रोमांटिक गीतों के कारण इस गाने को कई कलाकारों ने फिर से गाया। उनमें से प्रसिद्ध भारतीय कलाकार आशा भोसले जी ने भी इस गीत को गाया। हमारे लिए ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं कविता जी।

खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत फिल्म एतबार से है, जो कि 1985 में रिलीज हुई। इसके संगीतकार थे बप्पी लहरी जी और इसके बोल लिखे थे हसन कमाल और फारूक कैसर जी ने। इस गीत को आशा भोसले जी और भूपिंदर सिंह ने इतना खूबसूरत गाया कि क्या बताएं। चलिए, हमारे लिए गीत लेकर आ रहे हैं रामकृष्ण जी और उषा जी।

बेहद खूबसूरत। अगला गीत दिल दिया दर्द लिया से है, जो 1966 में रिलीज हुई। इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद साहब और इसके बोल लिखे थे शकील बदायूनी जी ने। इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। हमारे लिए गीत लेकर आ रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना जी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आपकी आवाज आपकी पहचान, और मैं आपके साथ पहली बार गुरप्रीत लेकर आई हूं एक शाम।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुनेंगे प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के कलाकार हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से नीरज, और नीरज आ गए हैं लेके साज अपने हाथों में, और इस महफिल की बात बनाने आज के कलाकार। और आज इस प्रोग्राम में सुरीला स्वर रहेगा नीरज का।

प्रणाम सर, कैसे? हेलो, हेलो।

डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। और अब आज का ये खास आयोजन फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से लेके आई हैं कुछ खास नगमे, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच।

आपने सुना प्रोग्राम गीत लाजवाब, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रियाओं की हमें आपसे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं इस तरह के गीतों को, जिन्हें हमने नाम दिया है गीत लाजवाब। ऐसे गीत जो बहुत समय से गाए जा रहे हैं, हमारी जुबान पे ठहरे हैं, हमारे पूर्वजों की जुबान पे भी ठहरे थे, और आने वाली पीढ़ी भी इसको गा रही है अपने ढंग से, अपने अंदाज से। तो गीत वही, अंदाज नया। इस तरह के गीत हम प्रसारित करना चाहते हैं। आपको कैसे लगते हैं इस तरह के गीतों के ये टुकड़े, आप जरूर हमें बताइएगा। कल भी हमने रवि सूर्य कुमार की आवाज में इस तरह के गीत सुनाए थे, और आज भी हमने आप तक ऐसे गीत पहुंचाए हैं। इस प्रोग्राम का नाम रहेगा गीत लाजवाब, और हो सके तो गीतों में जवाब भी ढूंढिए इस तरह से कि एक गीत है मोहब्बत क्या चीज है, तो दूसरे गीत में कहते हैं मोहब्बत बड़े काम की चीज है। तो एक गीत प्रश्न उठाता है, दूसरा जवाब देता है। यदि उन गीतों का संयोजन इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो सच में वो गीत लाजवाब होंगे। हमें उम्मीद है हमारी बात आप तक पहुंची होगी और आपने समझी होगी। आपने सुना जूनागढ़ गुजरात की फाल्गुनी दवे की आवाज में कुछ इस तरह के गीत। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रोग्राम आज के कलाकार में हमारे साथ हैं अंजलि शर्मा, नोएडा दिल्ली से। हम वेलकम कर रहे हैं अंजलि का, जयपुर रेडियो की सिंगर। और आज खास बात ये कि अंजलि लेके आई हैं आशाताई के कुछ सुनहरे नगमे। बहुत दिनों से प्रतीक्षित ये प्रोग्राम हो रहा है आप सबके सहयोग से, उसके लिए आप सबका आभार। और वेलकम कर रहे हैं हम, अभिनंदन स्वागत अंजलि का पहले गीत में।

जो भी है बस यही एक पल है, और पल पल पलती हमारी जिंदगी, और जिंदगी की ये किताब हर पल है। आशा जी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत अंजलि गा रही थी अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज में। जयपुर रेडियो की सिंगर मेहमान हमारी आज की, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और किसको किसकी कोई ना खबर। आइए लेते हैं और सुनते हैं बेखबर होके इस गीत को, जिसने बोलता है आशा जी ने आवाज दी थी और आज हमारे लिए गा रही हैं नोएडा की अंजलि, जयपुर रेडियो की सिंगर।

बिल्कुल ले गई ले गई ले गई प्यार की पहली नजर और हमारे श्रोताओं की दिल की बात और आपकी आवाज ले गई दिल ले गई ले गई। अंजलि की आवाज सुन रहे हैं आप जयपुर रेडियो के इस मंच से। अंजलि जयपुर रेडियो की सिंगर हमारे साथ आपकी आवाज आपकी पहचान प्रोग्राम में आज लेके आई हैं आशाताई के कुछ सुरीले नगमे।

आएगा आने वाला और जाएगा जाने वाला और गीत गाएगा गाने वाला। और आज गा रही हैं जयपुर रेडियो की सिंगर अंजलि हमारे साथ हमारे संग इस मंच पर, जिसका नाम है डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आपकी आवाज आपकी पहचान, और यही वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे।

कभी न कम होंगी हमारी वफाएं, यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे, और यही वो जगह है। पर कई बार जब दूरी होती है, वियोग होता है, तो हम क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उसका भी एक नजारा इस गीत में देख लेते हैं। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुब्बार ही गुब्बार है। तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये खुद से शर्मसार है। ये क्या जगह है दोस्तों, अंजलि की आवाज में ये गीत। हमारी आज की सिंगर मेहमान अंजलि, नोएडा से।

ये किस मुकाम पर लेके आई गई सिंगिंग आपकी हमें, ये मेरा मंच कहे तो क्या। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, आवाज आपकी पहचान, और आपने सुनी आज नोएडा दिल्ली की और यूपी की अंजलि शर्मा की आवाज। आशाताई के खूबसूरत गीतों के साथ आपने इस मंच पर अपनी आवाज को, अपने सुरीलेपन को सदा की तरह कायम रखा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब उन सभी श्रोताओं के नाम जिन्होंने भेजे हैं आपके नाम पैगाम। श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, मीनाली लाल यूपी से, अलका त्रिपाठी कोलकाता वेस्ट बंगाल से, तनुजा महेश्वरी मुंद्रा मुंबई महाराष्ट्र से, सिमरन भारद्वाज जगह का नाम नहीं लिखा है, और सुर के सितारे ग्रुप के सभी मेंबर्स, नेपाल से कल्पना अग्रवाल, नेपाल से ही अनीता दुगढ़, अनीता पटेल राजकोट से, शिल्पा चंडीगढ़ से, अतुल सक्सेना हैदराबाद से और अलका सक्सेना हैदराबाद से, स्वरित शर्मा पंजाब से और जूनागढ़ से, फाल्गुनी दवे और सोनल पारिक। आप सबका आभार और धन्यवाद। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज आपकी पहचान। बहुत आभार अंजलि और हमारी आज की सिंगर अंजलि शर्मा नोएडा से, और हमारे सभी सुनने वालों को हमारी ओर से बहुत धन्यवाद और आभार।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। और अब आज का ये खास आयोजन फाल्गुनी दवई जूनागढ़ गुजरात से लेके आई हैं कुछ खास नगमें, आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच।

क्या दिल नहीं गीत लाजवाब प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। आपकी आवाज आपकी पहचान का ही मंच है और ये गीत की डोर बनी है जयपुर रेडियो के इस मंच से।

आपने सुना प्रोग्राम गीत लाजवाब, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसकी प्रतिक्रियाओं की हमें आपसे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं इस तरह के गीतों को, जिन्हें हमने नाम दिया है गीत लाजवाब। ऐसे गीत जो बहुत समय से गाए जा रहे हैं, हमारी जुबान पे ठहरे हैं, हमारे पूर्वजों की जुबान पे भी ठहरे थे, और आने वाली पीढ़ी भी इसको गा रही है अपने ढंग से, अपने अंदाज से। तो गीत वही, अंदाज नया। इस तरह के गीत हम प्रसारित करना चाहते हैं। आपको कैसे लगते हैं इस तरह के गीतों के ये टुकड़े, आप जरूर हमें बताइएगा। कल भी हमने रवि सूर्य कुमार की आवाज में इस तरह के गीत सुनाए थे, और आज भी हमने आप तक ऐसे गीत पहुंचाए हैं। इस प्रोग्राम का नाम रहेगा गीत लाजवाब, और हो सके तो गीतों में जवाब भी ढूंढिए इस तरह से कि एक गीत है मोहब्बत क्या चीज है, तो दूसरे गीत में कहते हैं मोहब्बत बड़े काम की चीज है। तो एक गीत प्रश्न उठाता है, दूसरा जवाब देता है। यदि उन गीतों का संयोजन इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो सच में वो गीत लाजवाब होंगे। हमें उम्मीद है हमारी बात आप तक पहुंची होगी और आपने समझी होगी। आपने सुना जूनागढ़ गुजरात की फाल्गुनी दवे की आवाज में कुछ इस तरह के गीत।

0: सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: संगीत जगत से जुड़े सभी संगीत प्रेमियों को मुकेश चोपड़ा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फिल्मों का नाम लेते ही हॉलीवुड और बॉलीवुड का नाम तुरंत जहन में आ जाता है। वैसे तो फिल्में 1940 से बन रही थीं, पर उनका सुनहरा समय 1970 से शुरू हुआ, जिसमें एक से एक हिट फिल्म्स रिलीज हुईं, जैसे कि मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरा नाम जोकर, जीवन मृत्यु, सफर, आपकी कसम, लोफर, प्रतिज्ञा, कभी कभी, मुकद्दर का सिकंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, यादों की बारात, डॉन, शोले, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म्स। ये वो फिल्में थीं जिनकी स्क्रीनिंग सालों तक चलती रहीं और जिनका संगीत आज तक अमर है। चलिए आज उसी दौर के कुछ यादगार नगमे सुनते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 1970 की एक फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर थीं। इस फिल्म का झूमता संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं अनिल जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु से है, जिसमें धर्मेंद्र और राखी थी। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का प्यार भरा गीत सुनते हैं डॉक्टर आदेश और डॉक्टर करुणा जी की मधुर आवाज में।

अब जो गीत आप सुनेंगे वो 1970 की एक सुपरहिट फिल्म सफर से है, जिसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर थी। इस फिल्म का मदभरा संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और खूबसूरत गीत लिखे इंदिवर जी ने। असित सेन को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। आइए इसी फिल्म का एक मदभरा गीत सुनते हैं विद्या जी और विश्वजीत जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म लोफर से, जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज थीं। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। आइए इसी फिल्म का ये खूबसूरत गीत सुनते हैं मुकेश गुलानी और किशोर जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूबसूरत प्रस्तुति थी। फिल्म लोफर के गीत और संगीत बेहद मस्ती भरे थे, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का जादू भरा हुआ था। आइए इसी फिल्म का एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं गायत्री जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या समा बांध दिया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1974 की एक और सुपरहिट फिल्म आपकी कसम से, जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज थीं। इस फिल्म का झूमता हुआ संगीत दिया आरडी बर्मन जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म का संगीत उस साल का बिना का गीतमाला की सरताज गीतों में भी था। आइए इसी फिल्म का एक मजेदार गीत सुनते हैं किरण नाडकर्णी और श्वेता सम्बा सिवन जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थी। इस फिल्म का मस्ती भरा संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे आनंद बख्शी जी ने। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी जी ये गाना गाते हुए नाच रहे थे और धर्म जी को बोले कि मैंने अपना काम कर दिया भाई, अब आगे आपका काम। इसी फिल्म से धर्म जी को उनका सिग्नेचर स्टेप भी मिला। आइए इसी फिल्म का ये मस्ती भरा गीत सुनते हैं संजय हारने और संजीव जी की मधुर आवाज में।

क्या शानदार प्रस्तुति थी। आइए अगला गीत सुनते हैं 1976 की मशहूर मल्टी स्टार सुपरहिट फिल्म कभी कभी से, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, ऋषि कपूर और नीतू सिंह थीं। इस फिल्म का शानदार संगीत दिया खय्याम जी ने और गीत लिखे साहिर लुधियानवी जी ने, जो आज तक गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म को फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड भी मिला। आइए इस फिल्म का एक गीत सुनते हैं मेरी और वरुण जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1976 की फिल्म नागिन से, जिसमें सुनील दत्त और रीना रॉय थीं। इस फिल्म का संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे वर्मा मलिक जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं तनुजा मुंद्रा और संजय गुप्ता जी की मधुर आवाज में।

वाह, क्या खूब गीत पेश किया। आइए अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा और राखी थीं। इस फिल्म का बेहद खूबसूरत संगीत दिया कल्याण जी और आनंद जी ने और गीत लिखे अनजान ने। आइए इसी फिल्म का ये शानदार गीत सुनते हैं संगीता जी और कविता जी की मधुर आवाज में।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। अगला गीत सुनते हैं 1978 की एक और सुपरहिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थी। इस फिल्म का बेहद मशहूर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं इंदिरा जी की मधुर आवाज में।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और गीत हम चलते चलते गाते हैं, जिंदगी के साथ गाते हैं और हर मोड़ पे गाते हैं। गीतों का ये कारवां लेके आई हैं हमारे साथ अचुरानू 16 हमेशा की तरह है। हर रविवार को नए एपिसोड के साथ आप सुनते हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। तो आइए चलते हैं अचुरानू 16 के साथ। आज पहली बार आए हैं इस मंच पर आदित्य गोयल। आपकी आवाज आपकी पहचान, अचुरानू और आदित्य गोयल की आवाज में ये सुरीला सॉन्ग। तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।

ना जमीन ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी, और चलने का नाम ही तो जिंदगी है, और इसी जिंदगी को हम गीतों के साथ गाते हैं और आपसे बतियाते हैं। तभी किसी ने कहा है जिंदगी प्यार का नगमा है, किसी ने कहा है जिंदगी तो जिंदगी है क्या आखिर ये जिंदगी। इतने गीतों में सुनने के बाद भी जिंदगी सच में प्यार का ही गीत तो है, बस इसे एक पल ठहर के समझने की जरूरत है। अचुरानों के साथ आ गए हैं देवर।

जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। देवऋतु अपनी आवाज दे रहे थे इस सुरीले सॉन्ग में, अर्चुरानू 16 के साथ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, और हम मंजिलों के मुसाफिर। आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा के इस मंच पर हमारे संग है जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानू 16। और अभी जो गीत आपने सुना उसमें अर्चुरानू 16 का साथ दे रहे थे झुमरू। और अब आ गए हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में गीत बन के राजेश काला। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, वादे नहीं भूलेंगे कसमें नहीं तोड़ेंगे, बहुत ही वियोग श्रृंगार का ये सुरीला सॉन्ग हमेशा गाया जाता रहा है और आज हमने भी इस गीत को आपको सुनवाने के लिए राजेश जी को और अर्चुरानू 16 को बुलाया है। आप सुनिए इस गीत को और बताइए कैसा लगा आपको।

राजेश काला साथ दे रहे थे इस गीत में अर्चुरानो 16 का, और अब सिंग फॉर पीस अर्चुरानो के संग।

आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। सिंग फॉर पीस को अर्चुरानु 16 के साथ सुनने के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में विजय ताना और अर्चुरानु 16 का ये सुरीला गीत। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मन

पार्ट आपने सुना और अब आगे हैं इस मंच के मेल सिंगर अनुराग सिन्हा। किशोरदा के कुछ सुरीले गीत लेके इस मंच पर मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। मैं अब सुनते हैं अनुराग की आवाज में ये सुरीले सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। और इस प्रोग्राम में इस मंच पर हम आमंत्रित करते हैं हमारे उन श्रोताओं को और उन सिंगर्स को जो गाना चाहते हैं इस मंच पर। जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चुरानो 16 और अनुराग के साथ आज इस मंच पर किशोरदा को अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे मंच के मेल सिंगर अनुराग। आपकी आवाज

आवाज आपकी पहचान का ये मंच, और इस मंच पर हम हर रविवार आपको सुनवाते हैं एक नया एपिसोड।

और अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, ख्वाब के सिलसिले और सिलसिले से आगे बढ़ के अगले गीत में यही कह रही हैं अनुराग। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, और इस मंच के मेल सिंगर अनुराग आ गए हैं वियोग श्रृंगार का ये सुरीला गीत। जिंदगी की बात है और जिंदगी से शुरुआत है, और जिंदगी हमें कहां कहां ले जाती है, यही जिंदगी की पहचान है।

आज के इस प्रोग्राम को आप रिवर्स मोड में सुन सकते हैं, क्योंकि किसी अजनबी से पहले मुलाकात होती है और फिर न जाने क्या क्या बात होती है, और उन्हीं बातों से सिलसिले चलते हैं, और कहीं हम कसमें खाते हैं, कहीं वादे करते हैं, और कहीं कहते हैं कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। लेकिन ये मुलाकात भी तो एक सिलसिला है जिसे न जाने किसने शुरू किया और कब इसका समापन होगा।

अनुराग बता रहे थे एक अजनबी हसीना से मुलाकात, और मुलाकात के बाद में जो वादें जो कस्में हुई उनके बारे में। आपने सुना प्रोग्राम मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। हमने इस प्रोग्राम का ये शीर्षक इसीलिए लिखा है और इसीलिए रखा है कि आप गीत बन के इस मंच पर आ सकते हैं, आवाज में आवाज मिला सकते हैं। और हमारे संग दो सिंगर हैं, अर्चुरानु 16 और अनुराग। यदि आप मेल सिंगर के साथ गाना चाहते हैं तब भी, और यदि आप फीमेल सिंगर के साथ गाना चाहते हैं तब भी आप का सादर वंदन है, अभिनंदन है। इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सभी का सादर अभिनंदन। आज का ये सुरीला सफर हम यहीं संपन्न करते हैं, और अर्चुरानु 16 और अनुराग को कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज आपकी पहचान। अनुमति दें, नमस्कार।

बढ़कर एक मशहूर पार्श्व गायक हो गए हैं, जैसे कि किशोरदा, रफी साहब, लता जी, आशा जी वगैरह। हर एक पार्श्व गायक ने हजारों की संख्या में गीत गाए हैं, मगर मुकेश जी ने सिर्फ 1500 से 1800 गीत गाए हैं। परंतु इनमें से ज्यादातर गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। इस प्रकार देखें तो मुकेश जी के गानों की सफलता की औसतन बाकी के सभी कलाकारों से ज्यादा थी। आइए दोस्तों, कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खुद को एक ख्वाब समझकर अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार कर रहे नायक की मनोदशा को उजागर करता ये गीत फिल्म हिमालय की गोद से है, जिसे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सवारा है तथा गीतकार कमर जलालाबादी ने इसे शब्द दे दिया है। हमारे बीच ये गीत प्रस्तुत कर रही है अहमदाबाद गुजरात की एक उभरती हुई बेहतरीन कलाकारा श्रीमती दीपाली डाकवाला। तो आइए दीपाली जी की मधुर आवाज में सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुकेश जी के सारे गाने जब गाना बज रहा हो तब साथ में गुनगुनाना बहुत आसान है, परंतु उसे सही अंदाज में एक गायक की हैसियत से गाने का जब हम प्रयास करें तब बहुत ही कठिन है, और तभी ही हमें उनकी गायकी की गहराई का एहसास होता है। शायद इसीलिए ही रफी साहब के बाद शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज तथा किशोरदा के बाद कुमार सानू और अभिजीत जैसे गायक उनके विकल्प बने, परंतु मुकेश जी का विकल्प कोई नहीं बन पाया। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरा नाम जॉकर से लिया गया है। इस गाने को संगीतकार शंकर जयकिशन ने संगीत से संवारा है तथा गीतकार हसरत जयपुरी ने अपनी कलम के कसब से सजाया है। इस गाने को अहमदाबाद गुजरात के एक उत्तम कलाकार श्रीमान पंकज भाई शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुकेश जी अपने दर्द भरी गायकी के लिए बहुत प्रचलित थे। मानो कि दर्द और मुकेश जी दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। ऐसा ही एक दर्द भरा गाना अपने अनोखे अंदाज में लेकर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से एक अनोखी और एक विशिष्ट कलाकारा श्रीमती अवनी संघवी। फिल्म माय लव के इस गाने का संगीत संगीतकार दान सिंह ने दिया है। गीतकार आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए इस गीत के बोल है वो तेरे प्यार का गम। तो आइए अवनी जी की आवाज में सुनते हैं मुकेश जी का ये दर्द भरा गीत।

मुकेश जी एक उम्दा इंसान और उत्तम व्यक्तित्व के मालिक थे। एक बार फिल्म विश्वास का एक गाना जिसके बोल थे, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया का शूटिंग होना था। हीरो हीरोइन की डेट तय हो गई थी, मगर मुकेश जी के विदेश प्रवास के कारण गाना रिकॉर्ड होके तैयार नहीं था। फिल्म की शूटिंग का समय बर्बाद ना हो, इसीलिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने सिर्फ शूटिंग के लिए ये गाना गुजरात से आए हुए नए उभरते कलाकार मनहर उदास जी के आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। उनकी सोच ये थी कि मुकेश जी के आने के बाद ये गाना फिर से उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवा लेंगे और फिल्म में ले लेंगे। किंतु मुकेश जी की महानता देखें, उन्होंने ये गीत सुनकर कहा कि इस लड़के ने तो बहुत अच्छा गाया है, अब दोबारा मेरी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण हमें मनहर उदास जैसे प्रसिद्ध और मशहूर पार्श्व गायक मिले। अगला जो गीत है वो फिल्म सफर से लिया गया है। गीतकार इंदिवर द्वारा लिखे गए इस गीत का संगीत संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने दिया है और इसे हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे अहमदाबाद के ही श्रीमान प्रकाश गोहिल।

दोस्तों, एक गुजराती होने के नाते मुझे इस बात का सदा गौरव रहेगा कि मुकेश जी हमारे गुजरात के दामाद थे। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत जो है वो इस कार्यक्रम का एकमात्र युगल गीत है जिसे हमने फिल्म शोर से लिया है। लता जी और मुकेश जी द्वारा गाया गया इस गीत को गीतकार संतोष आनंद ने शब्द दे दिया है तथा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से इसे सजाया है। इस गाने के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को यहां श्रीमती कल्याणी परिख और मैं चिराग सेठ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म शोर का ये युगल गीत।

0: नमस्कार बहनों और भाइयों, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान कार्यक्रम में मैं हूं चिराग शेर। दोस्तों, बतौर रेडियो उद्घोषक ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम और मेरा अंदाज पसंद आएगा। आज का ये कार्यक्रम हमने विशेष रूप से मशहूर पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर जी को समर्पित किया है। मुझे यह मौका देने के लिए मैं जयपुर रेडियो के व्यास साहब और अहमदाबाद के रेडियो उद्घोषक पल्लवीबेन आचार्य का विशेष रूप से आभारी हूं। दोस्तों, चलचित्र उद्योग में एक से बढ़कर एक मशहूर पार्श्व गायक हो गए हैं, जैसे कि किशोरदा, रफी साहब, लता जी, आशा जी वगैरह। हर एक पार्श्व गायक ने हजारों की संख्या में गीत गाए हैं, मगर मुकेश जी ने सिर्फ 1500 से 1800 गीत गाए हैं। परंतु इनमें से ज्यादातर गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। इस प्रकार देखें तो मुकेश जी के गानों की सफलता की औसतन बाकी के सभी कलाकारों से ज्यादा थी। आइए दोस्तों, कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
1: खुद को एक ख्वाब समझकर
0: अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार कर रहे नायक की मनोदशा को उजागर करता ये गीत फिल्म हिमालय की गोद से है, जिसे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सवारा है तथा गीतकार कमर जलालाबादी ने इसे शब्द दे दिया है। हमारे बीच ये गीत प्रस्तुत कर रही है अहमदाबाद गुजरात की एक उभरती हुई बेहतरीन कलाकारा श्रीमती दीपाली डाकवाला। तो आइए दीपाली जी की मधुर आवाज में सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुकेश जी के सारे गाने जब गाना बज रहा हो तब साथ में गुनगुनाना बहुत आसान है, परंतु उसे सही अंदाज में एक गायक की हैसियत से गाने का जब हम प्रयास करें तब बहुत ही कठिन है, और तभी ही हमें उनकी गायकी की गहराई का एहसास होता है। शायद इसीलिए ही रफी साहब के बाद शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज तथा किशोरदा के बाद कुमार सानू और अभिजीत जैसे गायक उनके विकल्प बने, परंतु मुकेश जी का विकल्प कोई नहीं बन पाया। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरा नाम जॉकर से लिया गया है। इस गाने को संगीतकार शंकर जयकिशन ने संगीत से संवारा है तथा गीतकार हसरत जयपुरी ने अपनी कलम के कसब से सजाया है। इस गाने को अहमदाबाद गुजरात के एक उत्तम कलाकार श्रीमान पंकज भाई शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुकेश जी अपने दर्द भरी गायकी के लिए बहुत प्रचलित थे। मानो कि दर्द और मुकेश जी दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। ऐसा ही एक दर्द भरा गाना अपने अनोखे अंदाज में लेकर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से एक अनोखी और एक विशिष्ट कलाकारा श्रीमती अवनी संघवी। फिल्म माय लव के इस गाने का संगीत संगीतकार दान सिंह ने दिया है। गीतकार आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए इस गीत के बोल है वो तेरे प्यार का गम। तो आइए अवनी जी की आवाज में सुनते हैं मुकेश जी का ये दर्द भरा गीत।

मुकेश जी एक उम्दा इंसान और उत्तम व्यक्तित्व के मालिक थे। एक बार फिल्म विश्वास का एक गाना जिसके बोल थे, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया का शूटिंग होना था। हीरो हीरोइन की डेट तय हो गई थी, मगर मुकेश जी के विदेश प्रवास के कारण गाना रिकॉर्ड होके तैयार नहीं था। फिल्म की शूटिंग का समय बर्बाद ना हो इसीलिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने सिर्फ शूटिंग के लिए ये गाना गुजरात से आए हुए नए उभरते कलाकार मनहर उदास जी के आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। उनकी सोच ये थी कि मुकेश जी के आने के बाद ये गाना फिर से उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवा लेंगे और फिल्म में ले लेंगे। किंतु मुकेश जी की महानता देखें, उन्होंने ये गीत सुनकर कहा कि इस लड़के ने तो बहुत अच्छा गाया है, अब दोबारा मेरी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण हमें मनहर उदास जैसे प्रसिद्ध और मशहूर पार्श्व गायक मिले। अगला जो गीत है वो फिल्म सफर से लिया गया है। गीतकार इंदिवर द्वारा लिखे गए इस गीत का संगीत संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने दिया है और इसे हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे अहमदाबाद के ही श्रीमान प्रकाश गोहिल।

दोस्तों, एक गुजराती होने के नाते मुझे इस बात का सदा गौरव रहेगा कि मुकेश जी हमारे गुजरात के दामाद थे। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत जो है वो इस कार्यक्रम का एकमात्र युगल गीत है जिसे हमने फिल्म शोर से लिया है। लता जी और मुकेश जी द्वारा गाया गया इस गीत को गीतकार संतोष आनंद ने शब्द दे दिया है तथा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से इसे सजाया है। इस गाने के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को यहाँ श्रीमती कल्याणी परिख और मैं चिराग सेठ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म शोर का ये युगल गीत।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, और इस प्रोग्राम को हम फिर से सुनवाएंगे आपको। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, सुरीले गीत के साथ इस प्रोग्राम को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अभी इसी वक्त। जिन लोगों ने बाद में सुनना शुरू किया है उनके लिए

नमस्कार बहनों और भाइयों, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान कार्यक्रम में मैं हूं चिराग सेठ। दोस्तों, बतौर रेडियो उद्घोषक ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम और मेरा अंदाज पसंद आएगा। आज का ये कार्यक्रम हमने विशेष रूप से मशहूर पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर जी को समर्पित किया है। मुझे यह मौका देने के लिए मैं जयपुर रेडियो के व्यास साहब और अहमदाबाद के रेडियो उद्घोषक पल्लवीबेन आचार्य का विशेष रूप से आभारी हूं। दोस्तों, चलचित्र उद्योग में एक से बढ़कर एक मशहूर पार्श्व गायक हो गए हैं, जैसे कि किशोरदा, रफी साहब, लता जी, आशा जी वगैरह। हर एक पार्श्व गायक ने हजारों की संख्या में गीत गाए हैं, मगर मुकेश जी ने सिर्फ 1500 से 1800 गीत गाए हैं। परंतु इनमें से ज्यादातर गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। इस प्रकार देखे तो मुकेश जी के गानों की सफलता की औसतन बाकी के सभी कलाकारों से ज्यादा थी। आइए दोस्तों, कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खुद को एक ख्वाब समझकर अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार कर रहे नायक की मनोदशा को उजागर करता ये गीत फिल्म हिमालय की गोद से है, जिसे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सवारा है तथा गीतकार कमर जलालाबादी ने इसे शब्द दे दिया है। हमारे बीच ये गीत प्रस्तुत कर रही है अहमदाबाद गुजरात की एक उभरती हुई बेहतरीन कलाकारा श्रीमती दीपाली डाकवाला। तो आइए दीपाली जी की मधुर आवाज में सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुकेश जी के सारे गाने जब गाना बज रहा हो तब साथ में गुनगुनाना बहुत आसान है, परंतु उसे सही अंदाज में एक गायक की हैसियत से गाने का जब हम प्रयास करें तब बहुत ही कठिन है, और तभी ही हमें उनकी गायकी की गहराई का एहसास होता है। शायद इसीलिए ही रफी साहब के बाद शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज तथा किशोरदा के बाद कुमार सानू और अभिजीत जैसे गायक उनके विकल्प बने, परंतु मुकेश जी का विकल्प कोई नहीं बन पाया। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरा नाम जॉकर से लिया गया है। इस गाने को संगीतकार शंकर जयकिशन ने संगीत से संवारा है तथा गीतकार हसरत जयपुरी ने अपनी कलम के कसब से सजाया है। इस गाने को अहमदाबाद गुजरात के एक उत्तम कलाकार श्रीमान पंकज भाई शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुकेश जी अपने दर्द भरी गायकी के लिए बहुत प्रचलित थे। मानो कि दर्द और मुकेश जी दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। ऐसा ही एक दर्द भरा गाना अपने अनोखे अंदाज में लेकर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से एक अनोखी और एक विशिष्ट कलाकारा श्रीमती अवनी संघवी। फिल्म माय लव के इस गाने का संगीत संगीतकार दान सिंह ने दिया है। गीतकार आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए इस गीत के बोल है वो तेरे प्यार का गम। तो आइए अवनी जी की आवाज में सुनते हैं मुकेश जी का ये दर्द भरा गीत।

0: मुकेश जी एक उम्दा इंसान और उत्तम व्यक्तित्व के मालिक थे।
1: एक बार फिल्म
0: विश्वास का एक गाना जिसके बोल थे, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया का शूटिंग होना था। हीरो हीरोइन की डेट तय हो गई थी, मगर मुकेश जी के विदेश प्रवास के कारण गाना रिकॉर्ड होके तैयार नहीं था। फिल्म की शूटिंग का समय बर्बाद ना हो इसलिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने सिर्फ शूटिंग के लिए ये गाना गुजरात से आए हुए नए उभरते कलाकार मनहर उदास जी के आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। उनकी सोच ये थी कि मुकेश जी के आने के बाद ये गाना फिर से उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवा लेंगे और फिल्म में ले लेंगे। किंतु मुकेश जी की महानता देखें, उन्होंने ये गीत सुनकर कहा कि इस लड़के ने तो बहुत अच्छा गाया है, अब दोबारा मेरी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण हमें मनहर उदास जैसे प्रसिद्ध और मशहूर पार्श्व गायक मिले। अगला जो गीत है वो फिल्म सफर से लिया गया है। गीतकार इंदिवर द्वारा लिखे गए इस गीत का संगीत संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने दिया है और इसे हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे अहमदाबाद के ही श्रीमान प्रकाश गोहिल।

0: दोस्तों,
1: एक गुजराती होने के नाते
0: मुझे इस बात का सदा गौरव रहेगा कि मुकेश जी हमारे गुजरात के दामाद थे। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत जो है वो इस कार्यक्रम का एकमात्र युगल गीत है जिसे हमने फिल्म शोर से लिया है। लता जी और मुकेश जी द्वारा गाया गया इस गीत को गीतकार संतोष आनंद ने शब्द दे दिया है तथा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से इसे सजाया है। इस गाने के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को यहाँ श्रीमती कल्याणी परिक और मैं चिराग सेठ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म शोर का
1: ये युगल गीत।

नमस्कार बहनों और भाइयों, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो है। आपकी आवाज आपकी पहचान कार्यक्रम में मैं हूं चिराग शेर। दोस्तों, बतौर रेडियो उद्घोषक ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आशा करता हूं आपको ये कार्यक्रम और मेरा अंदाज पसंद आएगा। आज का ये कार्यक्रम हमने विशेष रूप से मशहूर पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर जी को समर्पित किया है। मुझे यह मौका देने के लिए मैं जयपुर रेडियो के व्यास साहब और अहमदाबाद के रेडियो उद्घोषक पल्लवीबेन आचार्य का विशेष रूप से आभारी हूं। दोस्तों, चलचित्र उद्योग में एक से बढ़कर एक मशहूर पार्श्व गायक हो गए हैं, जैसे कि किशोरदा, रफी साहब, लता जी, आशा जी वगैरह। हर एक पार्श्व गायक ने हजारों की संख्या में गीत गाए हैं, मगर मुकेश जी ने सिर्फ 1500 से 1800 गीत गाए हैं। परंतु इनमें से ज्यादातर गाने सुपर डुपर हिट रहे हैं। इस प्रकार देखे तो मुकेश जी के गानों की सफलता की औसतन बाकी के सभी कलाकारों से ज्यादा थी। आइए दोस्तों, कार्यक्रम का श्री गणेश करते हुए कार्यक्रम का पहला गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खुद को एक ख्वाब समझकर अपनी प्रेमिका को अपने प्रेम का इजहार कर रहे नायक की मनोदशा को उजागर करता ये गीत फिल्म हिमालय की गोद से है, जिसे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने संगीत से सवारा है तथा गीतकार कमर जलालाबादी ने इसे शब्द दे दिया है। हमारे बीच ये गीत प्रस्तुत कर रही है अहमदाबाद गुजरात की एक उभरती हुई बेहतरीन कलाकारा श्रीमती दीपाली डाकवाला। तो आइए दीपाली जी की मधुर आवाज में सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में से ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुकेश जी के सारे गाने जब गाना बज रहा हो तब साथ में गुनगुनाना बहुत आसान है, परंतु उसे सही अंदाज में एक गायक की हैसियत से गाने का जब हम प्रयास करें तब बहुत ही कठिन है, और तभी ही हमें उनकी गायकी की गहराई का एहसास होता है। शायद इसीलिए ही रफी साहब के बाद शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज तथा किशोरदा के बाद कुमार सानू और अभिजीत जैसे गायक उनके विकल्प बने, परंतु मुकेश जी का विकल्प कोई नहीं बन पाया। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरा नाम जॉकर से लिया गया है। इस गाने को संगीतकार शंकर जयकिशन ने संगीत से संवारा है तथा गीतकार हसरत जयपुरी ने अपनी कलम के कसब से सजाया है। इस गाने को अहमदाबाद गुजरात के एक उत्तम कलाकार श्रीमान पंकज भाई शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुकेश जी अपने दर्द भरी गायकी के लिए बहुत प्रचलित थे। मानो कि दर्द और मुकेश जी दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। ऐसा ही एक दर्द भरा गाना अपने अनोखे अंदाज में लेकर आ रही है अहमदाबाद गुजरात से एक अनोखी और एक विशिष्ट कलाकारा श्रीमती अवनी संघवी। फिल्म माय लव के इस गाने का संगीत संगीतकार दान सिंह ने दिया है। गीतकार आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए इस गीत के बोल है वो तेरे प्यार का गम। तो आइए अवनी जी की आवाज में सुनते हैं मुकेश जी का ये दर्द भरा गीत।

मुकेश जी एक उम्दा इंसान और उत्तम व्यक्तित्व के मालिक थे। एक बार फिल्म विश्वास का एक गाना जिसके बोल थे, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया का शूटिंग होना था। हीरो हीरोइन की डेट तय हो गई थी, मगर मुकेश जी के विदेश प्रवास के कारण गाना रिकॉर्ड होके तैयार नहीं था। फिल्म की शूटिंग का समय बर्बाद ना हो इसीलिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने सिर्फ शूटिंग के लिए ये गाना गुजरात से आए हुए नए उभरते कलाकार मनहर उदास जी के आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। उनकी सोच ये थी कि मुकेश जी के आने के बाद ये गाना फिर से उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवा लेंगे और फिल्म में ले लेंगे। किंतु मुकेश जी की महानता देखें, उन्होंने ये गीत सुनकर कहा कि इस लड़के ने तो बहुत अच्छा गाया है, अब दोबारा मेरी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी कारण हमें मनहर उदास जैसे प्रसिद्ध और मशहूर पार्श्व गायक मिले। अगला जो गीत है वो फिल्म सफर से लिया गया है। गीतकार इंदिवर द्वारा लिखे गए इस गीत का संगीत संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने दिया है और इसे हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे अहमदाबाद के ही श्रीमान प्रकाश गोहिल।

दोस्तों, एक गुजराती होने के नाते मुझे इस बात का सदा गौरव रहेगा कि मुकेश जी हमारे गुजरात के दामाद थे। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत जो है वो इस कार्यक्रम का एकमात्र युगल गीत है जिसे हमने फिल्म शोर से लिया है। लता जी और मुकेश जी द्वारा गाया गया इस गीत को गीतकार संतोष आनंद ने शब्द दे दिया है तथा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से इसे सजाया है। इस गाने के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को यहाँ श्रीमती कल्याणी परीख और मैं चिराग सेठ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म शोर का ये युगल गीत।

हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि जो सुंदर है, जो शिव है, जो सर्वज्ञ है और जो अनिवर्चनीय है, उसको प्रणाम है, उसको हरि ओम है। और ये सुरीला स्वर आपने सुना इस भजन में, अलका उपाध्याय हमारे संग कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, भक्तिधारा प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगला भजन अलका जी से।

राम का स्वागत कर रही हैं अलका उपाध्याय जयपुर रेडियो के इस मंच पर। और ये भी संगीत का घर है, मेरा ही घर है। और यहाँ राम पधारे हैं, स्वागत है हमारी आज की सिंगर।

और जयपुर रेडियो की चौखट पर चल के आ जाई हैं अलका उपाध्याय अपने सुरीले भजनों के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान, पहली बार अपने भजनों के साथ हमारी सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय। राम जी के स्वागत और अलका जी के स्वागत के बाद अगली प्रस्तुति अलका जी की।

वृंदावन धाम पधारो, वृंदावन का आमंत्रण इस भजन के माध्यम से दे रही थी अलका उपाध्याय, हमारी आज की भक्ति धारा की सुरीली सिंगर अपनी आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का प्रोग्राम भक्ति धारा। आइए सुने अलका उपाध्याय का ये अगला सुरीला भजन।

कहना आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मुझे चाहकर समझ निहार, और मुझे चाहकर समझ निहार। चाहकर का मतलब आप जानते हैं, और चाहकर का मतलब भी, उसका अर्थ भी आप जानते हैं, और दोनों में वो प्रेम है, वो रस है, और उसी रस से सराबोर है ये भजन। अलका जी की आवाज में हमने सुना, आइए सुनते हैं आपका अगला सुरीला भजन, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम जयपुर रेडियो वर्ल्ड से।

मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, अब तो मुझे पहचान। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दे तान। और ये मधुर वचन कह रही थी अलका उपाध्याय, हमारी आज की भक्ति धारा की मेहमान। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम।

कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शंभु, कोटि कोटि नमन दिगंबरा, जो सत्य है, जो सुंदर है, जो शिव है, उसको सदा कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। और ये वंदन अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रही थी अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम। शिव स्तुति के बाद

दुर्गा चालीस का पाठ सुना रही थी अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं भक्ति धारा का ये अगला सोपान। आवाज फिर एक बार हमारी आज की सिंगर

काले ने तो सारी दुनिया को ही घेर लिया है, तो पनघट की बात ही क्या करें। फिर जाइए और फिर पानी लेके आइए। मुरली वाले का तो यही कमाल है, पूरी दुनिया को घेर लिया है उसने और उसी के वश में हैं हम, उसी के वशीकरण में हैं। भक्ति धारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और हमारी भक्ति धारा की सिंगर है आज अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आइए सुनते हैं अगला सुरीला भजन।

मोहन सागर से बेड़ा पार उतारना है तो हमें अलका जी के भजनों को सुनना है और शिव शंकर के ध्यान में मगन होकर यदि हम इसी तरह से गाते रहेंगे तो सच में इस संसार सागर से अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम। हमारी आज की भक्ति गायन की सिंगर हैं, गायिका हैं अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपकी आवाज आपकी।

संगीत के मन मंदिर की, शिव के मन मंदिर की पूजा कर रही थी। इस मंच पर जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, प्रोग्राम भक्ति धारा में आज की सुरीली भक्ति गायिका रही अलका उपाध्याय, अपने सुरीले गीतों के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।

0: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: हम पुराने जमाने के हमारे टाइम चला करते थे रेडियो, अब जमाना इंटरनेट का है, पॉकेट एंड्रॉइड फोन का है और दुनिया भर के ऐप आ गए और तो रेडियो भी अब ऐप में आ चुका है, उसका नाम है जयपुर रेडियो। अरे ऐप डाउनलोड कर लो।
2: दोस्तों कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस एब्सोल्युटली वंडरफुल ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ रॉकिंग रागा विद जयपुर रेडियो स्टेशन। आई एम गुंजा एंड टुडे आई हैव द प्लेजर ऑफ बीइंग योर होस्टेस ऑफ द डे। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में करना चाहूंगी, बल्कि आप सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि हमारा आज का ये खास प्रोग्राम मोहब्बत की चाशनी में भिगोया हुआ है। तो आज की हमारी थीम है मोहब्बत। तो दोस्तों आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई साथी सिंगर्स, एक से बढ़कर एक सिंगर्स, जो हमारे लिए ला रहे हैं प्यार भरे गीतों की माला। तो आइए हमारे इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और हमारे बीच सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे सिंगर्स जोड़ी को, जिनमें ज्योतिर्मयी और मैं गुंजा आपकी दोस्त और आज आपकी होस्ट, हम दोनों आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म बॉर्डर से ये प्यारा सा गीत।

जिंदगी के पन्नों पर लम्हों की लिखावट बहुत कुछ सुनाती है अफसाना दर अफसाना। ऐसे ही अफसानों को तलाशने के लिए आज पलटते हैं एक और नया पन्ना। इस एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा, बातें दिल की विद सुषमा।

0: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। जी हाँ, होती हैं कुछ आवाजें इतनी प्रभावी कि उन्हें सुनते रहने को जी चाहता है। कभी किसी के बोलने का अंदाज हमें भाता है तो कभी किसी के शब्द। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे गेस्ट आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनके करियर ने उन्हें रेडियो का हमराही बना दिया, जहां अपने शब्दों के जादू से वो सुनने वालों को अपना मुरीद बनाते चले गए। हमारे साथ हैं विजय रॉय, जो ताल्लुक जोधपुर से रखते हैं मगर अब द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया यानी इंदौर के वासी हैं। नमस्कार विजय रॉय जी।
1: नमस्कार सुषमा जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज सुनने के बाद और भी मुतमईन हो गई हूँ और खुश हो गई हूँ। और हम सब अब उन गलियों की सैर करना चाहेंगे जहाँ आपका बचपन बीता।
1: जी हाँ, ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे भी उन गलियों की यादें हमेशा सताती रहती हैं, क्योंकि अब वहां पर जाना काफी मुश्किल सा हो गया है। जा ही नहीं पाता हूँ, एक तो उम्र के कारण और एक उन लोगों के कारण जो अब इस दुनिया में नहीं, मेरी माँ जिनके चरण जब छूता था, कमर झुकाता था, कभी मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ, कभी घुटने नहीं दुखे, लेकिन आज घुटने भी दुखते हैं, कमर भी दुखती है, क्योंकि वो माता पिता, वो मेरे बुजुर्ग अब मेरे साथ नहीं
0: जी।
1: तो पिताजी जो थे वो वैसे तो मूल रूप से जोधपुर के ही निवासी थे, लेकिन व्यापार के सिलसिले में वो कराची चले गए थे उस समय, और वहां पर काफी उन्होंने अच्छा काम किया, बिल्डर थे वो, वहां पर पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन फिर 1947 का वर्ष आया और जो मजबूरी में उन्हें फिर से अपने मातृभूमि जोधपुर ले आया। अच्छा लगा था उनको आना, लेकिन दुख भी था कि जो कुछ कमाया था सब कुछ वहीं छूट गया और खाली के हाथ वापस आ गए। उनकी शिकायतें तो अक्सर नहीं रहती थी, लेकिन माता हमारी वो हमेशा शिकायत करती थी और उन लोगों को कोसती थी जिनको आज पूजा जाता है। खैर, समय का

0: है ये तो बात। दुख और सुख, एक देखा जाए तो दुख जो है अक्सर खो-खो के खिलाड़ी की तरह होते हैं, एक तभी अपना स्थान छोड़ता है जब उसका स्थान लेने के लिए दूसरा तैयार रहता है। तो जोधपुर जो मेरे 5 वर्ष थे शुरुआत के, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कट गए थे।
1: अच्छा
0: जी हाँ, उस समय की कोई बात मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसके बाद से मेरा पूरा जो 24 वर्ष में जोधपुर में रहा अपने शुरुआती, वो 24 वर्ष सरदारपुरा एक जगह है, उनकी अलग अलग गलियों में मेरा समय कटा, क्योंकि समय समय पर मकान बदलते रहते थे और इस कारण से उन गलियों से बहुत अच्छा परिचय हो गया, वहां के बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो गया, और खेल ऐसे खेलते थे जो आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते।
1: जी
0: जी हाँ, कंचे खेलना, नीम के पेड़ों पर चढ़ना और निबोलियां खाना, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती थी टेकरियां, उन पर घूमना करना, ऐसा लगता था कि क्या बात है। और शायद यही कारण था कि दौड़ भाग हमेशा लगी रहती थी और कभी भी हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे। उस समय सुषमा जी जो निबोलियां खाते थे, है ना,
1: जी
0: लगता है कि शायद उन्हीं का कारण है कि शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट तक कभी बीमार नहीं पड़ा।
1: जी
0: हाँ, जैसा कहते हैं कि नीम खाना चाहिए, नीम के पत्ते अच्छे होते हैं, तो शायद एक कारण वो हो सकता है। और खाने के समय जब होता था कि बाहर खेल रहे हैं, खेलते खेलते घर में आए, रोटी उठाई, सब्जी उसके अंदर डाली, रोल बनाया और खा लिया, कहाँ हाथ धोना और कहाँ पैर धोना कुछ। जी हाँ, आजकल जो बिल्कुल बातें हो गई हैं कि हर बात में कि पहले हाथ धो लो, पर खैर आज की बात बिल्कुल ही अलग है। उस समय इम्यूनिटी जो थी बच्चों की बहुत अच्छी थी और बीमारी कम होती थी, लेकिन आजकल जो सब कुछ आजकल चल रहा है, केमिकल्स का बाजार, उसके कारण बच्चे जो हैं वो बहुत ही बीमार पड़ने लग गए हैं, और ऐसा लगता है कि इनके पास खेलने के लिए अब कुछ नहीं बचा, बस एक
1: जी
0: मोबाइल है और उस मोबाइल ने सबको अपने से दूर कर दिया है।
1: बिल्कुल
0: हमारा मकान भी जो था कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मकान था, लेकिन लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, और वो जो परिवार का सुख होता है साथ में खाना खाने का, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: बिल्कुल। और इतनी देर से मैं आपकी ये खाने की बात को सुन रही हूँ, मुझे लगता है ये जोधपुर का असर है, क्योंकि जोधपुर में मिठाई और कचौरी और वो मिर्ची बड़ा, इनकी इतनी तारीफें सुनी है हमने।
0: आप कभी आई नहीं जोधपुर?
1: जी बिल्कुल, मैं गई हूँ जोधपुर और ये सब चीजों का जायका मैंने लिया है। तो खाने की बात से निकल के मैं आपके करियर के उस पॉइंट पे पहुंचना चाहती हूँ जहाँ आपको माइक्रोफोन से लगाव हुआ। तो ये लगाव की कहानी कैसे शुरू हुई?
0: सुषमा जी, मैं बताऊं, मेरे जीवन में कुछ भी सामान्य रूप से नहीं हुआ, हर कुछ
1: अच्छा
0: हुआ। जो माइक्रोफोन की बात है, जहां तक, ये भी बड़ी विचित्र रूप से मेरे जीवन में शामिल हुई है, क्योंकि हम 4-5 लोग अपने जो मित्र थे वो घूमने के लिए, वहां का एक जगह है कायलाना, वहां पर गए हुए थे और वहां पर ट्रांजिस्टर चल रहा था और उसमें गानों के बीच में एक उद्घोषणा हुई कि आकाशवाणी जोधपुर को आकस्मिक उद्घोषकों की आवश्यकता है। बड़ा अजीब लगा कि उद्घोषक कौन होते हैं और आकस्मिक क्या होता है, कुछ ज्ञान ही नहीं था क्योंकि उम्र काफी छोटी थी। खैर, जब हुआ तो ये हुआ कि चलो ग्रेजुएशन तो हो चुका है, क्यों ना हम भी अप्लाई कर दें। तो हम लोग साइकिल पे थे सारे दोस्त, वहां करीब करीब आप मान लीजिए कि करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हमने कायलाना से और आकाशवाणी जोधपुर पहुंचे। वहां पर डरते सहमते अंदर पहुंचे तो मालूम किया कि भाई ये क्या है पोस्ट, तो उन्होंने कहा कि ये अनाउंसर है। तब समझ में आया कि अनाउंसर की पोस्ट है, उद्घोषक क्या होते हैं, उस समय तक ज्ञान नहीं था।
1: जी
0: उस समय फिर वहां पर अप्लाई किया और फिर भूल गए। करीब 5-6 महीने बाद घर पे पत्र आया आकाशवाणी जोधपुर से कि आपका जो वॉइस टेस्ट होना है, आप आ जाइए इस तारीख को। हम चले गए।

0: वॉइस टेस्ट क्या होता है कुछ भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल जानते ही नहीं थे। वहां पर पहुंचे तो उस समय वहां पर आदरणीय मुरली मनोहर मंजुल जी मिले, और मंजुल जी ने सबको बिठाया, बताया कि क्या करना है, इस तरह से वॉइस टेस्ट होगा, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना है। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उस समय कुछ उद्घोषणाएं जो वहां उस समय के अनाउंसर्स थे उनकी सुनाई हमको कि देखिए ये है, ये उद्घोषणा होती है, इस तरह से आपको करना है, जो अच्छा करेगा उसको चुन लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। मेरा भी नंबर आया, 13 सीरियल नंबर था मेरा, और हमने उद्घोषणाएं कर दी और इंतजार कर रहे थे कि कब इसका रिजल्ट आएगा। शाम हो गई, शाम के समय उन्होंने कहा कि अब एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें आप अपना नाम और नंबर देख लीजिएगा। और उस लिस्ट में खुशी की बात थी कि मेरा नाम भी था।
1: वाह
0: जी हाँ, तब से मैं आकाशवाणी जोधपुर में कैजुअल अनाउंसर हो गया 1970 से।
1: तो विजय जी, बीइंग एन अनाउंसर, वाज दैट योर ओरिजिनल करियर चॉइस या कुछ और बनने का सपना देखा था आपने?
0: ये तो मालूम ही नहीं था कि अनाउंसर भी कोई करियर बनाया जा सकता है। मेरा तो शौक था कि मैं वैसे मेरे परिवार में जो है उस समय टीचर्स ही टीचर्स थे, बड़ी बहन भी टीचर, बड़ा भाई भी टीचर, सब कुछ टीचर थे, तो एक ऑप्शन तो यही होता था कि टीचर बन जाए। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा। और इसी कारण से मैंने 9th में जो अब सब्जेक्ट की चॉइस होती है, ऑप्शन लेने होते हैं, उस समय मैंने बायोलॉजी ली और मैंने बीएससी बायोलॉजी में की थी। लेकिन पीएमटी में नंबर नहीं आ सका, क्योंकि शायद ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था कि कहीं और जाना है, कुछ और नाम कमाना है, सिर्फ डॉक्टर में ही सब कुछ नहीं है। तो यहाँ चयन हो गया। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जब ये मेरा रेगुलर अनाउंसर का इंदौर में चयन हुआ, ये भी बड़ी विचित्र बात है। मैं अपना चेक लेने के लिए आकाशवाणी जोधपुर गया था, वहां पर चेक बनने में कुछ समय था, और उस दौरान मैंने जो वहां पर नोटिस बोर्ड होता है उस पर देख रहा था, तो वहां था आकाशवाणी इंदौर का एक विज्ञापन, उसमें उन्हें लिखा कि हमें आकाशवाणी इंदौर में अनाउंसर्स की जरूरत है, और जो डिटेल्स होती हैं उसके बारे में लिखा था। लेकिन जब अंतिम तारीख देखी तो वो वही तारीख थी जो उस दिन थी, मैं पढ़ रहा था, वो अंतिम तारीख थी। लेकिन अजीब सी बात थी कि मैंने अप्लाई कर ही दिया, मैंने उसमें अगर होगा भाग्य में तो हो जाएगा। और इंदौर में ऐसा हुआ कि किसी कारणवश वो जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई
1: जी,
0: और उस एक्सटेंशन के दौरान मेरी जो एप्लीकेशन है वो भी आ गई थी और मुझे शामिल कर लिया।
1: क्या बात है, और वहां से आपका ये दौर शुरू हुआ। तो एक अनाउंसर, वो भी रेडियो पर, तो उस वक्त तो रेडियो का एक अलग ही क्रेज था। कैसा था वो वक्त और कैसी थी आपकी वो यात्रा?
0: मैं बताऊं आपको कि शुरुआत में जब मैं यहाँ आया इंटरव्यू देने के लिए, वो मेरे जन्मदिन का दिन था, 4 जून 1974। और हाँ, उस पूरे बैच में करीब 600 लड़के लड़कियां थी, और कई दिग्गज लोग थे, लेखक थे, कवि थे, सब थे, हम तो सिर्फ कैजुअल अनाउंसर थे। तो उसमें 6 जनों को सेलेक्ट करना था, उन 6 जनों में मैं हुआ, और ईश्वर की कृपा रही कि उस लिस्ट में मैं सबसे नंबर 1 पर था।
1: वाह
0: जी हाँ।
1: तो कैसा था वो वक्त और कैसी थी वो यात्रा? आपको तो बहुत फैन फॉलोइंग उस समय मिली होगी, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था।
0: शायद आपको, आप भी चूंकि इसी फील्ड से हैं और आपको कुछ मालूम होगा, लेकिन हमने जो जीवन जिया है यहाँ पर, वो पूरा जीवन एक क्या कहें, ऐसे इंसान का जिया कि जिसको छूने के लिए लोग तरसते थे, जिनकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल आतुर रहते थे। और हमें लगता था कि फिल्म लाइन के जो कलाकार हैं उनके बाद तो सिर्फ अनाउंसर ही होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी कार्यक्रम करके निकलते थे, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, और जो फोन थे लैंडलाइन फोन, उनसे हमारे ऑफिस के फोन पर इतने कॉल आते थे, आप इनसे बात करा दीजिए, आप इनसे कर दीजिए। और जमघट हर सातवें आठवें दिन आकाशवाणी इंदौर में लग जाता था कि हमें अमुक अनाउंसर से मिलना है, और अगर मिलने तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। तब लगता बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे साथ अभी एक अनाउंसर हैं, अभी जो वर्तमान में अनाउंसर हैं, उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो बोले कि मैं एक बार यहाँ पर आया था और मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, और रॉय साहब आप ड्यूटी पर थे, आप एक प्रोग्राम कर रहे थे, आपने मेरे से हाथ मिलाया और फिर मैंने वो हाथ 3 दिन तक धोया नहीं। तो बोले कि जब मेरी माता जी पूछती थी कि तू सीधे हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा है, उल्टे से खाता है, तो बोले नहीं, वो फिर हाथ धोना पड़ेगा और मैं रॉय साहब से हाथ मिला कर आया हूँ।
1: क्या बात,
0: फेस था रियली, ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कौन से आसमान पर चल रहे हैं।
1: बड़ा अच्छा लगता है उन मेमोरीज में जाना, उस वक्त को याद करना। लेकिन आपने आवाज की दुनिया की जो बात की है, आपने आवाज की दुनिया में अपने हस्ताक्षर करने के बाद और भी कुछ विधाओं में अपना फन आजमाया है, तो क्या विधाएं थी वो जो माइक्रोफोन से जुड़ी हुई थी?
0: माइक्रोफोन से जुड़ी, ठीक है, जो सामान्य कार्य होते हैं एक अनाउंसर के, वो तो करने ही होते हैं, रोजमर्रा के जो ट्रांसमिशन ड्यूटीज रहती हैं। उसके अलावा उस समय यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे हमारे साथ, स्वतंत्र कुमार ओझा, और वो मेरे लोकल गार्जियन हो गए थे। तो उसके कारण मेरा झुकाव ड्रामास की तरफ बहुत अधिक हुआ था। उनके साथ मैंने बहुत सारे ड्रामास किए और झलकियां की, काफी किए, नेशनल लेवल तक वो गए, और उनसे जो खुशी मिलती थी, सही कहूँ कि वो खुशी कभी और नहीं मिल सकी मुझे, क्योंकि उनका जो तरीका था ड्रामास को प्रोड्यूस करने का, वॉइस कल्चर करने का, वो बहुत ही अलग तरीका था। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती कि मैं उनको नकल न करूं, क्यों करूंगा, तो जो ओरिजिनल बंदा है उधर, उसको पूछेंगे लोग या नकलची को पूछेंगे, इसलिए मैंने उनको नकल नहीं की। जी हाँ, लेकिन
1: जी।
0: सीखा बहुत कुछ ठीक। और मेरे को बहुत अच्छी विधा मिली, वो मिली मेरे को कहानी पढ़ने की, कहानी का जो डिलीवरी होती है वो बहुत अच्छी मिली। और हुआ क्या था कि एक बार मैं ड्यूटी कर रहा था, शाम की ड्यूटी विविध भारती पे, और उस समय एक आधा का कार्यक्रम 8:15 सुनो कहानी, उस सुनो कहानी में ओम शिवपुरी एक कहानी पढ़ रहे थे
1: जी।
0: उनका पढ़ने का तरीका था, उसको मैंने गौर से सुना, और सुनने के बाद लगा कि अरे कितना अच्छा पढ़ा इन्होंने, वो कहानी मेरे जहन में कर गई, वो मतलब मैं भूलने की कोशिश कर रहा था काफी समय तक, लेकिन भूल ही नहीं जाती थी, और ओम शिवपुरी का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। तब से वो कहानी पढ़ने का तरीका जो है मैंने डेवलप किया, और वो डेवलप करने के बाद ऐसा लगा कि बस यही है बात जिसमें मुझे आगे जाना है। और सुषमा जी, आप शायद विश्वास न करें, एक बार मैं लाइव कहानी पढ़ रहा था रात के समय, और दो ड्यूटी ऑफिसर्स, एक आकाशवाणी जयपुर से ही आए थे, रमेश खत्री, और एक हमारे यहाँ के थे बिश्नोई, तो वो दोनों कहानी बाहर सुन रहे थे, और जब मैं कहानी पढ़ने के बाद बाहर आया तो वो रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले भाई साहब आपने कहानी ऐसी पढ़ी कि रोना आ गया। तो ये था मेरे जीवन में कि चलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका असर कुछ लोगों पर तो अवश्य हो रहा।
1: बिल्कुल, और जब इन बातों को सोचते हैं और उस असर को देखते हैं तो वाकई हमारे दिल पर भी असर होता है। अब हम आपकी उस विधा की बात जरूर करना चाहेंगे जिसमें आपने बहुत नाम कमाया एज अ कॉमेंटेटर।
0: देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ अचानक हुआ मेरे जीवन में, ये बात है 1978 की, और हमारे यहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर थे मिस्टर केशव पांडे, वो उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के बोला कि क्यों तुमने कभी क्रिकेट खेला है? तो मैंने कहा यस सर, मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हुआ हूँ जोधपुर में। तो बोले वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्री करोगे? मैं चुप हो गया। बोले क्यों नहीं कर सकते क्या? बोले यार तुम अनाउंसर हो और क्रिकेट जानते हो तो कमेंट्री कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, और उस समय मैंने पहली कमेंट्री हमारे इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की, और वो थी इंग्लैंड और रणजी ट्रॉफी विनर बॉम्बे के बीच में मैच हुआ उसकी शुरुआत की। और सुषमा जी आपको और बता दूं बात कि वो जो पहली कमेंट्री थी उसके साथ एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हुई हैं चंद्रा नायडू, आपने
1: जी
0: सुना हो है ना, जिन्हें कहा जाता है कि पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी वो, और मैं हमने साथ में शुरुआत की थी। और वैसे वो कर्नल सी के नायडू की बिटिया थी और क्रिकेट उनके घर में रचा बसा था। लेकिन
1: बिल्कुल
0: हाँ, चूंकि वो अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, लेकिन क्रिकेट की तरफ उन्होंने वैसे बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस कारण से जब हम कमेंट्री करने बैठे तो उनका एक रिक्वेस्ट आई कि विजय मेरी मदद करोगे। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने जब हम कर रहे थे कमेंट्री, वो एक चार्ट बनाकर ले आई थी और उस चार्ट में पूरा फील्ड था क्रिकेट का, साथ में जो प्लेयर्स थे उनके नाम थे। और उसको देखकर हाँ, मैंने उनकी खूब मदद की और वो जो पहली कमेंट्री करने वाली महिला बनी उसमें शायद थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा।
1: बिल्कुल तो कैसे थे वो दिन कमेंट्री के? कुछ खास यादें उस जर्नी से जुड़ी हुई जैसे आपने अभी बताई?
0: वो ऐसा लगा मुझे उस दिन जब पहली बार मैंने कमेंट्री की कि पता नहीं क्या मैंने किस आकाश पर हूँ, उपलब्धि मैंने क्या हासिल कर ली है। लेकिन धीरे धीरे मालूम किया कि अभी तो मुझे कमेंट्री का ए ही आता है, अभी जेड तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर लगातार मुझे इतने अवसर मिले, इतने अवसर मिले कि मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस समय रणजी ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज होती थी और उन सब की कमेंट्री आकाशवाणी से होती थी। तो
1: जी
0: करीब करीब आप मान लीजिए कि 100 से 150 कमेंट्रीज तो मैंने यही कर ली होंगी इन सभी मैचेस की। एक बार तो मैंने एक कमेंट्री की भीलवाड़ा में जाकर, वहां से आया आकर मैंने फिर इंदौर में कमेंट्री की, इंदौर से फारिग हुआ तो उसके बाद मैं बीकानेर पहुंच गया। तो इस तरह से 3 कमेंट्री लगातार की। और फिर आया 1978 का दिन, जब मैंने 78 में तो मैंने पहली कमेंट्री की, उसके बाद मैंने ओडीआई किया 1997 में, 25 दिसंबर 1997 में, मतलब वनडे इंटरनेशनल, और
1: जी
0: था भारत और श्रीलंका के बीच। आपको शायद याद हो कि वो मैच जो था बहुत आज भी चर्चा में रहता है जब क्रिकेट की बात है, कि वो मैच एबेंडेंड हो गया था और
1: जी
0: एबेंडेंड हुआ था वो विकेट के कारण। ये कहा गया श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरफ से, उनके कप्तान अर्जुन रणतुंगा की तरफ से, कि विकेट जो है अंडर प्रिपेयर्ड है और इसमें मिट्टी उड़ रही है, इसलिए हम इसको मैं नहीं खेलेंगे। पहले तो बड़ा अजीब सा लगा कि पहले जब 3 ओवर हुए तो एक या दो बॉल अवश्य उछली थी, सामान्य ऊंचाई से अधिक गई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस विकेट पर खेला नहीं जा सकता था। उन्होंने भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर से अनुरोध किया कि ये मैच यहाँ नहीं हो सकेगा, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ओवर किया हमारी तरफ से श्रीनाथ ने और सिर्फ 2 या 3 बॉल ऊपर उछली, बाकी तो सामान्य रूप से आ रही थी। फिर इसलिए सचिन तेंदुलकर ने दूसरा तेज गेंदबाज नहीं लगाया, लेकिन चौहान जो थे उनको लगाया, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो वो उन्होंने गेंद की, अच्छी हो रही थी, स्पिन हो रही थी, काफी अच्छी हो रही थी। और तीसरा ओवर जब वापस श्रीनाथ ने किया तो उसके खत्म होते ही अचानक खेल रुक गया और ऐसा लगा कि रुक क्यों गया। मैं
1: जी
0: और भोगले वो अंग्रेजी में कर रहे थे, मैं हिंदी में कर रहा था, तो हमें लगा कि रोक क्यों दिया गया। फिर धीरे धीरे कुछ समाचार आने लगे कि नहीं, ये जो विकेट है ये अंडर प्रिपेयर्ड है, इसलिए इस पे मैच नहीं होगा। और जो पूरा ग्राउंड था वो दर्शकों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अगर ये मैच रोक दिया गया तो कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा। अब उस समय स्थिति को संभालना कमेंटेटर्स के हाथ में था। हम दोनों ने मिलकर उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और लोगों को ये मालूम नहीं होने दिया लंबे समय तक कि वो जो मैच है वो अबेंडेंड हो गया है। और उसके 25 ओवर का मैच खेला जा रहा था और काफी देर बाद हमने लोगों को बताया कि कि ये अब जो मैच है ये सिर्फ सामान्य मैच है और 25 ओवर का खेला जाएगा, और संतुष्ट भी हो गए दर्शक उस समय इससे, और वो मैच 25 ओवर का हुआ। और मजे की बात ये थी कि उस मैच में डेब्यू कर रहे थे ऋषिकेश कानेटकर भारत की तरफ से, लेकिन वो ओडीआई में उस दिन डेब्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो
1: गॉड
0: हुआ नहीं।
1: तो विजय जी, बहुत से खिलाड़ियों से आप, बड़े बड़े नाम जो हैं उनसे मिले आप, कमेंटेटर्स, कमेंट्री की दुनिया में जो बड़े नाम हैं उनसे आप मिले। आपने बताया हर्षा भोगले जी, जो इंग्लिश के एक बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर रहे हैं। इस तरह आपका भी कोई आइडियल रहा होगा जिसकी विशेष क्वालिटी ने आप पर प्रभाव छोड़ा, या आपने कभी किसी को कॉपी तो नहीं किया, बिकॉज ये आप पहले क्लियर कर
0: जी
1: चुके
0: हाँ,
1: कि कॉपी।
0: मैं तो मेरे हमारे शहर के ही है, बहुत ही जाने माने कमेंटेटर सुशील दोषी, पद्मश्री सुशील दोषी है
1: जी
0: ना, वो यहाँ पर कमेंट्री करते थे, और बाद में उनसे मेरी अच्छी मित्रता भी हो गई यहाँ पर आने पर, और उनके साथ भी मैंने कई मैचेस कवर किए थे। लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उनको कम से कम सुनो, क्योंकि अगर कोई किसी व्यक्ति को आप सुनेंगे तो जाने अनजाने अनकॉन्शियसली आपके माइंड में उनकी कुछ बातें, उनके कुछ शब्द, उनकी कोई स्टाइल वो आपके अंदर समा जाएगी और फिर आप उसकी नकल करेंगे। लेकिन मेरा शुरू से ये कहना था कि किसी की नकल करके अगर आपने नाम कमाया तो क्या कमाया। इसलिए मैंने कोशिश ये की कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी रखूं, और वही मैंने पूरे समय पे कोशिश की। हालांकि कई शब्द होते हैं ऐसे जो जाने अनजाने आपकी भाषा में शामिल हो जाते हैं, जो किसी और ने पैदा किए थे। खैर, ऐसा तो जीवन में चलता ही रहता है, और जी हाँ, कुछ न कुछ तो आपके अपने आप ही आ ही जाता है आपके जीवन में। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही कि मैं किसी की नकल ना करूं।
1: और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एपिसोड आपकी कमेंट्री से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें?
0: जी हाँ, एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ था। यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया का ओडीआई मैच था इंदौर में, और पहले तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होते थे, लेकिन उसके बाद होलकर स्टेडियम में होने लगे। तो आकाशवाणी इंदौर से जो अधिकारी थे, कार्यक्रम अधिकारी, वो लोग गए एमपीसीए के पास कि हमें कमेंट्री करनी है आकाशवाणी को, तो हमें एक बॉक्स दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई बॉक्स खाली नहीं है, तो हम नहीं दे सकते, कमेंट्री करें या ना। बड़ी अजीब सी बात हुई, लेकिन काफी उसके बाद पर्सुएशन हुआ, मैं भी गया, और वहां पर जब बात की तो हमें एक ऐसा बॉक्स मिला जो 45 डिग्री पर था, बिल्कुल जो था ग्राउंड का वो दिया गया। अब जहां जब उस पर हम कमेंट्री करने बैठे तो वहां से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट्समैन ने अपना लेग गार्ड कैसे लिया है, गेंदबाज आ रहा है तो गेंद कहाँ से कर रहा है वो, और उसकी गेंद कहाँ जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल हम सिर्फ अंदाज से कमेंट्री करते जा रहे थे। हमें भी बहुत बुरा लग रहा था कि जो वहां पर हैं बैठे हुए लोग, उनको दिख रहा है वो क्या सोचते होंगे हमारी कमेंट्री को सुनकर कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब ये मजबूरी बहुत ही सिरदर्द बन गई, तो हमने फिर वहां के जो एमपीसीए के लोग थे, संजय जगदाले विशेष रूप से, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर और कुछ ना हो सके तो एक आप टीवी मॉनिटर हमारे पास रख दीजिए जिससे देखकर हम कमेंट्री कर सके। तब उन्होंने हमारी जो थी रिक्वेस्ट उसको माना, और वो टीवी आया वहां पर, उसको देखकर फिर हमने कमेंट्री की। वरना अगर वो नहीं आता तो वो शायद जीवन का सबसे बुरा दिन होता हमारा, कि जब हम मुश्किल से कमेंट्री कर पाते, और दुख ये केवल यही रहता कि हमने ढंग से कमेंट्री की नहीं।
1: बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। जब आप लाइव कुछ कर रहे हैं तो एक एक पल जो गुजरता है वो बड़ा मायने रखता है। आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा है, वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तो आप उसे शब्दों में ढाल नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सुषमा जी, मेरी हमेशा जीवन में कोशिश रही, जब भी मैं कमेंट्री करता था तो मैं ये चाहता था कि लोग इसे रेडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि उनको ये लगे कि ये उनको दिख भी रहा है। तो मैं अपनी कमेंट्री में ये पूरी कोशिश करता था कि मैं उनको विजुअलाइज करा दूं पूरा खेल, उनको ये लगे कि हाँ ये गेंद यहाँ से आई इधर गई और जो खिलाड़ी था उसने इस तरह से खेला, अपने दाएं तरफ खेला या बाएं तरफ खेला, और जो फील्डर था उसको कितना भागना पड़ा, अपने किस तरफ से भागना पड़ा, उसने किस तरह से फील्ड किया, गिरकर फील्ड किया या सामान्य रूप से फील्ड कर लिया, कैसे उठा के उसने थ्रो किया। तो ये जीवंत कर देता था मैं बिल्कुल कमेंट्री में। और मुझे अक्सर लोग कहते भी थे कि आप कमेंट्री जो करते हैं उसको हम सुनते नहीं, हम उसको देखते हैं।
1: और एक अच्छे कमेंटेटर का यही रोल होता है। मुझे याद है कि रेडियो की कमेंट्रीज बहुत मायने रखती थी, मतलब लोग उनके पीछे लोगों का क्रेज होता था। खासकर अगर आपने जब शुरुआत में मुरली मनोहर मंजुल जी का नाम लिया, उनकी कमेंट्री में भी आपको सब कुछ दिखाई देता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंजुल जी तो महान कमेंटेटर थे। हालांकि उनके साथ ये था जुड़ावा कि वो साथ में सुंदर कविताएं भी पेश करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि जब थोड़ा सा समय मिल गया है, जब खेल रुक गया है, तो आप कविताओं का आनंद भी ले लीजिए साथ साथ में। और एक जितने नेक दिल इंसान थे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी उन्होंने किया था, तो मैं मन से तो वैसे ही उनके प्रति आभारी था बहुत। और फिर जब वो उनकी कमेंट्री सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था। एक और बात बताऊं, मैं कमेंट्री कर रहा था और मेरा छोटा भाई है वो भी कमेंट्री करता था कुछ समय के लिए उसने की, और मैं इंदौर से कर रहा था और भीलवाड़ा से वो कमेंट्री कर रहा था। तो ये दो भाइयों की एक साथ कमेंट्री उस समय बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को कि दो भाई एक साथ कमेंट्री कर रहे हैं।
1: मतलब वो एक अलग ही रिकॉर्ड था। जी अच्छा विजय जी, एक अनाउंसर के रूप में आपने अपनी भूमिका निभाई है और एक कमेंटेटर के रूप में भी, तो क्या फर्क लगता है आपको? क्या कुछ अलग है? क्या कुछ नया सीखना पड़ता है?
0: सीखना, यह जहां तक अनाउंसर का सवाल है, यहाँ तो सीखने की इतनी बड़ी है कैनवास जो है, बहुत बड़ा कैनवास है। आप सीखते जाइए सीखते जाइए। आज मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सीखने की कोई सीमाएं ही नहीं है अनाउंसर के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतः मैंने देखा है कि जो आजकल के अनाउंसर हैं उनमें सीखने की कोई है ही नहीं, आदत ही नहीं है। उनको लगता है कि बस अनाउंसर बन गए ना, बस ठीक है। लेकिन हम जब थे तब मैं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मिल जाता था और मुझे किसी उर्दू शब्द के ज्ञान नहीं होता था तो मैं उससे पूछता था, हिंदी शब्दों के बारे में हिंदी के जो प्रोफेसर आते थे आकाशवाणी में उनसे सीखता था। तो इस तरह करके जो ज्ञान है हिंदी और अंग्रेजी का या उर्दू का, वो अर्जित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो क्या है कि किसी को अपने भाषा की वर्णमाला ही पूरी नहीं मालूम है ना। तो उच्चारण दोष बहुत हो जाता है आजकल, इतना अधिक होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना उच्चारण दोष है। उर्दू के शब्दों में भी ऐसा ही होता है। तो मेरा तो ये कहना है, मेरे अगर कोई साथी हैं, कि आप भाषा हमेशा सीखते रहिए और ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिसको आता हो, है ना। किसी
1: बिल्कुल सही।
0: हाँ नादान को ना पकड़ लें, किसी अच्छे व्यक्ति से भाषा का ज्ञान लें आप। और
1: बिल्कुल
0: प्रेजेंटेशन का भी है, वो भी इसी तरह से है कि आप किसी प्रोग्राम को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जब तक आप खुद शामिल नहीं हो जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उस प्रोग्राम में जान नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी की तरह का आप प्रोग्राम करेंगे तो वो उसका असर किसी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल अपना समझकर अगर उसको पेश करेंगे तो मान लीजिए कि आपके जो लोग हैं वो आपके पीछे इतने दीवाने हो जाएंगे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुषमा जी, एक और बात बताता हूँ
1: जी
0: मैं बहुत बड़े यहाँ के सिंधी के कहानीकार और उनकी कहानी पढ़ी, और उसके कुछ दिन बाद हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया। और उस समय एक व्यक्ति, बुजुर्ग से व्यक्ति वहां बैठे थे, बोले विजय ये है मिस्टर सो एंड सो, इनकी कहानी आपने पढ़ी? मैंने कहा जी हाँ मैंने पढ़ी। अब मैं मन में सोचूं क्या बात हुई, मुझे क्यों बुलाया। तो बाद में चोपड़ा जी ने उनसे कहा कि ये हैं मिस्टर विजय रॉय जिन्होंने आपकी कहानी पढ़ी। वो बंदा उठा, मुझसे उम्र में करीब करीब 25 से 30 साल बड़ा था, उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने झुककर उन्हें उठाया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, गुनाह हो रहा है ये। तो रोने लगे। वो बोले रॉय साहब मैंने जितनी कहानी लिखी थी अच्छी, उससे अच्छी आपने उसको बना दी। के अचीवमेंट्स बहुत हुए मेरे साथ, मुझे बड़ा मैंने अपने जो एक करियर चुना उस करियर में मैंने कुछ उपलब्धि हासिल की है।
1: बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब आप उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं कि आपने इतना सब कुछ सबकी खुशियों के लिए उनके बीच रखा और उन्होंने उसे स्वीकारा है पूरे दिलो जान से, तो अच्छा लगता है। एक और बात कि आजकल जो वक्त चल रहा है उसको आपने डिस्क्राइब तो किया, फिर भी क्योंकि आजकल आवाज का बहुत महत्व है, शब्दों का बहुत महत्व है, चाहे हम कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, यंग जनरेशन की हम बात करें, बहुत से कामों में उन्होंने अपने आवाज का इस्तेमाल करना होता है, शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, तो अपनी आवाज से जो लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या कुछ जरूरी है उनके लिए जानना और समझना या सीखना?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि आपके आवाज में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आप उसमें ये ना करें कि आप उसको बेस वॉइस बना दें और उस बेस वॉइस को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपकी जो ओरिजिनल आवाज है उसी आवाज में आप बात कीजिए। और सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए कि क्या किस फील्ड का वो व्यक्ति है, हमें उससे किस तरह की बात करनी चाहिए, और वो अगर आपका हासिल होगा तो आप एक अच्छा इंटरव्यू ले पाएंगे। और एक बात जो मैंने के नैयर से सीखी, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि विजय कभी भी कोई इंटरव्यू आप ले रहे हैं और सामने वाला बोल रहा है तो उसे काटिए मत, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो उस समय जो वो बोलना चाह रहा है वो शायद आगे भूल जाए और वो बात हो सकता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हो और आपने सिर्फ अपने जिज्ञासा में अपने एक नए क्वेश्चन को आगे फेंकने के चक्कर में उसका वो जो है सोच वो गायब कर दिया। तो ये चीजें होती हैं कि आपको उस कला का ज्ञान होना चाहिए जिस कला में आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं इंटरव्यू कला में। और अगर कोई प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में आपके क्या भाव हैं, क्या सोच है आपकी, वो जरूर होनी चाहिए। सिर्फ आपने शब्दों को सामान्य रूप से आगे बढ़ा दिया तो वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। कहाँ पर शब्दों पर स्ट्रेस देना है, कहाँ खाली छोड़ना है, कहाँ अपने मनोभावों को उसमें शामिल करना है, ये ज्ञान आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो अगर
1: जी
0: तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे उद्घोषक या कमेंटेटर या अनाउंसर बन सकेंगे।
1: और उसके अलावा भी मैंने जैसे बताया कि शब्दों और आवाज की जरूरत आपको रोज की दिनचर्या जो है आपकी उसमें भी पड़ती है, लोगों से मिलना है, बात करना है, बहुत प्रभावित करती है ये बातें। और जब हम आपकी आवाज सुन रहे हैं तो बस मन लग रहा कर रहा है कि सुनते चले जाए क्योंकि आप इतना दिल से बोल रहे हैं। और वो बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जब तक आपके मनोभाव आपके शब्दों और भाषा के जरिए और आवाज के जरिए प्रकट नहीं होंगे तो सामने वाला उन्हें सुनकर आकर्षित नहीं होगा। तो ओरिजिनल होना और अपने आप को पूरे मनोभाव से उसमें डूब कर करना कोई चीज, वो एक अलग ही शो होता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपके पास शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर होता क्या है सुषमा जी, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं कमेंट्री करता था तो मैं कई शब्द रिपीट करता था, तो मुझे मेरे घर वाले ही बोलते थे कि पापा आप ये बहुत ज्यादा बोलते हो। तो मैंने धीरे धीरे उसमें सुधार किया कि नहीं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, नए नए शब्दों का उपयोग करना चाहिए और किसी और के शब्दों को अपनी भाषा में शामिल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो बहुत जरूरी ना हो।
1: तो ये जो रेपिटेशन है वो आपके प्रेजेंटेशन को एक तरह से खत्म करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। अब आवाज की दुनिया में आपने एक बहुत खूबसूरत सा सफर तय किया है, तो इसलिए जरूर जानना चाहेंगे आपका वो मैसेज जो हम सबके लिए है, आई थिंक हर इंसान के लिए है, क्योंकि बोलना हर एक की जिंदगी में शामिल है।
0: जी हाँ।

0: अधिक आदर आपका होगा, क्योंकि यही कहा जाएगा कि बहुत ही डिग्निफाइड व्यक्ति है ये, और इसको ज्ञान है कि किस तरह से लोगों से बातचीत की जाती है। इसलिए जब भी बोला जाए बहुत सोच के बोला जाए, आपकी भाषा पर आपका कमांड हो, और वो कमांड सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको खुशी दे, वो दूसरों को भी खुशी दे।
1: बहुत खूब। तो आपका ये जो खूबसूरत शब्दों का, भाषा का, आवाज का फलसफा है, ये इसी तरह और बढ़ता रहे आगे और लोगों को आप प्रभावित करते रहें। चाहे आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं, लेकिन आप बांटने को आपके पास बहुत कुछ है। तो आपकी इन बातों को सुनकर वाकई बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय रॉय जी आज हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सुषमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पहल की, और मेरे मन में जो छुपे हुए थे शब्द थे, विचार थे, जो शायद ऐसा मुझे लगता है कि कई समय से मेरे दिल में इधर उधर भटक रहे थे, वो आज आपके द्वारा एकत्रित हुए, और हो सकता है कि आगे वो चलकर किसी न किसी को उसका लाभ अवश्य मिले।
1: बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।

ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर घोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई आवाज़ नई पहचान हम उन सिंगर्स को दे रहे हैं ये नाम जो पहली बार इस मंच पर आ रहे हैं। आज हमारे साथ राजस्थान के नोहर तहसील की और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सुनीता इस मंच पर है। वेलकम है सुनीता, आपका पहली बार इस मंच पर। आप जयपुर रेडियो की प्रोग्राम सुनती हैं और आपका भी मन हुआ कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके गीतों के साथ आपका। नई आवाज़ नई पहचान में हम आज एक ऐसी आवाज़ को लेके आए हैं जो राजस्थान की रहने वाली हैं। राजस्थान में हम कहें तो गंगानगर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक तहसील है नोहर। नोहर राजस्थान से हमारे साथ हैं आज की नई आवाज़ युवा आवाज़ जो आपकी आवाज़ आपकी पहचान बनने वाली है आज इस मंच पर, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जिस प्रोग्राम को आप रोज़ सुनते हैं शाम 6 बजे जयपुर रेडियो से। तो आज हमारे संग हैं सुनीता। सुनीता वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। अपना परिचय दें आप हमारे सभी लिसनर्स को, सुनने वालों को।
1: मैं सुनीता हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने म्यूजिक है वो मतलब बचपन से स्टार्ट कर दिया था
0: जी।
1: और मैंने मेरे पापा से सीखा है म्यूजिक
0: जी।
1: और मैंने म्यूजिक में एमए भी कर रखी है और विशारद भी कर रखी है, और मैं गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रही हूँ अभी।
0: हमारी ओर से ही शुभकामनाएं हैं। तो आप कौन कौन से गाने आपको पसंद है? गजल गाती हैं कि ठुमरी गाती हैं, या फिर दादरा, या फिर फिल्मी बॉलीवुड म्यूजिक, या लोक संगीत, इसमें आपकी क्या अभिरुचि है वो जरा सा इस पे प्रकाश डालिए जरा सा।
1: मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नोहर तहसील में रहती हूँ, और वैसे मैं ऑलराउंड सभी प्रकार के सॉन्ग गाती हूँ, फिल्मी गीत भी गाती हूँ, रागे भी गाती हूँ, ठुमरी भी गाती हूँ, और तालों का भी मुझे नॉलेज है। वैसे मैं 3 ताल में गाती हूँ, दादरा में गाती हूँ, रूपक में गाती हूँ।
0: तो कुछ सुनाएंगे आप अपने, वैसे बिना म्यूजिक के, कोई भी 2 लाइनियाँ?

ऐसा मंजर हो या ना हो, हम श्रोताओं को ज़रूर बताएंगे कि ये मंजर ज़रूर है कि काश नहीं, सच में हमारे साथ हैं सुनीता आज इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। और इस प्रोग्राम को हमने युवा जो सिंगर्स हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो उनका परिचय हो जाए और हमारे दुनिया भर में जो भी युवा गायक हैं उनको हम इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जयपुर रेडियो पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो आज आप सब सुनेंगे सुनीता को। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन आपके गीतों के साथ। आइए सुनते हैं आपका पहला गीत। और अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, पहले पहला गीत तो सुन ले। आवाज सुनीता की हनुमानगढ़ से, हमारे संग युवा सिंगर, नई आवाज नई पहचान लेके। वेलकम, स्वागत, अभिनंदन।

कभी कहा ना किसी से, कभी कहा ना किसी से तुम्हारे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने को। बहुत ही खूबसूरत नॉन फिल्मी गजल हमने सुनी, जी के एल्बम से ली गई ये गजल, और आवाज हमारी युवा सिंगर सुनीता की, हनुमानगढ़ नोहर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगली पेशकश। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले सॉन्ग में सुनीता की आवाज़।

आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई बार पहली बार हमारे संग हमारे साथ हैं सुनीता हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ राजस्थान से सुनीता, युवा कलाकार। अपने खूबसूरत स्वर के साथ, आवाज के साथ वेलकम है, अभिनंदन है आपका इस मंच पर।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और जयपुर रेडियो का साया आपके साथ है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं सुनीता को, प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान के तहत। आपने सुना ये खूबसूरत गीत, और आइए सुनते हैं अगली आवाज़ में सुनीता को एक बार फिर।

क्लासिकल सुपर सुपर डुपर सॉन्ग, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले तो जिंदगी हो जाए सफल। और सुर में सुर मिलाने के लिए आपको जयपुर रेडियो पर आना ज़रूरी है और वहीं आपका सुर और सुर की साधना सही हो सकती है। और इसके लिए हमने एक स्वर साधना प्रोग्राम भी रखा हुआ है जो रोज़ रात 8 बजे आता है और उस पर हमारी जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर आपका साथ देती हैं। तो सुर से सुर मिलाने का ये बहुत सुनहरा अवसर है, हम तो यही कहेंगे। और सुर के साथ शब्दों की साधना भी बहुत ज़रूरी है। शब्द और सुर जब दोनों मिल जाते हैं सुनीता तो बहुत कमाल करते हैं, यानी वो उस ईश्वर, वो जो हमारी साधना का साध्य है, हम उससे मिल जाते हैं, उससे हम एकाकार हो जाते हैं। इसलिए हमें स्वर शब्द और सुर और उसकी साधना की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतना प्रयास कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपके आवाज़ की रोशनी पूरी दुनिया में फैले और आप यूं ही गाती रहें। बस थोड़ा सा आत्मबल और शक्ति की ज़रूरत है। तो बहुत बधाई हमारी ओर से और आइए सुनते हैं आपका अगला खूबसूरत गीत। सुनीता हनुमानगढ़ से हमारे साथ, हनुमानगढ़ राजस्थान।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा इस शाम का लंबी है कि नहीं, हमारे श्रोताओं को भी पता नहीं लगा। और अब हम प्रोग्राम के इस मोड पर आ पहुंचे हैं कि हमें बताना होगा कि आज आपने नई आवाज़ नई पहचान में सुना सुनीता को, नोहर तहसील की रहने वाली हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान से आप बिलोंग करती हैं और पहली बार हमारे इस मंच पर आई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि आपके जो श्रोता हैं जिन्होंने आपके इस प्रोग्राम को सुना और सराहा है, हम उनके नाम भी ले लें। आप हैं केवल कृष्ण शर्मा, गंगानगर राजस्थान से, भट्ट हीना गुजरात से, अनुपमा खुराना दिल्ली से, जय सिंह सीकर से, लोकजीत दास असम से, लक्ष्मी शर्मा मुंबई से, जीना चौधरी हरियाणा से, चित्रा वर्मा, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, सुनील चड्डा पंजाब से, पूजा नाथकर्णी जर्मनी से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, रुक्मणी लालवानी वडोदरा गुजरात से, मंदाकिनी वडोदरा गुजरात से, महेश रावल वडोदरा गुजरात से, विभूति पंचोली वडोदरा गुजरात से, ओम प्रकाश शर्मा जयपुर राजस्थान से, राज गोड मुंबई से, हसीना बानू जयपुर से, संगीता त्यागी बीकानेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, मुस्कान इसरानी जयपुर राजस्थान से, सत्यप्रकाश सिन्हा यूपी से, तेज दान चारण जोधपुर राजस्थान से, राम सिंह यादव जयपुर से, सीमा बजाज दिल्ली से, राजा राम जवर बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से, और श्याम थाडे, आप सबका आभार और धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने आपके प्रोग्राम को सुना है और सराहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ दें हम। और इसके अलावा जिन लोगों ने आपके गीतों को पसंद किया है, हम उनके नाम भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप हैं सुषमा गोदरा, कपिल त्रिवेदी, ओम गायकवाड़, गीता बेन, दीपिका त्रिपाठी, राधे राधे, कोलू परवाज, अनुपमा, नीलेश शाह, आशा रानी, सैयद यूनिस, अब्दुल जमाल, सपना चौहान हिमाचल से, संता राय, मीना प्रकाश दिल्ली से, मजहर यूपी से, सचिन यूपी से, अनीशा बेगम बरेली से, एनडी रटवानी गुजरात से, हिमांशु जोधपुर से, शिवनाथ गौड़ दुबई से, कमलेश साहू छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र कुमार पंजाब से, योगेश सूरती अहमदाबाद से, विक्की जय जय जीवन घोष वेस्ट बंगाल से, ध्यानवंती रेखा भाटी अजमेर राजस्थान से, नेहा रावल, उत्तम सिंह जंघेल, बीना धुरवा, अलीम खान, प्रवीण एमआर व्यास, शिरीश असपी अजमी खान, फैजल मीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, प्रणब नोमेश, जगदीश देवांगन, दोमन ठाकुर, दिलीप विजय, सुरजिता घोष, रघुवंशी, जया बारोट, जयेश बारोट, ज्योति गोमरे, पूनम सिंह बिहार से, सीताराम कागरा और आर के। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइस से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए सबको शामिल करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जिन लोगों के नाम हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे। और बहुत धन्यवाद, बहुत हमारी ओर से बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ कि सुनीता आप इसी तरह गाती रहें और स्वर पथ पर
यूं ही हमारी

बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुनीता नौहर तहसील से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। फिर मिलते हैं एक नई पहचान, नई शख्सियत के साथ, उभरती हुई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। आज हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और इस मंच पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर सीमा फूकन के बर्थडे के स्पेशल प्रोग्राम का।

0: तुम्हारे कहने से पहले ही बोल उठी आवाज, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा फुकन। और हमारे साथ यानी जब रेडियो के संग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, आपके को सिंगर, और अपर्णा अच्युता, उन दोनों की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे सीमा फुकन की सुरीली आवाज में गाए कुछ गीत, और इसी तरह हम सेलिब्रेट करेंगे इस मंच पर हमारे श्रोताओं के साथ सीमा फुकन का बर्थडे। तो एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। असम में मूल रूप से रहने वाली और आजकल जोधपुर में प्रवास करने वाली सीमा फुकन हमारे साथ। वेलकम है सीमा जी आपका, आपकी आवाज आपकी पहचान इस प्रोग्राम में। करते हैं सीमा जी से थोड़ी सी मुलाकात श्रोताओं के साथ।
1: मेरा नाम सीमा फुकन है और मैं भारतवर्ष के सुंदर राज्य असम की निवासी हूँ, लेकिन आजकल राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में रह रही हूँ। संगीत प्रेम मुझे बचपन से है और संगीत मेरा माता पिता की ही देन है। मैंने पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इन्फोएज इंडिया में कई वर्षों तक कंटेंट राइटर का कार्य बखूबी संभाला है। लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हुए काफ़ी वक्त मिला और मुझे एक बार फिर से मौका मिला गीत संगीत की मधुर दुनिया में वापस लौटने का और अपना शौक पूरा करने का। सिंगिंग ऐप के माध्यम से मैंने 2 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की, रोज लाइव सिंगिंग भी कर रही हूँ और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि रेडियो जयपुर के लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर पा रही हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: तो हुजूरे आली, वेलकम है सीमा फुकन का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और जो मन से कोई काम करता है वो 2 साल में रेडियो सिंगर बन सकता है, और ये सिद्ध कर दिया है हमारी आज की कलाकारा सीमा फुकन ने। तो चलते हैं सितारों की संगीत की दुनिया में। आपकी आवाज आपकी पहचान, आज की कलाकार सीमा जोधपुर से।

संगीत का सफर है और हमारे आज के प्रोग्राम की हम सफर हैं सीमा फुकन, मूलतः असम निवासी और आजकल जोधपुर रहती हैं। आज हमारे साथ हैं इस लाइव शो में, जिसका नाम है आज के कलाकार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

की डली में लिपटी स्वीट सी वॉइस, कमाल की प्रस्तुति। सीमा बधाई हो बहुत, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर आज के कलाकार प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं सीमा फूकन, जोधपुर राजस्थान।

कितना सुख है बंधन में, और प्यार भरी बदली बन के बरस रही है जयपुर रेडियो के आंगन में। सीमा फूकन हमारे साथ हैं, आज आपकी आवाज़ आपकी पहचान आप सुन रहे हैं।

स्वर और संगीत के इस गांव में जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान में आज हमारे साथ सीमा फूकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान बेहद खूबसूरत सुरीली आवाज। आपकी आवाज आपकी पहचान सीमा फूकन।

ऐसा समान न होता, कुछ भी यहाँ न होता मेरे हमराई जो तुम न होते। और जयपुर रेडियो की आज की हमराई हैं अपनी शबनमी आवाज़ लिए हमारे संग सीमा फूकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आइए सुनते हैं आपकी आवाज़ में अगला खूबसूरत नगमा। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, सीमा फूकन।

0: वाह, आपने सुना प्रोग्राम आज की कलाकार। हमारी आज की कलाकार रही सीमा फूकन। जयपुर रेडियो की ओर से बहुत शुभकामनाएं आपकी शबनमी मखमली गायकी के लिए। फिर मिलते हैं गीत संगीत की राहों में, आते जाते। सीमा जी, बहुत सारे विशेष हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे लिसनर्स के नाम हैं, हम किस तरह से उनको शामिल करें हमें मालूम नहीं, और वो तरीका भी नहीं आता हमें। दिल्ली से अनुपमा खुराना, गंगानगर से केवल कृष्ण शर्मा, डी के वर्मा बिहार सोपोर से, कामना सिंह बिहार से, चित्रा वर्मा, सोनल पारेख, सुनील चट्टा, पूजा नाटकर्णी जर्मनी से, रुक्मणी लालवानी, विभूति पंचोली, मंदाकिनी शाह, तेज करण गण और अनीता दुगड़ नेपाल से, आपको अपनी ओर से जयपुर रेडियो की सिंगर सीमा फूकन को हैप्पी बर्थडे कह रही है। तो आप तक इन सब की शुभकामनाएं पहुंच गई होंगी, और भी शुभकामनाएं बराबर आ रही हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर सीमा फूकन को, जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर को, आज के दिन की, जन्मदिन की। धन्यवाद।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गए?
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
3: चचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण, जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
6: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता, और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो कि अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। स्टूडियो में स्वागत करती हूँ आज के झिलमिलाते सितारे का, जो कि आए हैं सपनों की नगरी मुंबई से। एक ऐसा जादू है इनकी आवाज में जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। ये हैं मुश्ताक खान उर्फ मुशी। मुशी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुना है कि जब आप अपना गिटार उठाकर इम्प्रॉम्प्ट्यू गाते थे, तो आसपास रहने वाले लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको सुनते थे। तो हमारे सुनने वाले बेताब हैं ये जानने के लिए कि मुशी कौन है?
7: थैंक यू, नमस्कार। जयपुर रेडियो के जितने श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया
6: जी, हमारी
7: और आपने रेडियो के जो दर्शक हैं उनसे रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा, तो हाँ, एक दौर था जब हम गिटार लेके बैठ जाते थे और लोग सुनने की। संगीत एक ऐसी चीज है कि जिससे लोग यूं ही जुड़ जाते हैं
6: जी।
7: आपको कुछ अपने इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बस संगीत आपको अपने आप जोड़ देता है लोगों से।
6: बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुशी, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन है आपके परिवार में?
7: मैं मुंबई से हूँ और मेरा जो म्यूजिक और प्रोफेशन दोनों अलग अलग है। मैं संगीत को भी प्रोफेशनली ही कर रहा हूँ और
6: जी।
7: वैसे बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और वही में ही मेरा प्रैक्टिस है। फैमिली में आई हैव मेरी वाइफ है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है
6: जी।
7: और मेरे दो बेटे हैं, वो भी आर्किटेक्चर में हैं।
6: क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो यानी कि खान एंड खान सन्स की तैयारी है पूरी, आपका जो ये फैमिली बिजनेस बन गया है। तो आपके बेटे भी गाते हैं?
7: एक्चुअली संगीत हमारे घर से खानदान में है पर मेरे बच्चों में नहीं आया। हालांकि मैंने एक बार बड़े बेटे से सुना है गाते हुए, तो मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, पर उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन या हॉबी लिया नहीं।
6: अच्छा अच्छा अच्छा जी। तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं
7: जी। शुक्रिया
6: जी।
7: क्या सुनना चाहेंगे आप मुझसे?
6: जो भी आप अपने दिल की आवाज सुनिए और जो आप सुनाना चाहते हैं वो सुनवाइए।
7: जरूर जरूर।

0: मुंशी संगीत में आपने शिक्षा ली है या यूं ही आपने रुचि के तौर पे अपने सीखा?
1: संगीत की मैंने शिक्षा ली है बकायदा। मैंने एक्चुअली पहले मैं तबला सीखता था,
0: अरे वाह,
1: और जब एक्चुअली पेरेंट्स को जब पता लगा कि बच्चा गाने में रुचि रखता है, तो उन्होंने मुझे एक तबला, हमारे ट्रेनर थे गुरु जो मुझे सिखाने आते थे,
0: जी
1: और हारमोनियम भी मैं उन्हीं से सीखा हूँ।
0: अच्छा, तो क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: मैं होऊंगा अराउंड 8-10 साल, 8-9 साल का उस वक्त।
0: अरे वाह,
1: हाँ, और पेरेंट्स ने मुझे जब नोटिस किया तब मैं 5 साल का था, मैं डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा होकर गाना गा रहा
0: क्या बात है।
1: था। तो एक हादसा है वो भी समझ लीजिए कि, और वहाँ से उन्हें पता लग गया कि बच्चे में रुचि है। तो
0: जी,
1: फिर जब मैं हम मुंबई आ गए, तो यहाँ हमारे ट्रेनर थे जो मुझे तबला सिखाते थे और हारमोनियम भी बताते थे। हाँ,
0: अच्छा, आप शुरुआत से ही मुंबई में नहीं रह रहे, आप मुंबई से पहले कहीं और रहते थे?
1: माई फादर ही इज अ रिटायर्ड कमांडर फ्रॉम नेवी, तो
0: क्या बात है।
1: पोस्टिंग्स होती रहती हैं यहाँ।
0: जी जी जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मेरी स्कूलिंग का टाइम जो था तब मैं मुंबई में था, फिर कॉलेज मैंने ग्वालियर में किया, फिर वापस मुंबई आ गया। ये मेरी
0: अच्छा, तो मुझे आप बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स जैसे कि किशोर जी, रफी साहब, महेंद्र कपूर जी के गीतों को बखूबी निभाते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह के गीतों को आप अपने दिल के करीब मानते हैं और क्यों?
1: बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जब मैं 5 साल की उम्र से गा रहा था, तब किशोर दा बड़े पॉपुलर थे उस वक्त, और हम तो जो रिकॉर्डर होता था उससे सुन के गाना गाते थे या रेडियो को सुन के गाना गाते थे। तो तब किशोर दा के बहुत गाने, राजेश खन्ना, ये बहुत पॉपुलर हीरो होते थे उस वक्त। और
0: जी
1: जैसे हम बड़े हुए तो रफ़ी साहब आ गए, और जब मैं 10th में पहुंचा तो मैं गज़लों की तरफ काफ़ी झुक गया। फिर मैंने गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब, इनके गाने गज़लें, और हुसैन ब्रदर्स, उनकी गज़लें गाना शुरू की, और फिर मैंने खुद की कुछ गज़लें भी कंपोज की।
0: क्या बात है। अच्छा,
1: और ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने करीब 7-8 गाने, मेरे गज़लें मेरी वहाँ पे रिकॉर्ड की। तो
0: अरे वाह, अरे वाह,
1: ये मेरा एक्चुअली स्कूल तक का सफ़र था। इसके बाद फिर मैंने वापस संगीत विद्यालय में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, और फिर लगा कि नहीं, ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं वापस आर्किटेक्चर में आ गया। और तब
0: अच्छा,
1: जाके मैंने दूसरे सिंगर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें काफ़ी लोगों ने तारीफ की कि आप महेंद्र कपूर साहब बहुत अच्छा गाते थे, क्योंकि
0: जी
1: उनकी हाई रेंज काफ़ी रहती है। तो
0: जी
1: फिर मेरा झुकाव उनकी तरफ भी हो गया। और सही बात कहूँ तो मैं उन सब गानों को गाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दिल के करीब लगते हैं। तो मैं सिंगर एज अ स्पेसिफाई करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो
0: जी
1: शायद वो वर्सिटैलिटी कहीं ना कहीं झलकने लग जाती है।

0: जी, और आपकी एक और खासियत है कि आप रेयर सॉन्ग्स गाकर बड़े खुश होते हैं, और आपके जो सह गायक या सह गायिकाएं हैं उनको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी खुशनसीबी है कि एक स्म्यूल ऐप पर जब आप इनफॉर्मली गाते हैं, यूं ही अपने शौक के लिए गाते हैं, तो वहां पर मुझे भी मौका मिला है आपके साथ कभी कभी गाने का, और बहुत सीखा है मैंने आपसे। तो इन दिलचस्प बातों से विराम लेते हैं, और अब क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए ही हुए हैं, तो अपनी मीठी सी आवाज में हमारे सुनने वालों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए।
1: जरूर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा तुम्हारा कि मुझे स्म्यूल ऐप में इतने अच्छे से नोटिस किया, और मेरे जो अतरंगी गाने हैं जो मैं, क्योंकि रेगुलर गाने सब गाते हैं, तो
0: जी
1: उनको आप लोगों ने अच्छे से सुना और गाया भी, तो
0: नहीं, आपसे
1: कोई
0: बहुत कुछ
1: ऐसा ही
0: सीखा है मुझे।
1: शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब क्या कहूँ, इसके तारीफ समझूं या तो कोई एक ऐसा ही गाना आप लोगों को सुनाता हूँ।
0: जी

0: मुशी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत से मेगा म्यूजिकल इवेंट्स करते हैं। आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से प्लेबैक सिंगिंग का भी ऑफर आया। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे से मन से वक्त निकालते हैं। पेशे से, जैसे आपने कहा, आप आर्किटेक्ट हैं, तो इन सब चीजों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: जब संगीत आपकी सिर्फ प्रोफेशन ना हो, आपकी हॉबी भी बन जाए, आपका नशा,
0: जी
1: तो फिर वो वक्त तो निकल ही जाता है। क्योंकि प्रोफेशन के बिना, जो मेरा आर्किटेक्चर जो प्रोफेशन है उसके बिना तो दाल रोटी नहीं चलने वाली, तो मुझे उससे पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है।
0: सही सही
1: फैमिली को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना वो सब नाराज हो जाएंगे। तो
0: जी
1: मेरा जो संगीत का वक्त है वो 12 बजे के बाद शुरू होता है, और
0: जी
1: मैं रिलीजियसली 2 घंटे बैठता हूँ और गाता हूँ। कभी कभी शेड्यूल पे गा देता हूँ, कभी अगर शेड्यूल नहीं गा रहा हूँ तो मैं वैसे ही गुनगुना रहा होता हूँ, पर मैं वो 12 से 2 बजे तक मैं अपना पूरा वक्त संगीत को देता हूँ।
0: तो आप नियम से रियाज भी करते हैं?
1: बिल्कुल, उसको आप यही समझ लीजिए कि,
0: अच्छा, वो
1: क्योंकि
0: रियाज के
1: रियाज
0: तौर पर ही है।
1: के तौर पे मैं कुछ कुछ नए गाने प्रैक्टिस करता हूँ,
0: जी
1: पुराने गाने प्रैक्टिस करता हूँ, उनको सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वापस सुनता हूँ।
0: जी क्योंकि मैंने आपके मन्ना डे साहब के क्लासिकल सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं। आपकी क्लासिकल सॉन्ग्स पर भी उतनी ही बखूबी से पकड़ है जितनी कि आप किशोर जी के नॉर्मल सॉन्ग्स, जो नॉन क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, उनको गाते हैं। तो यहाँ पर हम आपका एक और गीत लेते हैं।
1: जरूर।

0: वह मुंशी, आपके एक एक गीत को सुनकर ऐसे लग रहा है कि हम सुनते ही जाएं। इतना आपने खूबसूरत माहौल बना दिया है सारे स्टूडियो में। तो मैं अब अगला सवाल मेरा ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है, जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो इस वक्त आप जहां पर अपने आप को पाते हैं, आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का दूंगा, क्योंकि मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
0: जी
1: और माय मदर जो थी, उन्होंने मुझे कंपोजिशन कैसे करना है उसके लिए प्रेरित किया काफ़ी।
0: अच्छा
1: वो बोलती थी कि तुम हारमोनियम में इतना गाते हो और गज़ल गाते हो, तो क्यों ना अपनी खुद की एक गज़ल बनाओ और गाओ।
0: बहुत
1: तो वो
0: खूब।
1: पेपर में कुछ कटिंग्स निकाल के मुझे देती थी कि देखो, पहले पेपर में गज़लें आती थी, लोग लिखते थे ऐसे, मैगजीन्स में भी आती थी, तो उसमें से एक गज़ल कट करके मुझे दे देती थी और बोलती थी इसका धुन बनाओ और इसको गा के देखो।
0: अरे वाह,
1: और यही मेरी शुरुआत थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने अपनी खुद की गज़लें वहाँ पे कंपोज करके, उस टाइम तो मेरी लिखी हुई नहीं थी। ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने फिर उसके बाद खुद लिखना भी शुरू किया।
0: अरे वाह, मतलब आप एक बहुत ही उम्दा गायक के साथ साथ एक उम्दा शायर भी हैं।
1: अपने दिल में जो है उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो शौक
0: जी,
1: मेरी मदर ने मेरे मुझे मतलब प्रेरित किया कि तुम करके देखो, कोशिश करो।
0: अपनी कोई लिखी हुई रचना हमें सुनाइए।
1: जरूर एक मेरी जो मैं कभी सोच रहा था एक एल्बम बनाने के लिए, तो उसको मैंने ही लिखा है, कंपोज किया हुआ है, तो मैं वो सुनाता हूँ और मैं
0: जी
1: डेडिकेट भी करूँगा मेरी मदर को।
0: जी
1: गा के सुनाओ या पढ़ के सुनाओ?
0: जी गा के सुनाइए, नेकी और पूछ पूछ।

0: अरे वाह मुंशी, आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया। यहाँ पे एक सैक्सोफोन की कमी महसूस कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: शुक्रिया।
2: लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर को खो दिया और उनकी याद में मैंने एक गाना कंपोज किया था, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूँ आपके इस प्रोग्राम में। तो लीजिए, सुनिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुशी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज देकर जाइए, कुछ कहकर जाइए।
1: मैं सबसे यही कहूंगा कि संगीत जो है वो दिल से होना चाहिए।
0: जी
1: ये वैसा नहीं है कि हम कोई इंजीनियरिंग सीख के और फिर करते हैं। सीखना तो जरूरी है, पर जब आप दिल से उसे गाते हैं तो वो कनेक्ट करता है दूसरे के दिल से। तो
0: जी
1: कोशिश करें कि आवाज़ कैसी भी हो आपकी खुद की होनी चाहिए,
0: जी
1: और बस दिल से उसे गाइए। और संगीत दो चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से आधारित है, जो है सुर और तार। तो
0: जी
1: ना बेताला हो और ना बेसुर हो, और बस दिल से गाइए।
0: जी तो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं मुंशी, तो आजकल जो कैरियोके सिंगिंग इतनी पॉपुलर हो रही है और जगह जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठा होते हैं और कैरियोके पर गाना गाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: हाँ, इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि संगीत अब घर घर में चला गया है।
0: जी
1: कराओके आने से जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो गाना गा सकते हैं,
0: राइट
1: या सिंगिंग से कोसों दूर थे, सिर्फ सुनते थे, वो कम से कम संगीत के साथ जुड़ गए। हाँ, पर उनको इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि संगीत जो है सुर और ताल पे आधारित है।
0: जी
1: जैसे समय एक ताल उसकी चलती है, तो अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो समय तो चलता रहेगा। तो कराओके भी एक समय की तरह चलता रहता है। अगर आपने
0: बिल्कुल
1: बीच में
0: सही,
1: छोड़ दिया तो वो आगे ताल चली जाएगी। तो
0: बिल्कुल
1: बस
0: सही
1: सीख
0: कहा
1: के करिए, जो भी करिए अच्छा करिए।
0: जी, बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मुंशी जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब
1: थैंक
0: राखा।
1: यू, थैंक यू सपना जी, मुझे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो में बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी टीम का।
0: शुक्रिया। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का लोकप्रिय जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से ही हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आ रही हैं पंजाब के मैनचेस्टर लुधियाना शहर से एक बहुत खूबसूरत वहां की जानी मानी टैलेंटेड गायिका दीपिका चावला जी। ये सीधा ट्रेन पकड़कर आ रही हैं हमारी कमर्शियल कैपिटल लुधियाना से जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे सुनने वाले को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पहचान क्या है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं?
2: नमस्ते सपना, सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज स्टूडियो में आकर,
0: जी
2: बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर सारी बातचीत करके।
0: जी
2: सपना, मेरा मायका जो है वो पानीपत का है, जो कि हरियाणा में है, और शादी के बाद से ही मैं लुधियाना में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, और उनका ध्यान रखती हूँ मैं सारा दिन।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो।
2: मैं, हाँ
0: हाँ जी, हाँ
2: जी,
0: जी, बताइए।
2: मैं गृहिणी हूँ,
0: जी जी
2: यही
0: जी
2: मेरा संसार है, बच्चे और
0: जी
2: पति।
0: दीपिका जी, गृहिणी होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम बाहर का काम तो बखूबी खैर संभालती ही हैं, लेकिन घर में आकर अपने परिवार की देखरेख करना, उनको अच्छा खाना बनाकर देना, उनकी कहानियां सुनना, सारे घर का ख्याल रखना, ये
2: जी
0: सबके बस की बात नहीं होती अगर मैं कहूँ तो।
2: जी बिल्कुल
0: दीपिका जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो पंजाब से ही बना हुआ है, और आप
2: जी
0: दोनों जगह रह चुकी हैं, पानीपत और लुधियाना, है ना? तो
2: जी
0: दोनों शहरों के अगर हम कंपेयर करें तो किसके प्रति आपका ज्यादा झुकाव है और क्यों?
2: सपना, ज्यादा झुकाव तो मेरा लुधियाना में ही है, क्योंकि शादी को काफी सालों हो गए हैं हमको।
0: जी जी
2: और लुधियाना अपने होजरी इंडस्ट्री, साइकिल पार्ट्स इंडस्ट्री और खान पान के लिए बहुत मशहूर है।
0: बिल्कुल,
2: यहाँ के लोग जिंदगी को बड़ी अच्छी तरह से जीते हैं।
0: जी,
2: खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं और मस्ती करते हैं
0: और स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं
2: और म्यूजिक के तरफ भी सबका बहुत झुकाव रहता है।
0: जी,
2: और लुधियाना में जैसे और पंजाब का कमर्शियल कैपिटल भी है।
0: जी,
2: यहाँ पर बहुत पुराने किले भी बने हुए हैं ना, और किलों के खंडर अभी भी हैं। वहाँ पर शूटिंग के लिए कई डायरेक्टर भी आते हैं, और जैसे रंग दे बसंती मूवी में आमिर खान अपनी टीम के साथ आए थे।
0: जी जी जी,
2: तो
0: ये तो दीपिका आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर जब हम अपने शहरों की बात करते हैं तो लुधियाना सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के लिए ही जाना जाता है, बल्कि मजाक बना हुआ है कि कोई सफेद रंग की कार में अगर बैठकर लुधियाना आएगा तो शाम तक उसकी कार काली होकर ही पहुंचेगी। तो बड़ा अच्छा लगा आपने यहाँ का ये बताया कि यहाँ के जो खंडर हैं किलों के पुराने, वहां पर बॉलीवुड टीम से शूटिंग भी होती है।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो फटाफट हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि जितनी खूबसूरत और टैलेंटेड आप हैं, तो क्या कभी किसी बॉलीवुड टीम से आपको कोई चांस नहीं मिला?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सपना। ऐसे कोई बात नहीं
0: जी
2: है।
0: मुझे लगता है वो लक्स सोप की जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसमें तो पक्का ही आप कर सकती थी, गा भी खुद सकती थी।
2: चलिए, खैर,
0: ये दिलचस्प बातों का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर हम आपका पहला गीत लेते हैं।
2: हाँ जी, ओके।

0: वाह दीपिका, कितना खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आपकी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीत से हमारे स्टूडियो का सारा माहौल महक उठा है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत में आपकी रुचि क्या शुरू से ही रही है या फिर इसके साथ आपके और भी कोई शौक रहे हैं?
1: हाँ सपना, वैसे तो मेरे पास वक्त नहीं होता ज्यादा, पर संगीत के लिए मैं जरूर वक्त निकालती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि संगीत ही मेरे रोग की खुराक है और संगीत ही मेरा प्यार है।
0: वाह वाह,
1: जब मैं छोटी थी तब से ही संगीत की शिक्षा ले रही हूँ।
0: अच्छा।
1: और कॉलेज में भी म्यूजिक वोकल लिया, फिर शादी के बाद जैसे घर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, संगीत में नहीं मिल पाया
0: जी।
1: तो फिर बच्चे अब अपने सब लाइफ में सेटल हो गए तो हस्बैंड ने बहुत एनकरेज किया कि नहीं अब संगीत में होना चाहिए।
0: बहुत खूब,
1: आगे जाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। तो हालांकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता,
0: अच्छा,
1: तो फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं।
0: जी जी, बहुत खूब,
1: मेरे शौक पूरा करने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: अच्छा, और तो इसके अलावा भी आपके शौक हैं?
1: हाँ जी, शौक कह सकते हैं, शौक है डांसिंग का, कुकिंग का।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: मेरी छोटी बेटी वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है।
0: अच्छा,
1: जिन मान्या के नाम से।
0: जी जी, लुधियाना में उनका काफी नाम है। जी जी,
1: उसके साथ उसका कभी कभी डांस करती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो अपना शौक पूरा करती हूँ वो भी डांसिंग का भी।
0: क्या बात है दीपिका, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। बल्कि हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह के आपको जीवन साथी मिले हैं, हरीश जी जो आपका हर कदम के साथ देते हैं, इस तरह का साथी हर किसी को मिले, इस तरह का परिवार प्यारा सा।
1: मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हरीश जी की, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी, हरीश जी फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका जी यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हैं कि रब ने बना दी जोड़ी और इस जोड़ी को कभी नजर ना लगे। तो चलिए दीपिका, आपका हम अगला गाना लेते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जी।

0: दीपिका, जैसे आपने शुरू में हमें बताया कि आप एक गृहिणी हैं, और ये तो खैर एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो गृहिणी होती है जितने मेहनत और समर्पण और प्यार से वो अपने परिवार के लिए काम करती है वह अनमोल होता है। हर स्टेप पर, हर कदम पर उसकी ममता, उसकी सेवा और उसके प्रेम से जिंदगी चलती है। तो आपका आधे से ज्यादा वक्त तो अपने घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाता होगा, तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: हाँ सपना, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि मेरा परिवार ही मेरा संसार है
0: जी।
1: और मैं और हरीश जी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें दामाद के रूप में बेटा मिला है।
0: वाह क्या बात है।
1: उनको भी संगीत में बहुत ही रुचि है और वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। और जैसे आपने संगीत के बारे में पूछा कि तालमेल कैसे बना
0: जी,
1: तो वो भगवान की दया से खुद ही बन जाता है, क्योंकि जब हम लोग साथ इकट्ठे होते हैं तो संगीत की महफिल लगती ही है
0: जी,
1: और हम
0: जी,
1: लोग जी, बहुत खूब मजा करते हैं
0: जी जी तो जी। एक बहुत ही अच्छे गाने के बोल दिमाग में आ रहे हैं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल
0: बहुत खूब नजर ना लगे जी आपके परिवार को, बहुत ही हंसता गाता खिलखिलाता और म्यूजिकल सा परिवार है आपका। और हमने तो ये भी सुना है कि आप जैसे ही वीकेंड्स आते हैं आप फटाफट हिल स्टेशन की तरफ रुक कर लेते हैं ताकि और स्टेज परफॉर्मेंसेस आप कर सकें। तो यही हमारी तो इच्छा रहेगी कि कभी ना कभी हमारे श्रोताओं को आपकी लाइव परफॉर्मेंस भी सुनने को मिले। इसी के साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं
1: जी।

0: दीपिका, ये बातों के सिलसिले तो खैर कभी खत्म नहीं हो सकते। आप जो इतने प्यारे प्यारे गीत लेकर आई हैं और इतने सारे किस्सों की जो पिटारी लेकर आई हैं, मन कर रहा है कि हम ये बातचीत करते ही रहें, पर वक्त हमें कह रहा है कि आगे की गुफ्तगू किसी और एपिसोड में। तो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
1: सपना, मैं आपकी और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत मजा आया आपसे सबसे बात करके।
0: जी,
1: और
0: हमें भी
1: आपकी
0: बहुत
1: अगर
0: मजा आया।
1: इजाजत, हाँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी।
0: अरे वाह, इरशाद।
1: मेरे बच्चों, तुम ही मेरी धड़कन, तुम ही तुमसे ही है ये जीवन मेरा चंदन। तुम्हारे बिना मैं अधूरी कहानी, तुमसे ही सजी है मेरी ये जिंदगानी।
0: वाह वाह,
1: तुमसे है घर, तुमसे है संसार, तुमसे ही है मेरे जीवन का सार। तुम ही मेरी दुनिया, मेरी सबसे बड़ी सौगात।
0: अरे वाह दीपिका जी, ये तो आज आपकी एक और खूबी हमें पता चल गई कि आप तो बहुत अच्छी शायरा भी हैं।
1: अरे
0: तो
1: बच्चों,
0: जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी दो शब्द कहिए।
1: हाँ जी सपना, अंत में मैं जाते जाते श्रोताओं को अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहूंगी
0: जी,
1: कि आप कोई भी रिश्ता किसी से भी बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का, बहन का हो या भाई का,
0: जी
1: उस रिश्ते के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, पर निभाना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और
0: जी
1: सबसे प्यार से रहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत खूब दीपिका,
1: बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब।

तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात लुधियाना की दीपिका चावला जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ। यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।

0: नमस्कार जयपुर रेडियो के लिसनर्स, आप सुन रहे हैं करो बात हर्षी और योगी के साथ और ये है हमारा एपिसोड नंबर 25 दैट इज सिल्वर जुबली एपिसोड ऑफ करो बात हर्षी और योगी के साथ ओनली ऑन जयपुर रेडियो। आपकी आवाज आपकी पहचान और मैं हूँ आपकी दोस्त योगी
1: और मैं हूँ हर्षी और आज का थीम है फुल ऑन हटके। बजेगा वही बस तड़का नया। मतलब दोस्तों हम आज काफी दिनों के बाद वापस आए हैं तो वापस आने के बाद कुछ एक धमाका तो होना ही चाहिए और वही धमाका हमारे शो में करो बात हर्षी और योगी के साथ हम करने वाले हैं। मतलब वही सुर जो आपके कान पहले भी सुन चुके हैं लेकिन इस बार नया फ्लेवर और नई ट्विस्ट के साथ हम आज बात करेंगे कॉपीड सॉन्ग्स फ्रॉम हॉलीवुड जो बॉलीवुड में आए अपने तड़के के साथ।
0: बिल्कुल, आज हम जानेंगे कैसे एक गाना जो हॉलीवुड में हिट था बॉलीवुड ने अपने मसाले लिरिक्स और बीट्स के साथ एक नया ब्लॉकबस्टर बना दिया। और इसी क्रिएटिविटी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान जिनका काम ही है फैमिलियर म्यूजिक को एक नई रोशनी में पेश करना।
1: जी हाँ, हमारे गेस्ट हैं आदित्य शिव प्रसाद डोंगर साने और प्राजक्ति आदित्य डोंगर साने। दे आर द फाउंडर्स एंड प्रोप्राइटर ऑफ सुर तेज छेड़िता रिस्पेक्टिवली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो शुरू हुआ था एक छोटे से सपने के साथ सुंदर मैत्री के नाम से, लेकिन आज दुनिया भर में अपना म्यूजिकल मैजिक ये फैला रहा है।
0: जी हाँ दोस्तों, सुर तेज छेड़िता मतलब एसटीसी। एसटीसी ने लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, कराओके कॉम्पिटिशन, ट्रिब्यूट शोज, थीम्ड इवेंट्स और चैरिटी कॉन्सर्ट्स का एक पूरा यूनिवर्स बनाया है। ये सिर्फ गाने नहीं बजाते बल्कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, ब्लेंडिंग लाइव म्यूजिक विथ मॉडर्न टेक। और इनका ग्लोबल रिकॉग्निशन इतना है कि स्मॉल आईएनसी ने इन्हें वेरीफाइड बैज दिया। ये पहली मराठी कम्युनिटी है जिनको ये ऑनर मिला। तो दोस्तों तालियों से स्वागत कीजिए आदित्य डोंगर सने और प्राजक्ति डोंगर सने फ्रॉम सुर तेज छेड़िता।
2: नमस्कार, बहुत खुशी है यहाँ आके
3: और आपके लिसनर्स के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है।
1: 52,000 से ज्यादा फॉलोअर्स ऑन स्म्यूल एंड 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स अक्रॉस सोशल मीडिया के साथ एसटीसी एक म्यूजिकल फैमिली बन चुका है जो क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी स्पिरिट पे चलता है। और आदित्य जी, प्राजक्ति जी, आज का थीम तो लगता है बिल्कुल आप दोनों के काम से ही मिलता जुलता है।
4: जी बिल्कुल, हम बिलीव करते हैं कि सुर का सोल प्रिजर्व रहना चाहिए, चाहे उसका प्रेजेंटेशन

0: कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, चाहे एक हॉलीवुड हिट हो या बॉलीवुड क्लासिक, जब तड़का लगता है मैजिक डबल हो ही जाता है।
1: हाँ, और हमने अपने इवेंट्स में भी ये देखा है कि नो फैमिलियर ट्यून्स का नया वर्जन ऑडियंस को इंस्टेंट कनेक्ट देता है, लेकिन एक्साइट भी करता है।
2: क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो चलिए थीम की शुरुआत एक परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एक हॉलीवुड ट्रैक है जो बॉलीवुड ने अपने तरीके से रिक्रिएट किया है। पहचाने या नहीं पहचाने दोस्तों, मजा तो जरूर आएगा आप लोगों को, कोशिश कीजिए पहचानने की। योगी तुम बताओगी?
3: और वो सॉन्ग है कहो ना कहो फ्रॉम द मूवी मर्डर, याद है ना, जिसमें इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत थे। हाँ हाँ वही वही। तो ये मूवी मर्डर का है, विच हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द इजिप्शियन सॉन्ग तमल्ली माक। आइए सुनते हैं ये धमाकेदार सॉन्ग और करते हैं शो की शुरुआत।

0: Welcome to the world of Dicept range of disinfectants and hygiene products. Hamare yahan pe IPA based hand rub disinfectants and alcohol based hand sanitizers banaye jaate hain. Natural hand wash, mosquito repellents, air fresheners, shampoos, shower gels, hair conditioners and ayurvedic herbal soap bhi banaye jaate hain. Kehte hain na, ayurved se judiye, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के साथ रहिए और इसी तरह से डाइसेप्ट के साथ भी बने रहिए। हमारे शैम्पूज में नीम, तुलसी, हल्दी, आंवला, शिकाकाई के गुण हैं और हेयर कंडीशनर्स में काले अंगूर की रस भी है। सो एंजॉय आवर प्रोडक्ट्स।
1: बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर्स द टॉक ऑफ द नाइट।
0: वेलकम बैक दोस्तों, और आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 25। जी हाँ, हमारा सिल्वर चुपली एपिसोड विद आवर एस्टीम्ड गेस्ट। बजेगा वही पस्तड़ का नया यहाँ ऑन करबात हाशी और योगी के साथ, ओनली ऑन ओनली जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब वक्त है हमारे धमाकेदार बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर का।
2: लेकिन दोस्तों, आज गॉसिप थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन बॉलीवुड गानों की जो हॉलीवुड या वर्ल्ड म्यूजिक से इंस्पायर हुए और बन गए प्योर देसी तड़का के ब्लॉकबस्टर्स।
0: म्यूजिक इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में तो ये एक पुरानी कहानी है। कभी 70s में डिस्को बीट्स इंपोर्ट हुए, कभी 2000s में पॉप बैलाड्स, और अभी अभी एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया है, इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं लेकिन उसमें अपना रंग भरना जरूरी है।
2: बिल्कुल। और गॉसिप ये भी है कि एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म का टाइटल ट्रैक एक फेमस 80s हॉलीवुड पॉप हिट से इंस्पायर्ड है। म्यूजिक डायरेक्टर ने ओपनली कहा, मैं चाहता था ऑडियंस को फैमिलियर फील के साथ नया सरप्राइज भी मिले। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: ये पहले भी हुआ है, जैसे कहो ना कहो फ्रॉम मर्डर, जो अमर दयाब के एरेबिक हिट तमन्ना मैं से इंस्पायर्ड था। लोगों ने पहचाना भी, लेकिन गाना इतना पसंद आया सबको कि चार्ट बस्टर बन गया।
2: और सुनने में आया है एक टॉप सिंगर ने तो अपने इंस्टा लाइव पे एक मैशअप गाया, पहले एक हॉलीवुड ट्रैक फिर उसका बॉलीवुड रीमेक, और फैंस ने कमेंट किया, पता है क्या, जो आज का थीम है, बजेगा वही बस तड़का नया।
0: ट्रेंड इवॉल्व हो गया है, अब सिर्फ लिरिक्स चेंज नहीं होते, बीट ड्रॉप भी होता है, रैप वर्स और EDM लेयर्स के साथ गाने को पूरा एक क्लब हिट बना देते हैं दोस्तों।
2: अब बात चली ही है तो बहुत दूर तक जाएगी। तो चलो एक गोल्डन एग्जांपल से इस सेगमेंट को एंड करते हैं, एक ऐसा गाना जो बॉलीवुड हिस्ट्री का हिस्सा है, इनफैक्ट बॉलीवुड हिस्ट्री का एक गोल्डन हिस्सा है, लेकिन जिसका ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है और शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं।
0: दोस्तों याद है शोले का वो एवरग्रीन सॉन्ग,
3: महबूबा महबूबा?
0: जी हाँ, आरती बर्मन का म्यूजिक, हेलन जी का डांस और एनर्जी फुल ऑन। लेकिन थोड़ा ट्रिविया, एक गाना इंस्पायर था डेमिस रूसोस के इंग्लिश ट्रैक से यू लव मी से, बस वही मेलोडी ली, देसी बीट्स डाले और बन गया बॉलीवुड का क्लासिक।
2: तो दोस्तों चलिए सुनते हैं एक सुपर हिट मूवी का सुपर हिट आइटम नंबर, जिसने हेलन को एक नई पहचान दी थी। सुनते हैं वही टाइमलेस नंबर, बजेगा वही बस तड़का नया।

0: जिंदगी स्ट्रेस फ्री कैसे हो, मुस्कुराने का सीक्रेट क्या है और योगी से हाशी का क्या कनेक्शन है?
1: आपके सवालों का जवाब लेकर आ रहा है जयपुर रेडियो का सबसे धमाकेदार शो करो बात हाशी और योगी के साथ।
2: हर हफ्ते मिलेगा आपको मोटिवेशन, हंसी और जिंदगी की नई सोच। तो स्ट्रेस को करो बाय बाय और हंसी को लेके आओ अपनी जिंदगी में।
0: ट्यून इन टू जयपुर रेडियो हर शाम 7 बजे, सुनना न भूलना करो बात हाशी और योगी के।

0: जाइएगा नहीं दोस्तों, बातों का सिलसिला यही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, ओनली ऑन जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। तो दोस्तों अब आ गया है वो पल जो हमारे शो का हार्ट बीट होता है, आपको तो पता ही है, हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टार गेस्ट स्पेशल। और आज हमारे साथ हैं दो ऐसे लोग जिनका म्यूजिक के लिए जुनून सिर्फ गाने तक सीमित नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बनाने तक है, आदित्य और प्राजक्ति डोंगरसने, फाउंडर्स एंड प्रोप्राइटर ऑफ सूर्यतेज छेड़ता इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट।
1: जी हाँ, एसटीसी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक इवेंट कंपनी नहीं बल्कि एक म्यूजिकल मूवमेंट बन चुका है। कराओके लवर्स से लेके प्रोफेशनल परफॉर्मर्स तक सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। आज हम उनकी कहानी, उनके सफर और उनके फ्यूचर ड्रीम्स जानेंगे।
2: नमस्कार, बहुत खुशी है आज जयपुर रेडियो के साथ जुड़ के
3: और आपके लिसनर्स के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का जो मौका भी मिल रहा है।
0: तो आदित्य जी, पहले आपसे शुरू करते हैं, सुंदर मैत्री से सूर्य तेज छेड़ता का सफर कैसे हुआ और ये नाम कैसे डिसाइड हुआ, बताइए हमारे लिसनर्स को।
3: वेल, इनिशियली एक ग्रुप फॉर्म किया था तो वी वांटेड पीपल टू यू नो जॉइन आवर ग्रुप एज अ सिंगर्स। तो उस टाइम ग्रुप को नाम क्या देना है, तो मराठी ग्रुप था, सब मराठी थे, हर एक दूसरे को कोई ज्यादा पहचानता नहीं था। सो हम लोगों ने जस्ट एक रैंडमली ग्रुप का नाम डिसाइड किया सुंदर मैत्री। बट आफ्टर अ मंथ व्हेन वी गॉट फ्यू रियली गुड सिंगर्स ऑन स्म्यूल, तो सुंदर मैत्री और म्यूजिक ये कुछ मैच नहीं हो रहा था। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिस वॉज अ मराठी कम्युनिटी का एक ग्रुप, तो माई फर्स्ट थॉट प्रोसेस वॉज कि ग्रुप का नाम मराठी होना चाहिए एंड दैट शुड ऑल्सो बी वेरी कॉमन और यूनिक नेम, कॉमन भी है और यूनिक भी है। तो वी हैड अ कॉम्पिटिशन इन आवर ग्रुप कि हु विल गिव द बेस्ट नेम। तो बहुत सारे नाम सजेस्ट किए थे, सुरांशी बेट, स्वरांश, सुरयुग, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आए थे। बट हमारे ही एक एक्स एडमिन थे जिनका कुछ सालों पहले देहांत हो गया, अनिकेत जाधव। तो अनिकेत ने सूर तेज छेड़ता ये नाम सजेस्ट किया। सूर तेज छेड़ता ये गाना मेरा खुद का पसंदीदा गाना था। सेकेंडली रमेश देव जी जो मराठी हैंडसम एक्टर थे वो मेरे नाना जी के क्लासमेट थे एंड आई ऑलवेज यूज टू एडमायर हिम इन माई चाइल्डहुड डेज। तो सोचा कि इससे अच्छा और कुछ नाम हो ही नहीं सकता। सो फ्रॉम वी इवॉल्व फ्रॉम सुंदर मैत्री टू सूर तेज छेड़ता।
1: राजपति जी, आप इस जर्नी में कब और कैसे जुड़े और एसटीसी में आपका रोल क्या है?
2: अच्छा, अगर मेरी ज्वाइनिंग आप पूछेंगे तो बताना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य स्म्यूल पे ज्वाइन हुए थे एज अ सिंगर और तब मैं किचन में गाने गाती बेसिकली। तो यही हॉबी पकड़ के हमारे मियां साहब जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप किचन छोड़ के आप स्म्यूल के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो एज अ मेंबर मैंने सूर्यतेज छेड़ता ज्वाइन किया था 2018 में। फिर जब आदित्य और उनके एडमिन की इन एक्टिविटीज या कुछ कॉन्टेस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करते थे तो जस्ट बैकएंड में मैं उनको सपोर्ट करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ आइडियाज आने लगे, कुछ एक्टिविटीज सूझने लगी तो मैंने एडमिन्स के साथ शेयर किया। एडमिन्स टीम को भी अच्छे लगे वो एक्टिविटीज आइडियाज, फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको लॉन्च किया और धीरे धीरे से मैं एसटीसी मेंबर से एसटीसी की एडमिन बन गई। फिर हमने मीट्स के लिए प्लानिंग्स किए, वर्चुअल एक्टिविटीज को हमने रेगुलर एक्टिविटीज में कन्वर्ट करने के ट्राई किए और ऐसे ही सूरते छेड़ता को हमने स्म्यूल से लेके रियल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए और अभी हम इसी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सो एज अ फाउंडर सूरते छेड़ता आदित्य हैंडल कर रहे थे बट कुछ जॉब के एक्टिविटीज थे, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे तो वो वहां पे फुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इसकी प्रोपराइटरशिप मेरे पास आ गई और अभी सूरते छेड़ता एज अ प्रोपराइटर मैं हैंडल कर रही हूँ। और ये हमारी जर्नी अभी के दिनों में बहुत अच्छे से रन हो रही है। आई होप कि सभी का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा और इसी तरीके से हम आगे और ग्रो करते रहेंगे।
0: अच्छा आदित्य, एसटीसी के बारे में मैंने सुना है कि आप सिर्फ लाइव म्यूजिक इवेंट्स ही नहीं बल्कि चैरिटी कॉन्सर्ट्स, ट्रिब्यूट शोज और स्मॉल बेस्ड ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस भी करते हो, क्या ये आपके लिए चैलेंज होता है कि ऑडियंस को हर बार कुछ नया मिले?
3: वेल योगिता, अभी 17 साल कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर चुका हूँ तो इनोवेशन इज ऑलवेज वेलकम, ये हमेशा सुनते आया हूँ, इम्प्रोवाइज करते आया हूँ। वैसे ही म्यूजिक के बारे में है, आप जितना नया लोगों को दोगे, दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। सो सूरतेज सरिता में आप कॉन्टेस्ट के बारे में अगर आप बोलोगे, तो कोरोना के टाइम पे जब इवेंट्स नहीं हो रहे थे, जब एवरीथिंग वाज अंडर लॉकडाउन, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट की थी, बिकॉज बच्चे सबसे ज्यादा बोर हो रहे थे, तो उनके लिए हम लोगों ने एसटीसी लिटिल आइडल्स सीजन 1 रखा था। फिर उसके बाद बच्चों के साथ बड़े भी धीरे धीरे बोर होने लगे थे, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कितना करेंगे, बीवी भी बर्तन फेंक फेंक के बर्तन टूट गए थे, हस्बैंड के भी लैपटॉप पटक पटक के लैपटॉप खराब हो गए थे। तो ऑन अ वेरी कैजुअल नोट था वो। तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम एक ऐसी कॉन्टेस्ट लेके आए जो कभी रन हुई ना हो। सो दैट टाइम हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्टेस्ट लॉन्च की थी, दैट वाज एसटीसी जोड़ी कमाल की, जहां पे आपको पार्टिसिपेट करना था विद अ पेयर, डिबेट कॉन्टेस्ट थी वो। और हर एक लेवल पे एक पड़ाव थे, जो पड़ाव पार करते करते कॉन्टेस्ट को फाइनल राउंड में पहुंचना था। तो जिसमें 108 पार्टिसिपेंट्स ने ऑडिशंस दिए थे और फिनाले में आते आते सिर्फ 13 लोग बचे थे। तो उसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए हम लोगों ने थीम सॉन्ग भी बनाया था, जो हमने पार्टिसिपेंट से भी गवाया था, उसके भी हमने अलग अलग सेगमेंट्स रखे थे। या फिर अगर बात करें तो हमारी स्म्यूल मीट्स जो हम हर साल करते हैं, जिसका नाम हमने थोड़ा हटके दिया है, विच इज सिंग यूनाइट रिसाइटल, तो नाम भी थोड़ा कैची होता है। और उसमें भी हम थीम्स अलग अलग रखते हैं, लोगों को बेशक पार्टनर चॉइस करने का हम मौका देते हैं, बट उसमें भी हम थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल देते हैं। कभी मेल सिंगर ज्यादा होते हैं तो मेल ड्यूएट्स, कभी कुछ थीम उसमें ऐड कर देते हैं, कभी कुछ जॉनर ऐड कर देते हैं। ऐसी चीज में हम थोड़ा सा बिलीव करते हैं, बिकॉज कैसा है ना कि रोज अगर मैं गुलाब जाम खाऊं तो एक दिन मुझे भी उबासी आएगी गुलाब जामुन देख के। तो समटाइम्स काला जामुन होना जरूरी है, कभी कभी मावा गुलाब जामुन होना जरूरी है, कभी कभी ड्राई फ्रूट गुलाब जामुन होना जरूरी है। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस है, एंड आई एम वेरी लकी इनफ कि सूरतेज सरिता की जो एडमिन टीम और कोऑर्डिनेटर्स टीम है, उनका भी यही सोचना होता है। तो हर टाइम कोई ना कोई एडमिन में से आइडिया लेके आता है, एंड वो हम हमारे पिछले एक्सपीरियंस से उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी मुंबई में कैरोके शो किया था, जिसमें हम लोगों ने 1951 टू लेके 2025 तक के इरा बेस्ड सॉन्ग्स किए थे। तो हर एक एपिसोड जो था वो 10 साल के इरास का था। वैसे हम लोगों ने 7 एपिसोड्स किए थे, जिसमें सिंगर्स जो पैशनेट होते हैं, जिनको सच में गाना गाने की इच्छा होती है, दिल से इच्छा होती है, वो सिर्फ गाते नहीं हैं, बट वो उसमें स्टडी करते हैं। दे मेक देयर नॉलेज स्ट्रॉन्गर इन फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग, और उसके साथ वो परफॉर्म भी करते हैं। तो एक जगह पे उनका लर्निंग भी है और एक जगह पे उनका परफॉर्मेंस भी है। तो आई ऑलवेज कॉल्ड सूरतेज सरिता इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ म्यूजिकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म फॉर एन एस्पिरेंट सिंगर्स एंड अ रिफ्रेशर फॉर द पैशनेट्स।
1: और आप दोनों के लिए सबसे यादगार इवेंट कौन सा रहा?
2: सबसे यादगार इवेंट अगर मैं कहूँ तो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के दरमियान हमने मोहम्मद रफी जी का लाइव म्यूजिकल शो रखा था, जहाँ पे हमारे साथ तकरीबन 17 से 20 सिंगर जुड़े थे और लाइव म्यूजिक के साथ उन्होंने गाने परफॉर्म किए थे ऑन स्टेज। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट लाइव शो था और सच कहूँ तो बहुत उम्दा एक्सपीरियंस रहा इस शो का। फर्स्ट शो में ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस आया, सिंगर्स भी बहुत खुश थे, म्यूजिशियंस ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, और एंकरिंग पार्ट जिन्होंने हैंडल किया था उन्होंने भी मोहम्मद रफी जी से रिलेटेड जितनी सारी बातें वो हमारे साथ शेयर कर पाते उतनी सारी बातें उन्होंने हमारे साथ थ्रू द एंकरिंग शेयर की थी। और वो इवेंट हमारे लिए, हम दोनों के लिए कहूंगी तो बेस्ट इवेंट था लास्ट ईयर का।
0: क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा आदित्य, अब हमें बताइए, स्मॉल आईएनसी का वेरीफाइड बैच फर्स्ट मराठी कम्युनिटी को मिला, क्या रिएक्शन था जब आपको ये पता चला?
3: वेल योगिता, इट वाज अ रियली मेसमराइजिंग मोमेंट फॉर मी। मकर संक्रांति का दिन था, 15 जनवरी 2019, वाज अ मेमोरेबल डे फॉर मी। मैं और मेरी टीम बैकएंड पे ऑलमोस्ट 6-7 महीने से उस पे काम कर रहे थे। वी हैड लॉट ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड लॉट ऑफ प्रिपरेशंस उस पे पूरे एडमिन टीम ने दी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस बैडेज को हासिल करने के लिए हम लोग ऑफिस को भी छुट्टी मार के जाते थे प्लान करने के लिए, कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। उसी टाइम पे हम लोगों ने टू शो दैट वी हैव अ कैपेबिलिटी, हम लोगों ने वेबसाइट बुक की थी, वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू किया था। उसी टाइम पे हम लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था टू शोकास, कि हम लोग सिर्फ स्म्यूल पे ही नहीं बल्कि स्म्यूल के बाहर भी हम हमारी ताकत आजमा सकते हैं, लोहा ले सकते हैं। लोहा ले सकते विल बी नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट हम हमारे धुन से कोई भी तार छेड़ सकते हैं। सो टू मेक पीपल अवेयर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुर तेज छेड़ीता, तो हम लोगों ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था। इसका मतलब था स्ट्रमिंग दैट कॉर्ड, सुर तेज छेड़ीता। एंड बताने में ये भी गर्व होता है दैट फर्स्ट मराठी कम्युनिटी सुर तेज छेड़ीता थी स्मूल पे, एंड टिल डेट वी आर द ओनली मराठी कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब जिसके पास वो बैडेज आज तक बरकरार है। उसके बाद स्म्यूल ने बैडेजेस देना बंद किया था। आजकल तो स्म्यूल पे करके आप वेरीफाइड बैडेज ले सकते हो, बट सूर तेज छेड़ीता इज वन ऑफ ओनली फोर कम्युनिटीज फ्रॉम इंडिया एंड द ओनली मराठी कम्युनिटी जिसके पास वो बैडेज है। इट्स रियली ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी।
1: और आप बताइए एसटीसी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या नए शोज आने वाले हैं जो हमारे लिसनर्स मिस ना करें?
3: वेल वी हैव फ्यू ऑफ आवर मेलोडियस म्यूजिकल प्रोग्राम्स प्लान, जिसमें से मेघ मल्हार जो हमारा श्रावण स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें हिंदी और मराठी गाने कैरोके पे करने वाले हैं हम ठाणे में, विच इज ऑन 16th of August। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हट के एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। 14 सितंबर को हमारा प्रोग्राम होने वाला है, अगेन इट्स अ कैराओके शो जिसका नाम है चुरा लिया है ट्यून ने जो दिल को, जो थीम आज का प्रोग्राम है, जो हमारा ये शो है आज का, कि इंटरनेशनल म्यूजिक्स जो बॉलीवुड में कॉपी करके इम्प्रोवाइज करके प्रेजेंट किए गए थे, तो वैसे गाने हम प्ले करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एसटीसी इज अ गुरुकुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग हर एक शो अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। थीम बेस्ड होता है या फिर जॉनर बेस्ड होता है, तो लोगों को थोड़ा सीखने मिले एंड पीपल ऑल्सो विल गेट इन टू द बुक्स ऑफ म्यूजिक एंड दे विल फाइंड दोज फिल्टर दोज सॉन्ग्स एंड प्रेजेंट। तो ये हमारा शो है जो हम गणपति के तुरंत बाद करने वाले हैं। उसके बाद वी आर प्लानिंग फॉर अ लाइव शो विथ लाइव म्यूजिशियंस, जो कि आर डी बर्मन किशोर कुमार इस थीम पेज होने वाला है, जिसके डेट्स अभी तक हमने डिसाइड की नहीं किए हैं। बट द ड्रीम प्रोजेक्ट दैट आई ऑलवेज से कि हमें कालिदास में एक फंड रेजिंग शो करना है, जहाँ पे हमारा प्लानिंग चल रहा है दैट वी लुक फॉर द इन्वेस्टर्स, वी लुक फॉर द स्पॉन्सरर्स एंड एडवर्टाइजर्स एंड वी इवेल्युएट एंड वी फिल्टर गुड सिंगर्स अलॉन्ग विद गुड म्यूजिशियंस जो आके परफॉर्म करे। इट विल बी अ टिकटिंग शो और फंड जो भी रेज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अरेंजमेंट कॉस्ट निकाल के जो भी फंड्स बचेगा वो हम एनजीओ को डोनेट करना चाहते हैं। तो दिमाग में फिलहाल एनजीओ की अगर बात करें तो अवा फेडरेशन है जो आर्मी विडो वेलफेयर के लिए काम करती है, या फिर सिर्फ करके एक एनजीओ है जो सियाचिन में हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लांट है, उसको फंडिंग करती है, या फिर मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे एनजीओस हैं जिनको जो फंड रेजिंग के लिए काम करते हैं। ऐसे काम के लिए मुझे अपना समय देना है और मेरा टैलेंट मुझे वहां पे लगाना है। सो या दीज आर माय अपकमिंग प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स विद सुर तेज छेड़ीता इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट।
0: अच्छा प्राजक्ति, अब आप बताइए, अगर मैं पूछूं कि आपका 5 साल का ड्रीम रोड मैप क्या है, तो आप क्या कहेंगी?
2: 5 साल का ड्रीम रोड मैप जो है, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगी कि सुर तेज छेड़ीता के जो भी रेगुलर शोज अभी फिलहाल हो रहे हैं वो हम ऐसे ही कंटिन्यू करें और उसमें आगे बढ़े। और ये जो ब्रांड है सुर तेज छेड़ीता का, वो एक प्रॉमिसिंग ब्रांड बने जहाँ पे लोग हमें 100% ट्रस्ट कर सके और हम उनके एक्सपेक्टेशन को उसी ताकत से डिलीवर कर पाए। तो आगे जाके जब आज हम इस ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं कि सुर तेज छेड़ीता के इवेंट्स शोज हम ला रहे हैं, आगे जाके ऐसा हो कि इस ब्रांड की वजह से हमें लोग पहचाने कि हाँ यही है सुर तेज छेड़ीता के प्रोपराइटर एंड फाउंडर।
0: कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: डाइसेप्ट हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, काले अंगूर के रस, शहद, आंवला, नीम, तुलसी और शिकाकाई के गुणों से भरपूर, बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आपके बालों को झड़ने से रोके, बाल बने मुलायम, रेशम से लहराए।
1: तो बालों की क्या फिकर है।
2: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हाशी सेन गुप्ता चौधरी है और मैं मुंबई से हूं। मैं जयपुर रेडियो की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनकी टीम ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं आप सबके सामने रूबरू हुई हूं। कोशिश करूंगी कि आज थोड़ा बहुत अपने बारे में कुछ कह सकूं, कुछ बता सकूं। मैं करीबन 15 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूं और जाक फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। यहां पर हम डाइसेप्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हैंड रब डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, एयर फ्रेशनर्स, बाथ सॉल्ट, शैम्पूज, शावर जेल्स, हेयर कंडीशनर्स और आयुर्वेदिक रेंज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसे तरह तरह के बनाते हैं हम।
3: चलिए अब थोड़ा सा तड़का लगाते हैं, एक्सटेंडेड रैपिड फायर। इसमें आप दोनों को सवालों का क्विक क्विक जवाब देना होगा, बिना सोच समझ के। रेडी।
4: यस, चलो कुछ हो जाए रैपिड फायर, एकदम धमाकेदार।
5: तो आदित्य, ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं देना है, रैपिड फायर राउंड है, जो मन में आए फटाफट आंसर देने, ठीक है? तो आपका पहला सवाल, आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग कौन सा है?

0: जो।
1: अच्छा,
0: अच्छा
1: वो
0: वो
1: हॉलीवुड
0: हॉलीवुड
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग
1: बताइए
0: बताइए
1: जिसे
0: जिसे
1: बॉलीवुड
0: बॉलीवुड
1: ने
0: ने
1: कॉपी
0: कॉपी
1: करके
0: करके
1: अच्छा
0: अच्छा
1: बनाया।
0: बनाया। तो सॉन्ग है चुरा लिया है तुमने चतुर को, नजर नहीं चुराना सनम।
2: अच्छा आदित्य, आप हमारे लिसनर्स को बताइए, ये ऐसा मोमेंट जब स्टेज पे कभी टेक्निकल ब्लंडर हुआ हो।
3: 2019 में हमारी स्म्यून मीट थी। उस टाइम पे मुंबई में धुआंधार बारिश हुई थी। उस टाइम पे हमारे साउंड टेक्नीशियन जो थे उनकी गाड़ी अटक गई थी, जिसमें से हमारा बेस आने वाला था और वो आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग एट मुलुंड। तो हम लोगों ने जो है वो दो टॉप्स पे ही पूरा इवेंट किया था। बट यस, साउंड सिस्टम या फिर हमारे साउंड प्ले करने वाले जो हमारे साउंड दादा थे श्रीकांत बुआ जी, वो इतने सीजन थे कि उन्होंने वो टेक्निकल एरर लोगों को समझने आने का मौका ही नहीं दिया।
1: फेवरेट इंडियन प्लेबैक सिंगर।
4: वैसे तो बहुत सारे हैं, फिर भी मैं कहना चाहूंगी किशोर जी और आशा जी, और लेटेस्ट में अगर बताना चाहूं तो यस सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।
2: नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर एसटीसी कम्युनिटी।
3: ताल वेगा, दैट इज रिदम एट स्पीड।
1: नॉट म्यूजिक, आप क्या करते?
4: वैसे म्यूजिक तो मेरी जान है, बट अगर म्यूजिक नहीं रहता तो डेफिनेटली मैं वीडियोग्राफी में जाती हूँ, क्योंकि लोगों के स्पेशल मूवमेंट या स्पेशल एक्सप्रेशंस कैच करने में बहुत अलग ही मजा आता
2: दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आदित्य, कॉफी और चाय बिफोर परफॉर्मेंस आप क्या प्रेफर करेंगे?
3: है। वेल योगिता, अगर ऑफर कर रही हो तो आई विल से ओल्ड मॉन्क रम, बट फिलहाल मैं बोलूंगा कि ठीक है, कॉफी। ओके।
1: एक गाना जो आप अपने शादी में जरूर बजाएंगे।
4: वैसे शादी तो हो चुकी है, बट हाँ अगर एनिवर्सरी होती तो डेफिनेटली ये गाना बजता। सपने में मिलता है वो मुंडा मेरा, सपने में मिलता है।
2: वेल दैट्स नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य फेवरेट रेट्रो म्यूजिक कंपोजर कौन है आपको बताइए?
3: आरडी बर्मन, नाम ही काफी है।
1: एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसे आप एसटीसी स्टेज पे लाना चाहेंगे। बताइए।
4: वैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो अभी कोई दिमाग में नहीं है, बट यस, क्राउन ऑफ एसटीसी जो हमारी अंकिता सिन्हा जी हैं, उनके लिए हम एक लाइव कॉन्सर्ट।

0: अब बताइए आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इन म्यूजिक कौन है?
1: आई वुड से माई सिंगिंग गुरु इज माई मॉम ऑलवेज. माई इंस्पिरेशन इज माई मॉम बिकॉज मम्मी अपने टाइम की सितारिस्ट थी. शी हैज लर्न सितार. तो मेरे लिए वो सिंगिंग इज अ गर्भ संस्कार आई वुड से.
2: आपकी प्लेलिस्ट का गिल्टी प्लेजर सॉन्ग?
3: गिल्टी प्लेजर सॉन्ग, यस, माधुरी दीक्षित का एक बहुत ही टेम्प्टी सॉन्ग है, चोली के पीछे क्या है. इट वॉज माई गिल्टी प्लेजर सॉन्ग.
0: क्या बात है प्रजति, दैट वन इज माई गिल्टी प्लेजर सॉन्ग ऑल्सो. वेरी फनी. आदित्य आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है?
1: टेढ़ा इंसान.
0: एंड आई अग्री विद दैट. तो गाइस ये था हमारा रैपिड फायर राउंड. मजा आ गया आप लोगों के साथ खेल के. और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स ने हमसे एक रिक्वेस्ट किया है कि आप दोनों एक छोटा सा अनप्लग्ड परफॉर्मेंस करें. क्या हम लकी हो सकते हैं कि हम सुनने मिलेगा हमको यहाँ पे इस शो पे लाइव?
3: जी बिल्कुल योगी, हम एक रेट्रो क्लासिक लेते हैं जो थीम के मूड को मैच कर पाए.
1: जी श्योर. तो हमारे श्रोताओं के लिए ये रहा गाना.

0: बस यही है असली मैजिक जो एसटीसी बनाता है, सुर जुनून और प्यार का कॉम्बो, लीथल कॉम्बो।
1: और अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो बॉलीवुड ने हॉलीवुड से इंस्पायर होके आइकॉनिक बना दिया, हमारे स्टार गेस्ट आदित्य और प्राजक्ता की आवाज में। गाना है गुलाबी आंखें।

0: Stay tuned. Love you all.
1: Nostalgia segment on replay. वेलकम बैक दोस्तों ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ ओनली ऑन जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है हमारे शो के सबसे फिल्मी और नॉस्टैल्जिक कॉर्नर का, जहां हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे म्यूजिक जमाने में जो न सिर्फ हमें गाने सुनाता है बल्कि हमें सपने भी दिखाता है। और क्योंकि आज का थीम है बजेगा वही बस तड़का नया, हम ला रहे हैं एक ऐसा सॉन्ग जो पुराना भी है, नया भी और दिल को छू लेने वाला भी।
2: बिल्कुल योगी, मैं बात कर रही हूँ 90s

जी हाँ, बाय अनामिका। अरे याद है वो दिन जब टीवी पर म्यूजिक चैनल्स आते थे और हम एकदम काउंटडाउन के लिए वेट करते थे। कोई मोबाइल ऐप नहीं था, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं था, बस पूरा वीडियो एंजॉय करने के बाद हम खुश हो जाते थे।

0: चलिए हम आपसे कुछ फन फैक्ट शेयर करते हैं जो शायद आपको पता ना हो। कही करता होगा 90s के टॉप इंडी पॉप एल्बम्स में शामिल था और MTV पर ये सॉन्ग लगातार चलता रहता था।
1: अनामिका के इस सॉन्ग का शूट गोवा के बीच और एक हेरिटेज पोर्तुगीज स्टाइल विला में हुआ था, उस टाइम के लिए एकदम हट के लोकेशन।
0: इस गाने का म्यूजिक अरेंजमेंट एक सॉफ्ट रॉक प्लस इंजन स्ट्रिंग्स का फ्यूजन था जो उस टाइम पे एक फ्रेश और मॉडर्न साउंड माना जाता था। और हाँ, इस सॉन्ग ने म्यूजिक वीडियोस को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट भी दिया था। यहाँ सिर्फ गाना नहीं, एक छोटी सी लव स्टोरी चलती थी स्क्रीन पर।
1: वाह योगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सॉन्ग हमारे आज के थीम से परफेक्टली कनेक्ट होता है, बजेगा वही बस तड़का नया, क्योंकि 90s का एक गाना ओल्ड स्कूल रोमांस को एक फ्रेश प्रेजेंटेशन के साथ लाया था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम आज पुराने गाने को नए बीट्स के साथ एंजॉय करते हैं।

0: अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं एक 90s का इंडी पॉप गाने की लाइन गाऊंगी और हाशी को गेस करना होगा गाना कौन सा है। रेडी हाशी?
1: अरे बेरी, तो मैं हमेशा रहती हूँ योगी, लेकिन तुम्हारे हिंट्स जो होते हैं ना, जरा सा ट्रिकी होते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता।
0: तो ये रहा आपका पहला हिंट। ओके, मैं अंतरे से गाऊंगी, आपको गाना पहचाना है। ओके, तो अंतरा ये है इस गाने का। क्या हुआ कि अगर मिल न सके हम, क्या हुआ कि मेरे वादों में ना दम।
1: नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा गाना है ये?
0: तो दोस्तों, क्या आप भी खेलेंगे हमारे साथ? इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए करो बात हाशी और योगी के साथ को। कमेंट कीजिए कौन सा सॉन्ग था जो मैंने गाया, और अपने फेवरेट 90s इंडी पॉप ट्रैक्स के नाम लिखिए। हो सकता है हम अगले एपिसोड में आपका सॉन्ग प्ले करें, है ना?
1: दोस्तों याद रखिए, जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान, और ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है कि आपकी कहानी आपकी पसंद हमारे शो का हिस्सा बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पर आए, तो हमें DM जरूर कीजिएगा या अपने डेडिकेशंस भेजना न भूलिएगा।
0: तो बस दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। 90s का एक जेम जो आपके दिल को छू लेगा, अनामिका का कहीं करता होगा गाना एंजॉय कीजिए, यादों में खो जाइए, और याद रखिए, बजेगा वही बस तड़का नया।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं करोपाथ आशी और योगी के साथ, और अब आ गया है हमारे शो का सबसे प्यारा सेगमेंट डेडिकेशंस वाला दिल से कॉर्नर। यहाँ हम बजाते हैं वही गाने जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात हम तक आती है और हमारी आवाज के साथ पूरे जयपुर रेडियो पर गूंज जाती है।
1: बिल्कुल, और आज तो स्पेशल डबल ट्रीट है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदित्य और प्राजक्ति डोंगरसने, सूर तेज छिटता के फाउंडर और प्रोप्राइटर, जो म्यूजिक के असली एम्बेसडर्स हैं। आज के डेडिकेशंस हम मिलके सुनाएंगे, मिलके बात करेंगे और मिलके सेलिब्रेट करेंगे।
0: तो चलिए शुरू करते हैं पहला डेडिकेशन। ये आया है जयपुर से शिवानी का, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड रूपल के लिए भेज रही है सॉन्ग पहला नशा। शिवानी का कहना है कि रूपल से उनकी दोस्ती भी एकदम 90s फिल्म की तरह शुरू हुई थी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं करोपाथ आशी और योगी के साथ, और अब आ गया है हमारे शो का सबसे प्यारा सेगमेंट, डेडिकेशंस वाला दिल से कॉर्नर। यहाँ हम बजाते हैं वही गाने जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात हम तक आती है और हमारी आवाज के साथ पूरे जयपुर रेडियो पर गूंज जाती है।
1: बिल्कुल, और आज तो स्पेशल डबल ट्रीट है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदित्य और प्राजक्ति डोंगरसने, सूर तेज छिटता के फाउंडर और प्रोप्राइटर, जो म्यूजिक के असली एम्बेसडर्स हैं। आज के डेडिकेशंस हम मिलके सुनाएंगे, मिलके बात करेंगे और मिलके सेलिब्रेट करेंगे।
0: तो चलिए शुरू करते हैं पहला डेडिकेशन। ये आया है जयपुर से शिवानी का, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड रूपल के लिए भेज रही है सॉन्ग पहला नशा। शिवानी का कहना है कि रूपल से उनकी दोस्ती भी एकदम 90s फिल्म की तरह शुरू हुई थी।

0: वाह, पहला नशा। सुनते ही कॉलेज के और स्कूल के वो दिन याद आ गए जब हम म्यूजिक के लिए खुद छोटे छोटे महफिलें जमाया करते थे।
1: हाँ, और इसी तरह के कनेक्शन हमारे रिश्ते को स्पेशल बनाते हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों की कहानियाँ।
2: तो चलिए सुनते हैं अगला डेडिकेशन। अगला डेडिकेशन आया है मुंबई से राज का, जो अपनी वाइफ पूजा के लिए भेज रहे हैं, तुम मिले। राज ने कहा है कि ये गाना उनका रेन ड्राइव एंथम है। आदित्य और प्रजति, आप बताइए, आप दोनों का कोई स्पेशल कपल सॉन्ग है?
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों का गाना है ना, कांच

और अब एक डेडिकेशन आया है पुणे से आरव का, जो अपने स्म्यूल सिंगिंग ग्रुप के लिए सिफारिश वाला जो गाना है। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, वो गाना है।

0: तो दोस्तों देख रहे हो ना, म्यूजिक का जादू सिर्फ गाने तक सीमित नहीं होता, ये हमें लोगों के दिल तक ले जाता है। आदित्य और प्राजक्ति, आज के डेडिकेशन के बारे में आपका क्या कहना है?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सूरते श्रेता का भी यही मिशन है, चाहे वो लाइव इवेंट हो या ऑनलाइन कॉन्सर्ट। हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स हमारे पास उनकी कहानी लेके आए और एक याद लेके जाए, एंड दैट मेमोरी शुड बी द लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट फॉर देम।
2: और ये जो बजेगा वही बस तड़का नया का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल एसटीसी के स्टाइल का है, पुराने प्यार पुराने सुर लेकिन नई ताजगी के साथ।
3: चलिए दोस्तों, अब आखिरी डेडिकेशन आया है दिल्ली से मीनल का, जो अपने म्यूजिक टीचर के लिए भेज रही

जाए। क्या मस्त गाना है मीनल। और मीनल का कहना है कि म्यूजिक उनके लिए एक दुआ है। जी हाँ, ये बात तो सच है, म्यूजिक सबके लिए एक दुआ है, एक बूंद है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जज्बे के लिए और हम सभी को एक इंस्पिरेशन देने के लिए।

0: तो बस फिर दोस्तों, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम आज का सफर यही खत्म करते हैं। आदित्य और प्राजक्ति, आप दोनों का शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और म्यूजिक का मैजिक हमारे लिसनर्स के साथ बांटा।
1: थैंक यू जयपुर रेडियो, हशी, योगी और सारे लिसनर्स, हमारे लिए ये एक यादगार शाम रही थी।
2: हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमेशा म्यूजिक के साथ जुड़े रहेंगे।
3: तो दोस्तों, याद रखिए, जयपुर रेडियो आपकी आवाज, आपकी पहचान। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, करो बात हाशी और योगी के साथ, अपने डेडिकेशंस भेजिए, हमें डीएम कीजिए और शायद अगले एपिसोड में हम आपका नाम यहीं ले।
0: और अब दोस्तों, शो एंड करते हैं एक परफेक्ट।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का, कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: on your favorite program, your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान। नरगिसे साहिर हो तुम नूर नजर हो जिसे देखकर ही खो जाए ऐसा असर हो पुर नूर हो गया जो भी मिला एक बार तुमसे मैं तुम्हारा काफिया और तुम मेरी बहर हो। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस जिन्हें सिनेमा की क्वीन भी माना जाता है अपनी सौम्यता आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती थी। लोगों की माने तो नरगिस के बाद शायद ही कोई अदाकारा इतनी खूबसूरत आंखों वाली फिल्मों में आई होंगी। नमस्कार वड़कम सत श्री अकाल खम्बा खड़ी मैं तनुजा मुंद्रा आपकी दोस्त और आज के प्रोग्राम की होस्ट तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ प्रस्तुत करने दास्ताने नरगिस नरगिस की प्रेम कहानी और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं

फिल्म चोरी चोरी का ये खूबसूरत नगमा अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया सूर्य रेखा जी ने और संजय गुप्ता जी ने। फातिमा राशिद और नरगिस, जी हाँ, नरगिस का असली नाम था फातिमा राशिद। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 6 साल की कच्ची उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस ने पर्दे पर दस्तक दी और उनके इस रूप को लोगों ने बहुत सराहा भी, और धीरे धीरे वो अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। यहां तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेम गीत जिसके बिना किसी भी युगल की प्रेम कहानी अधूरी सी है।

फिल्म का नाम श्री 420, गायक मन्ना डे और गायिका लता मंगेशकर। यहाँ इस गीत को स्वरबद्ध किया MD त्यागी जी ने और उनका साथ देने का सौभाग्य मिला मुझे यानी तनुजा मुंद्रा को। चलिए हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रेसी अपने प्रियतम से पहली बार मिल रही है और चंदा मामा को कुछ उल्हाना दे रही है, तो चलिए सुनते हैं प्रेसी की गुहार।

फिल्म आवारा का ये खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया डॉक्टर आदेश सक्सेना ने और उनका साथ दिया ज्योत्सना शर्मा जी ने। अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर होते कमल तो बन सबा खुशबू को बिखराती, जो होते ख्वाब तो पलकों को मैं खोलने ही ना पाती, मगर तुम तो हो वो पहेली जिसे मैं बूझ ही ना पाती। जी हाँ, हम सब ने बचपन में ये खेला जरूर खेला होगा, बूझो तो जाने। अगला गीत लेके आ रहा है कुछ पहेलियां, आप भी बूझने का प्रयत्न करें।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। दोस्तों, जूही सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में आपसे कुछ पहेलियां पूछी। सच सच बताइएगा, आप कितनी पहेलियों का उत्तर बूझ पाए। बेहतरीन अदाकारा नरगिस और उनके जीवन साथी सुनील दत्त। बात उस समय की है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी खासी हिट हो चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को बैठा देख सुनील दत्त बेइंतहा नर्वस हो गए और उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके। तो ये थी पहली मुलाकात सुनील दत्त और नरगिस जी की। तो सुनते हैं अगला गीत, दिल की गिरह खोल दो।

वाह, मिश्री से भी मीठी आवाज वीरेन जी, और उस पर ये खूबसूरत गीत दिल की गिरह खोल दो, फिल्म का नाम रात और दिन। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर भी हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने गई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक आग लग गई तो उस समय नरगिस उस आग में फंस गई थी, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और यहीं से दोनों करीब आने लगे। दोनों ने 1958 में शादी कर ली और इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम करना स्वीकार किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री 420 का एक और खूबसूरत नगमा, रमैया वस्ता भैया।

रमैया वस्तावैया। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया मनुजी मृदुल ने और उनका साथ दिया अंजलि जी ने। दोस्तों, पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आर के स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही तो थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। समय ऐसा का भी था जब राज कपूर और नरगिस की प्रेम गाथाओं से फिल्मी गलियारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे ये प्रेम कथा धूमिल हो चली थी और नरगिस जी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राज कपूर अपनी बीवी बच्चों को कभी न छोड़ेंगे और ना ही वे अपने पिता की खिलाफत कर सकेंगे, जिसके चलते नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। शायद उस समय नरगिस के मन में ये गीत जरूर आता होगा, यूं हसरतों के दाग।

फिल्म अदालत का ये बेहतरीन नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया संजय हारने जी ने। कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, अकेले गुमसुम से रहते हैं, न किसी से बात होती है। तुमसे मिलने की आरजू दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक कर बरसात होती है। तन्हाई का

वाह सज्जाद जी, आपने तो समा ही बांध दिया। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में वह प्रथम अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया जाता है। नरगिस जी की कुछ फिल्में जैसे मदर इंडिया, अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी, चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, आहा और ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए सुनते हैं अदालत फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जमी से हमने आसमां पर।

इस बेहतरीन नगमे को अपने सुमधुर आवाजों से सजाया स्मिता और लक्ष्मी जी ने। अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थी और बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे से संसार जिसमें उनका पुत्र संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1981 में वो हमें छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में चली गईं। बीमारी बहाना बनी उन्हें हमसे दूर करने का। चलिए सुनते हैं, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: बेहतरीन गायकी इंदिरा जी, समय आ चला है अलविदा कहने का। इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, चल पड़े लिए अधूरी हसरत हम फिर आज। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमें ये खूबसूरत अवसर प्रदान किया। श्रोताओं, आपसे विनंती कि आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मैं तनुजा मुंद्रा मुंबई से आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

सावन आया, दूर गगन में बिजुरी चमके, दूर गगन में

0: सावन ना आया तुम ना आए, डॉक्टर जाया अनंत का हमने ये गीत सुना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और स्वयं।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल हैं, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर, गायत्री जगन्नाथन, आभा माथुर, शर्मिष्ठा सारंगी।

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाएं तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जागो शंभो।